नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 सितंबर सन 2026। सुबह के 5:57 होने वाले हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कल बिश्केक में 6ठे विश्व घुमंतू खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। ये द्विवार्षिक आयोजन घुमंतू सभ्यताओं की समृद्ध खेल परंपराओं, संस्कृति और विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ ने भोटकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए तथा बिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बैठक में देश में हरित विकास को गति देने और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी पहलों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान दिया गया। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 4था भारत जर्मनी पर्यावरण मंच आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन स्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही कपड़े के थैलों और दोबारा प्रयोग वाली बोतलों के उपयोग को बढ़ावा देना भी है। ये अभियान 15 सितंबर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि और घायलों के लिए 50-50 हजार रूपये की सहायता राशि की घोषणा की है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल से 3 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में एक व्यापारिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये दौरा भारत बेल्जियम साझेदारी को और मजबूत करेगा। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगाम्यूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन।

यह पुण्य भूमि केवल मृत्तिका का निर्जीव विस्तार नहीं, अनगिनत त्यागों की अग्नि में अंकुरित वह अमर कमल है जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी पर पूर्वजों के स्वप्नों की ओस अब भी कांपती है। इसके पर्वत धैर्य के हिम शिखर हैं, इसकी नदियां सभ्यता के उर से प्रवाहित होने वाली शाश्वत प्रार्थनाएं और इसकी धूल असंख्य तपस्वी चरणों से पावन हुई विभूति है। जब इस धरा का स्मरण हृदय में उतरता है तब लगता है मानो रक्त में बहती प्रत्येक धारा किसी अदृश्य शंखनाद में परिवर्तित हो उठी हो। एक ऐसा शंखनाद जिसमें स्वाधीनता केवल शब्द नहीं, पीढ़ियों की अग्नि परीक्षा से उपजा हुआ अमर संकल्प बनकर गूंजता है।

अंतर मन संसार की शब्दों का अंत्येष्टि संस्कार कर मौन की निर्जन गुफा में प्रवेश करता है, तब वहां एक ऐसी चेतना का आभास होता है जिसका न कोई रूप है, न सीमा, न दिशा। वह शून्य के गर्भ में जागता हुआ वह अनंत सूर्य है जिसकी किरणें दिखाई नहीं देती, फिर भी उन्हीं से दृष्टि का अस्तित्व है। वह अंधकार को पराजित नहीं करता क्योंकि उसके सम्मुख अंधकार स्वयं अपना परिचय भूल जाता है। मनुष्य उसे पाने के लिए आकाश नापता है, दिशाओं में भटकता है, किंतु वह तो उसी हृदय में स्पंदित है जहां पहुंचने से पहले मैं को अपने समस्त मानचित्र जला देने पड़ते हैं।

वह कभी बीज के भीतर निहित विशाल वन की अनकही संभावना है। वह कभी हिमशिला के अंतःकरण में सोया हुआ निर्झर, वह पुष्प की सुगंध में छिपी हुई उस अनाम यात्रा की

आती है जो दिखाई न देने पर भी दिशाओं को सुगंधित कर देती है। मनुष्य उसे मूर्तियों में, मंत्रों में और दूरस्थ आकाशों में खोजता रहता है, जबकि वह प्रत्येक श्वास और निःश्वास के मध्य ठहरे उस सूक्ष्मतम क्षण में अपनी अनंत उपस्थिति लिए बैठा है। बस मन का कोलाहल शांत हो और ज्ञात होता है कि मौन भी एक नदी है, जिसकी प्रत्येक लहर में वही अनाम स्पंदन बह रहा है।

प्रकृति का प्रत्येक परिवर्तन उसी परम चेतना द्वारा रचित कोई मौन श्लोक है। पतझड़ वृक्ष का पराभव नहीं, नूतन पल्लवों के लिए किया गया उसका वस्त्र विसर्जन है। वर्षा आकाश का रोदन नहीं, धरती की प्यास पर बरसता करुणामृत है। और रात्रि प्रकाश का निष्कासन नहीं, प्रभात की आंखों में पलता हुआ स्वप्न है। इसलिए जीवन का प्रत्येक विघटन भी विनाश नहीं होता, कभी कभी टूटना ही पुनर्निर्माण का प्रथम संस्कार होता है। हर रिक्तता में भविष्य की पूर्णता का बीज है, और हर पीड़ा में गर्भ में किसी अनाम प्रकाश की नवप्रभा।

वंदना अधरों का उच्चारण नहीं, आत्मा के अहंकार आवरण का अग्नि संस्कार है। जिस क्षण मैं अपने अस्तित्व की अंतिम राख को भी समर्पण की वायु में विसर्जित कर देता है, उसी क्षण ज्ञात होता है कि खोजने वाला और जिसकी खोज की जा रही है उनके मध्य

कोई दूरी थी ही नहीं। हम स्वयं को तरंग मानकर अपने क्षणिक आकार पर इतराते रहे, जबकि हमारे भीतर आरंभ से ही संपूर्ण सागर की अनंतता स्पंदित थी। तब न प्रश्न शेष रहते हैं न उत्तर, केवल एक अवर्णीय निस्तब्धता जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड अपनी समस्त ध्वनियां समेटकर मौन हो जाता है। और उसी मौन में आत्मा पहली बार समझती है कि विलय मिटना नहीं होता, स्वयं को अनंत में पहचान लेना ही वास्तविक पूर्णता है।

अभी आप वंदना कार्यक्रम सुन रहे थे। आलेख एवं संकलन अक्षर शर्मा का, वाचन मुकाम सिंह चौहान। आकाशवाणी

0: साथ छोड़ देते हैं, तब आस्था ही हमें मानसिक शांति और धैर्य प्रदान करती है। आस्था का सबसे बड़ा गुण यह है कि यह व्यक्ति को असंभव में भी संभव देखने की दृष्टि देती है। एक बीज जब मिट्टी में दबा होता है तो उसे यह आशा होती है कि वह एक दिन विशाल वृक्ष बनेगा। ठीक वैसे ही एक विद्यार्थी को अपनी मेहनत पर और एक बीमार व्यक्ति को अपनी सेहत में सुधार पर जो भरोसा होता है, वही उसकी असली ताकत बनती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी आस्था मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है, जिससे तनाव कम होता है और जीवन के प्रति उत्साह बना रहता है। दुनिया के सभी धर्म और संस्कृतियां आस्था की नींव पर टिकी है। यह हमें नैतिक मूल्यों से जोड़ती है और समाज में भाईचारे तथा प्रेम का संचार करती है। आस्था मनुष्य को अहंकारी होने से बचाती है और उसे यह एहसास कराती है कि इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति है जो सब कुछ संचालित कर रही है। बिना आस्था के जीवन उस पतवार विहीन नाव की तरह है जो लहरों के थपेड़ों से कहीं भी भटक सकती है। आस्था कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। यह हमारे भीतर आत्मविश्वास पैदा करती है और हमें बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने का साहस देती है। यदि मनुष्य के पास अटूट विश्वास हो तो वह पर्वत को भी हिलाने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए अपने जीवन में सकारात्मकता और सफलता पाने के लिए सबसे पहले स्वयं पर और उस परमात्मा पर अटूट आस्था रखना अनिवार्य है। किसी ने क्या खूब कहा है, राह में अंधेरा हो तो क्या, मन में दीपक जलाए रखना, मंजिल दूर ही सही, कदम आस्था के बढ़ाए रखना। तूफान आएंगे बहुत तुझे डिगाने के लिए, तू बस विश्वास की पतवार को कसकर थामे रखना। आस्था पर कुछ महान लोगों द्वारा कहे गए प्रेरक सुविचार। महात्मा गांधी ने कहा था, मानवता और आस्था में विश्वास न खोएं। आस्था एक महासागर है, यदि इसकी कुछ बूंदें गंदी भी हो तो पूरा महासागर गंदा नहीं हो सकता। महारानी विक्टोरिया ने कहा, आस्था का अर्थ बिना प्रमाण के मानना नहीं, बल्कि बिना किसी हिचकिचाहट के भरोसा करना है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, खुद पर विश्वास रखें, आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोचते हैं। जब जीवन में सब कुछ सही चल रहा होता है तब विश्वास करना आसान होता है, लेकिन परिस्थितियां विपरीत हो, जब चारों ओर असफलता का अंधेरा हो, तब जो शक्ति हमें टूटने से बचाती है और सब ठीक हो जाएगा का भरोसा देती है, वही आस्था है। यह तर्क से परे है, जहां विज्ञान का तर्क खत्म होता है वहां आस्था का सफर शुरू होता है। आज के तनावपूर्ण जीवन में आस्था हमारे मन के लिए एक एंकर की तरह काम करती है, जो हमें भटकने नहीं देती। जिस व्यक्ति को खुद पर और अपनी क्षमताओं पर आस्था होती है, उसे दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आस्था हमें सिखाती है कि हर मुश्किल के पीछे एक अवसर छिपा है और हर काली रात के बाद एक सुनहरा सवेरा। अंत में बस इतना ही कि आस्था कोई कमजोरी नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। यह हमें झुकना नहीं सिखाती, बल्कि अडीक रहना सिखाती है। यदि आपके पास आस्था है तो आप पहाड़ों को भी हिलाने का हौसला रखते हैं। तो आइए हम अपने भीतर उस विश्वास की ज्योति जलाएं, जो हमें एक बेहतर इंसान और एक बेहतर समाज बनाने की प्रेरणा दे।
1: आस्था, इस विषय पर केंद्रित था आज का चिंतन। आलेख सौरभ का और वाचन मुकाम सिंह चौहान का। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, अब वक्त है खेती की बातें का। आज इस कार्यक्रम में बरसात के मौसम में पशुओं को सुरक्षित कैसे रखें, इस विषय पर विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी हम आपको सुनवा रहे हैं। जानकारी का संकलन एवं वाचन बिंदु भाटे ने किया है।
2: किसान भाइयों, राम राम। किसान भाइयों, बरसात का दिन शुरू हो तो का बाद में अपना घर छे तो अपना ज घर में पशु न की देखभाल कसी काय करनू, अपना ढोर डंगर न ख किस तरह से सुरक्षित रखा, ये जाननू बहुत जरूरी छे। क्योंकि इनाज मौसम में छे तो अपना ढोर डंगर न ख थनेला खूर पका मुँह पका गलगटू जैसी बीमारी नको खतरो बढ़ी जाए। तो अपनी जो पशुशाला छे जहाँ बाड़ो छे अपनो ओखा अपन कसो काई रखा, ये जाननू भी

श्री राम के मुंह से अपने लिए विप्रवर संबोधन सुनकर मुनि परशुराम को लगा कि उनका निरादर हो रहा है। ऐसा जान श्री राम ने उन्हें समझाया कि यदि ब्राह्मण कहकर सचमुच ही मुनि का निरादर करना उनका अभीष्ट होता तो संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसके सामने वो यूं नतमस्तक होते। युद्ध की ललकार सुनकर तो वो काल से भी लड़ सकते हैं। क्षत्रिय होकर जो युद्ध से डर गया वो तो कुल कलंकी है, किंतु सच तो यह है कि ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो वास्तव में भय रहित होता है वो भी आपसे डरता है। रघुवंश मणि के कोमल किंतु गूढ़ वचन सुनकर मुनि परशुराम की बुद्धि पर पड़ा पर्दा जैसे अचानक ही उठ गया। उन्होंने श्री राम के पौरुष और पराक्रम की परीक्षा करने के उद्देश्य से विष्णु के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उन्हें देना चाहा कि तभी धनुष अपने आप ही श्रीराम के पास चला गया। स्तब्ध आश्चर्यचकित परशुराम के सारे संदेह जैसे क्षण भर में मिट गए। उन्होंने श्री राम के प्रभाव को समझ लिया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति और जय जयकार करने लगे।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

आइए श्रोताओं, अब आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल होगा 7:20 से। समझदारी का हिसाब, अकाउंट्स और टैक्सेशन की बातें, विविधा के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम आप सुनेंगे आज सुबह 8:30 पर। वार्ताकार हैं कैलाश चंद्र शर्मा। सुशीला वसुनिया और साथियों के गाए लोकगीत, लोक संगीत

में सुबह 9 बजे और तारा मिश्रा और साथियों के गाए लोकगीत शाम 6:45 पर सुने जा सकते हैं। आशा भोसले के गाए गैर फिल्मी नगमों का आनंद लीजिएगा सुगम संगीत में सुबह 9:15 और शाम 6:30 से। अनुजा जोकरकर का राग भैरव में ख्याल गायन शास्त्रीय संगीत में हम आपको सुनवाएंगे सुबह 9:30 और रात्रि 10:30 पंडित गोस्वामी गोकुलोत्सव जी महाराज का गाया राग यमन में ख्याल सुनवाया जाएगा। सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन होगा सुबह 10:05 पर। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लें। हमारे टेलीफोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटी कोड 0731। 11 बजे से आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की गरिमामय उपस्थिति में सशस्त्र सीमा बल के इन्वेस्टिट्योर सेरेमनी का प्रसारण आज दिन में 11:30 से किया जाएगा। ये प्रसारण कार्यक्रम की समाप्ति तक जारी रहेगा। दोपहर की सभा में फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं 12:30 पर। महिला सभा होगा 1:00 से। कार्यक्रम में आरंभिक चर्चा होगी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की। योजना के क्रम में सुकन्या समृद्धि योजना के विषय में जानकारी होगी। मेरी उड़ान क्रम में हुनरमंद कलाकार रचना जोशी से की गई बातचीत आप सुन सकते हैं। फूड जोन के अंतर्गत मिलेट वेजिटेबल पुलाव बनाने की विधि बताई जाएगी। काम की बातें में महिलाओं के लिए डिजिटल स्टोरेज, डिजिटल सुरक्षा, इस विषय पर बात होगी। 1:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। 1:45 का समय होगा सुगम संगीत का। दोपहर 2 बजे फिल्म संगीत सुना जा सकता है और 2:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश होगा। सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे आप युवाणी कार्यक्रम सुनेंगे जिसमें राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर कुछ बात होगी, साथ ही हमारे शहर क्रम भी होगा। 5:45 का समय होगा फिल्म संगीत का। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग शाम 6 बजे सुनवाया जाएगा। 7:30 पर प्रायोजित किसानवाणी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा। इसके प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। रात्रि 8 बजे सुर्खियों में कार्यक्रम हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। दिल ने फिर याद किया फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 8:15 पर। चित्रगीत कार्यक्रम रात्रि 9:15 पर सुनवाया जाएगा। रात्रि 9:30 उर्दू कार्यक्रम कहकशां आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 10 बजे से। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की।

6:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में संस्कृत में समाचार और 7 बजे हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: विहितवान्। अयं कार्यक्रमः यायावरसभ्यतानां समृद्धक्रीडा परम्पराणां संस्कृतेः सांस्कृतिक वैभवस्य च उत्सवरूपेण आयोज्यते। इतः प्राग् प्रधानमन्त्री मोदी शंघाई सहयोग संघटन शिखर सम्मेलनस्यावधौ रूस, ईरान, किर्गिज गणराज्य, अर्मेनिया देशानां नेतृभिः सह द्वैपाक्षिकोपवेशनं कृतवान्। प्रधानमन्त्री अद्य शंघाई सहयोग संघटनस्य 26वें शिखर सम्मेलनं च संबोधयिष्यति। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी मंत्रालयस्य उच्च अधिकारिभिः सह समीक्षोपवेशनं कृतवान्। गोष्ठ्यामस्यां हरित ऊर्जा क्षेत्रे भारतस्य प्रगतिम् अग्रे नेतुं तथा पूर्वोत्तर राज्येषु नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनानां विस्तारं कर्तुं गभीरा चर्चा समजायत। मन्त्रिणा संसूचितं यत् प्रशासनं स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यानि प्राप्तुं पूर्ण प्रतिबद्धतया कार्यं विदधाति। केन्द्र राज्ययोः परस्पर सहयोगेन जल प्रबन्धनस्य लक्ष्यानि प्राप्तुमद्य जलशक्ति मन्त्रालयेन विभागीय शिखर सम्मेलनम् आहूतम्। दिनद्वयं यावत् प्रचलन्त्याम् अस्यां गोष्ठ्यां विविध राज्यानाम् अधिकारिणः सहभागितां करिष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः संकल्पानुसारं एषः मञ्चः राष्ट्रिय जल नीतेः त्वरितान्वयनाय मार्गं प्रशस्तं विदधाति। पर्यावरण संरक्षणाय स्वच्छता संस्कृतेः प्रसाराय च अद्य जगत प्रकाश नड्डा मन्त्रिणा स्वच्छता पखवाड़ा इत्यस्य शुभारम्भो विधीयते। सितम्बर मासस्य 15 दिनांकं यावत् अस्य अभियानस्य माध्यमेन देशे सिंगल यूज प्लास्टिक इति वस्तुभ्यः मुक्तिं प्राप्तुं जनजागरूकता प्रवर्धयिष्यते। उर्वरक विभागेन सर्वेभ्यः कार्यस्थलेभ्यः स्वच्छता नियम पालनाय च आह्वानं कृतम्। प्रशासनेन मणिपुरे जनगणना कार्यस्य स्थगनस्य निर्णयः कृतः। अयं निर्णयः तावत् केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन ह्यः नवदिल्ल्यां मणिपुरस्य वर्तमानस्थितेः मूल्यांकनाय आयोजितस्य उच्चस्तरीय समीक्षोपवेशनस्य अध्यक्षतानन्तरं कृतः। तदनन्तरं मणिपुरस्य उच्चन्यायालयेन निर्देशः दत्तः यत् अग्रिमादेशपर्यन्तं मणिपुरे जनगणना कार्यं स्थगितमेव तिष्ठेत्। भारतेन आर्थिक जगति पुनः कीर्तिमानं रचितम्। अस्य वित्तवर्षस्य अप्रैल जून त्रैमास्यां देशस्य वास्तविक सकल गृहोत्पादः 17.8% अवर्धत। प्रधानमन्त्री मोदी प्रावोचत् यद् वैश्विक समाह्वानानां सम्मुखीकरणं विधाय अपि भारतेन एषा महती उपलब्धिः समर्जिता। चतुर्थः भारत जर्मनी पर्यावरणमञ्चः अद्य नवदेहल्यां निर्वहिष्यते। अस्य मञ्चस्य मुख्यमुद्देश्यं पर्यावरणसंकटस्य जलवायु परिवर्तनस्य च समाह्वानानां सम्मुखीकरणाय द्विपक्षीय सम्बन्धान् सुदृढं कर्तुमस्ति। केन्द्रीय मन्त्री भूपेन्द्र यादवः जर्मन मन्त्रिणा कार्स्टन श्नाइडर इत्यनेन सह अस्य सम्मेलनस्य सह अध्यक्षतां विधास्यति। फुटबॉल इत्येतस्यां क्रीडायां एषमः अंडर 20 एशिया कप इत्यस्यां चषक स्पर्धायां भारतेन ह्यः ताश्कंद नगरे सीरिया देशं 1-0 इति अंकान्तरालेन पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कल बिश्केक में 6ठे विश्व घुमंतू खेलों के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। ये द्विवार्षिक आयोजन घुमंतू सभ्यताओं की समृद्ध खेल परंपराओं, संस्कृति और विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा तथा रक्षा क्षेत्रों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित के सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में भी 10.3% की वृद्धि हुई। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि इस समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चले आ रहे जल विवाद का समाधान हो गया है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच सम्मेलन आज नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। अमरीका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दो दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमरीका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 लोग अभी लापता हैं। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के खिसकने के कारण आई बाढ़ से भुट्टीकोशी नदी के किनारे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए तथा पन बिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बैठक में देश में हरित विकास को गति देने और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी पहलों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बातचीत हुई। बैठक में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्यघर, पीएम कुसुम और पीएम जनमन योजनाओं के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की गई। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, साथ ही कपड़े के थैलों और दोबारा उपयोग वाली बोतलों को बढ़ावा देना भी है। यह अभियान 15 सितंबर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप, 2 कोपा अमरीका खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
4: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
5: सच कहा, इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
4: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
2: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
1: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
2: अरे काहे का मजा।
1: क्यों, क्या हुआ?
2: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
1: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
2: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
1: ये हुई ना बात।
3: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
4: क्या?
3: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
4: वो कैसे?
3: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: पर सुनेंगे कैसे?
3: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
5: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: क्या बात है सखी, बड़ी खुश नजर आ रही हो।
4: खुशी की तो बात है, हमारा पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा अब मंगलवार के साथ साथ गुरुवार और शुक्रवार को भी होगा।
3: अरे वाह, ये तो वाकई खुशी की बात है। समय क्या रहेगा?
4: वही दोपहर 1 बजे।
3: तो सुनना ना भूले कार्यक्रम महिला सभा।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: भोपाल केंद्र है, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज शिवपुरी में विकास कार्यों और अमृत भारत रेलवे स्टेशन का लेंगे जायजा। प्रदेश के 1,22,000 विद्यार्थियों को आज मिलेंगे लैपटॉप के लिए 25,000 रुपए। और प्रदेश में अगले 4 दिन भारी बारिश के आसार, उमरिया और बालाघाट में ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के अन्य नेताओं के साथ कल शाम किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित 6ठे विश्व घुमंतू खेलों के आधिकारिक उद्घाटन समारोह में भाग लिया। ये द्विवार्षिक आयोजन घुमंतू सभ्यताओं की समृद्ध खेल परम्पराओं, संस्कृति और विरासत का जश्न मनाता है। विभिन्न देशों को अपनी साझा संस्कृति के जीवंत उत्सव में एक साथ लाता है। इससे पहले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रूस, ईरान, किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिन के शिवपुरी दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज श्री सिंधिया शिवपुरी में छात्रावास, सड़कों और अमृत भारत रेलवे स्टेशन का जायजा लेंगे और कोलारस रेलवे स्टेशन पर उज्जैनी एक्सप्रेस के नए ठहराव की शुरुआत करेंगे। कल वे कलेक्ट्रेट में दिशा की बैठक में शामिल होने के साथ प्रधान डाकघर का लोकार्पण और पोस्टल प्रशिक्षण केन्द्र का भूमि पूजन करेंगे। श्री सिंधिया ने कल शिवपुरी जिले के पिछोर में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इन सड़कों से ग्रामीण इलाकों में आवागमन और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। श्री सिंधिया ने बामौर कला में करीब 1,24,00,000 रुपए की लागत से बने उप तहसील भवन का लोकार्पण भी किया। भोपाल के संदीपनी विद्यालय महात्मा गांधी की उच्चतर माध्यमिक शिक्षिका डॉ. अर्चना शुक्ला का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए हुआ है। उन्होंने विज्ञान की पढ़ाई को किताबों तक सीमित न रखकर प्रकृति और समाज से जोड़ने का प्रयास किया। विद्यार्थियों के साथ मिलकर गौरैया संरक्षण, पेड़ पौधों की पहचान और बीज संरक्षण जैसे प्रोजेक्ट तैयार किए। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शिक्षक दिवस पर 5 सितम्बर को आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें सम्मानित करेंगी।
1: मेरा नाम डॉक्टर अर्चना शुक्ला है। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और गवर्नमेंट स्कूल्स में मैं साइंस एंड बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। इस साल मेरा नॉमिनेशन प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए मध्य प्रदेश से हुआ है। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। यहाँ पर अगर मुख्यतः हम देखें कि क्या ऐसा कार्य है जो मैंने दूसरे शिक्षकों से विभिन्न किया है, तो उसमें मुख्य रूप से जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, यानी परियोजना आधारित शिक्षण। तो जब भी मैं विद्यार्थियों को पढ़ाती हूँ तो उनको कोई भी विषय सीधे परिभाषा ना देकर मैं उनसे कोई प्रोजेक्ट कराती हूँ ताकि वो उस प्रोजेक्ट को करते करते और चीज़ों को सीख सके।
0: ओरछा में भारतीय जनता पार्टी की 2 दिन की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में संगठन को मजबूत करने और प्रदेश के विकास पर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा है कि पार्टी सेवा, सुशासन और सामाजिक समरसता के संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी। बैठक में युवा, महिला, किसान, आदिवासी, रोजगार और औद्योगिक विकास जैसे मुद्दों पर मंथन हुआ। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरकार के 2.5 साल के कामकाज की जानकारी दी और 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाने की बात कही। बैठक में बुंदेलखंड के विकास और किन्वितवा परियोजना पर भी चर्चा हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 साल के लोक सेवा कार्यकाल के सम्मान में 17 सितम्बर से 18 अक्टूबर तक अभियान चलाने का भी दिया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 2 सितंबर को ग्वालियर में बलराम जयंती महोत्सव और सहकारी किसान समागम में शामिल होंगे। कार्यक्रम भीला मैदान परिसर में आयोजित किया जाएगा, जहां विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम ने तैयारियां शुरू कर दी है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में 12वीं में पहली बार 75% या उससे ज्यादा अंक लाने वाले करीब 1,22,000 विद्यार्थियों को

लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों के खातों में ये राशि ट्रांसफर करेंगे। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार इस पर करीब 305 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करेगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कल दतिया पहुंचकर पीताम्बरा शक्तिपीठ में मां पीताम्बरा के दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि, शांति और जन कल्याण की कामना की। इसके बाद उन्होंने वन खंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक भी किया। मीडिया से बातचीत में श्री शुक्ल ने कहा कि ओरछा में विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश के लिए भविष्य की रूपरेखा पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता देने की भी बात कही। भोपाल में सहकारिता खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कल नरेला रक्षाबंधन महोत्सव का शुभारंभ किया। पहले दिन वार्ड 44, 78 और 69 में करीब 22,000 बहनों ने उन्हें राखी बांधी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा और जिनजी बहनों ने भी हिस्सा लिया। श्री सारंग ने कहा कि नई पीढ़ी आधुनिक सोच के साथ भारतीय संस्कृति और परम्पराओं को भी आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि नरेला विधानसभा उनके लिए राजनीति क्षेत्र नहीं बल्कि परिवार है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिन प्रदेश के कई जिलों में भारी और अति भारी बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दाब क्षेत्र और टर्फ के असर से 4 सितंबर तक कई संभागों में तेज बारिश की संभावना है। आज उमरिया और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पाए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी, जनपद पंचायत खालवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और सीडीपीओ का एक माह का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। मंदसौर में भारत सरकार की आपदा मित्र योजना के अंतर्गत जिला आपदा प्राधिकरण द्वारा 7 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू किया गया है। आगर मालवा कलेक्टर ने कल जिला अस्पताल के आकस्मिक निरीक्षण करने के बाद डॉक्टरों की बैठक में निर्देश दिए हैं कि जिला अस्पताल में उपलब्ध मानव और अन्य संसाधनों का उपयोग कर मरीजों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। अशोकनगर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कल शाम सेवानिवृत्त हुए शासकीय सेवकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। नर्मदापुरम में 12 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। धार में शिक्षक दिवस पर विश्व रिकॉर्ड धारी जिला शिक्षक सम्मान समारोह समिति द्वारा 208 सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। इंदौर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 58 और वार्ड क्रमांक 60 में पार्षद पद के निर्वाचन की प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न होगी। मंडला कलेक्टर ने जिला योजना भवन में आयोजित समय सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। दतिया शहर के इंदरगढ़ रोड स्थित नगर पालिका के ट्रंचिंग ग्राउंड में कचरे में मौजूद हानिकारक सामग्री मवेशियों के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने कहा है कि मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविरों में प्राप्त समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जाए। सीहोर के बुधने स्थित अदालत कॉलोनी में जलभराव वाले एक खाली प्लॉट में मगरमच्छ दिखाई दिया। मगरमच्छ को पानी में तैरते देख आसपास के रहवासियों में दहशत फैल गई। भोपाल के रिहायशी इलाकों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई कल और तेज हो गई। इनमें कुछ प्रतिष्ठानों को निगम की टीम ने सील कर दिया है। उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की पंचमी और भादो माह की पहली सवारी निकाली गई। सवारी की रामघाट पहुंचने पर आयोजित पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल हुए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में छोटी बहन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीत शैलेंद्र ने लिखा और इसका संगीत तैयार किया था शंकर जयकिशन ने। और आइए अब हम आपको सुनवा रहे हैं मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का गीत। आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है। आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

एक कली मुस्काई इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। इसे मोहम्मद रफी ने गाया है। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत।

0: होगा। हाय हाय।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाश

0: आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: मुकेश और सुमन कल्याणपुर के स्वर में लीजिए सुनिए दिल ही तो है फिल्म का गीत, रचना साहिर लुधियानवी की, संगीत रोशन का।

जब याद किसी की आती है, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इसे लता मंगेशकर ने आवाज दी, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, मदन मोहन का संगीत। आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल। अगला गीत हमने लिया है फिल्म मेरे जीवन साथी से।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म थी मेरे जीवन साथी। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत, संगीत आर डी बर्मन का। और आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं आप आए बहार आई इस फिल्म का गीत। इस गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है।

आप आए बाहर आई इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने। श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का सुनहरे पल कार्यक्रम समाप्त करने की शालिनी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है। आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला? मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
1: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमरीका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय

0: का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया और अर्जेंटीना के फुटबॉलर नियोलन मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। 21 साल के शानदार करियर का अंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में भारत, चीन और रूस सहित 10 अन्य सदस्य देश शामिल हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। भारत आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड अपनाए जाने के हमेशा से खिलाफ रहा है। भारत का मानना है कि क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए सदस्य देशों के बीच संपर्क बढ़ना जरूरी है। हालांकि संपर्क परियोजनाओं के साथ सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत सदस्य देशों के युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने और स्टार्टअप व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर देता रहा है। भारत का मानना है कि युवाओं की ऊर्जा, नवाचार और उद्यमिता क्षेत्रीय विकास और सहयोग को नई गति दे सकती है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रही थी। इस बीच अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ उप प्रेस सचिव कुश देसाई ने कहा कि विकास के ये आंकड़े ट्रंप प्रशासन के भारत को एक तेजी से बढ़ती आर्थिक शक्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं।
3: मुझे लगता है कि ये आंकड़े उस बात की पुष्टि करते हैं जो राष्ट्रपति और प्रशासन शुरू से ही कहते आ रहे हैं। भारत एक गतिशील, मजबूत और मुश्किलों का सामना करने में सक्षम अर्थव्यवस्था वाला देश है और मुझे लगता है कि जो जीडीपी रिपोर्ट या आंकड़े सामने आए हैं वे फिर इस बात को पुख्ता करते हैं कि भारत यहाँ तेजी से उभरती हुई एक बड़ी ताकत है।
0: अमेरिका के एशविल में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दो दिन की बैठक का आज अंतिम दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बीसेंट ने बढ़ते वैश्विक कर्ज से निपटने के लिए मजबूत विकास, उच्च निवेश और बेहतर उत्पादकता की आवश्यकता पर बल दिया है।
4: हमने अमेरिका को पूंजी के प्रवाह और व्यवसायियों को विकसित करने के लिए दुनिया का प्रमुख केंद्र बनाया है। हमने लाखों कामकाजी परिवारों को ऐतिहासिक कर राहत दी है और ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया की महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त किया है। ये उपलब्धियां विकास के अगले दौर को आकार दे रही हैं और हमने तो अभी शुरुआत ही की है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: Every great journey begins with people coming together. टू लिस्ट।

0: Listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला पूरी तरह ठुकरा दिया है। भारत ने न्यायाधिकरण के अधिकार को नकारते हुए उसके निर्णय को कानूनी रूप से अमान्य बताया है।
2: भारत ने दोहराया कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित है। यह बयान हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि संधि को स्थगित करने के भारत के कारण इसके निलंबन या समाप्ति को उचित नहीं ठहराते। पैनल ने भारत को 1960 के जल बंटवारे समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन जारी रखने का आह्वान किया। हालांकि भारत ने इस फैसले को खारिज करते हुए तर्क दिया कि मध्यस्थता पैनल की स्थापना ही संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए की गई थी। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में बचाव दल त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना स्थल पर सुरंगों में फंसे 600 से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बचाव दल सुरंगों को साफ करने और जीवित लोगों की तलाश के लिए विस्फोटकों, भारी मशीनों और एयर पंप का उपयोग कर रहे हैं।
3: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 939 हो चुकी है और 3,925 लोग अब भी लापता हैं। जल विद्युत परियोजनाओं से 279 लोगों को बचाया जा चुका है। वहीं देश भर के 11,000 से अधिक लोगों को भी बचाया गया है। भारत ने बचाव अभियान और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल भेजे हैं। बाढ़ से 11 जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। नेपाल ने कई देशों से फ्रीजर, डीएनए परीक्षण उपकरण, ड्रोन पुल और विशेष सुरंग बचाव उपकरण सहित सहायता मांगी है। 18 भारतीय फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम डीएनए पहचान में सहायता कर रही है। मयूर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: मौसम विभाग ने आज उड़ीसा के सुंदरगढ़ और क्योंझर के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट, 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
4: उड़ीसा में एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज सुंदरगढ़ और केंद्र के लिए रेड वार्निंग जारी की है। झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग लागू है, जबकि 12 जिलों येलो वार्निंग में है। ये बारिश गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और उससे सटे उड़ीसा के उत्तरी तटीय इलाकों में बने वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के कारण हो रही है। IMD का अनुमान है कि कल के बाद बारिश कम हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार भुवनेश्वर।
1: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच सम्मेलन आज नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 2 सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 28 अगस्त तक खरीफ फसलों के अंतर्गत 171 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बुआई हो चुकी थी। मंत्रालय ने बताया कि धान की खेती 414 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है, जबकि दलहन की बुआई 115 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हुई है। नागालैंड विधानसभा का 9वां सत्र आज शुरू होगा। इस सत्र में फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बिल 2026, कई सरकारी विधेयक और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने इस साल जनवरी में हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ पुलिस स्टेशन पर हुए विस्फोट के सिलसिले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले अभिकरण ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तेजाब की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार से इसकी बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बारे में जानकारी मांगी है। ये निर्देश वर्ष 2013 में दिए निर्देश के बावजूद तेजाब की आसानी से उपलब्धता पर चिंताओं के बीच आया है। न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर तेजाब हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने अर्जेंटीना को विश्व कप 2 कोपा अमरीका खिताब जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप क्वालिफायर में भारत ने सीरिया को 1-0 से हरा दिया है। ताशकंद में कल सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मैच बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, किर्गिस्तान में प्रधानमंत्री मोदी बोले यूक्रेन युद्ध का अंत आवश्यक। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे ले जाता है। जनसत्ता की सुर्खी है, किर्गिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री की ईरान के राष्ट्रपति से भी वार्ता और कूटनीति से पश्चिम एशिया के संघर्ष के समाधान की अपील की। अमर उजाला के शीर्षक है वैश्विक बाधाओं के बाद भी रफ्तार में भारत, विकास दर 7.8% पहली तिमाही में भारत की जीडीपी सबसे तेज, खपत और निर्यात ने संभाला मोर्चा। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा अगर हिंदू जागते हैं तो दुनिया जागती है, मानवता की निस्वार्थ सेवा के जरिए भारत विश्वगुरु बना। राजस्थान पत्रिका ने समुद्र में शक्ति शीर्षक से सचित्र दिया है, INS निपुण नौसेना में शामिल, समुद्र में गहराई तक मदद पहुंचाने में सक्षम है स्वदेशी पोत।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की GDP 7.8% बढ़ी, रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक। अमेरिका ने भारत को गतिशील, मजबूत और अनुकूल अर्थव्यवस्था बताया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय का फैसला ठुकराया। नेपाल में बचाव दल ने पन बिजली संयंत्र के कर्मचारियों की तलाश में पहाड़ी पर विस्फोट किया। और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया, 21 साल के शानदार करियर का अंत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एड्रेस एससीओ समिट इन किर्गिस्तान्स कैपिटल बिश्केक टुडे। कंट्रीज जीडीपी ग्रोज 7.8% इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, बीटिंग आरबीआई प्रोजेक्शन ऑफ 7%। US describes India as dynamic, strong and resilient economy. New Delhi rejects Court of Arbitration award on Indus Water Treaty. Nepal rescuers blast hillside in search of hydropower workers as families wait anxiously. And Lionel Messi announces retirement from international football, ending legendary 21-year career with Argentina national team. Prime Minister Narendra Modi will address the 26th Shanghai Cooperation Organization SCO Summit in Bishkek, Kyrgyzstan today. The 26th SCO Summit has been held under the central motto, Together for Sustainable Peace, Development and Prosperity.

0: दीपावली पर इनकी पूजा करते हैं, लेकिन समय के साथ बही खाते रखने में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है
1: जी,
0: जिसने व्यापार करना और आसान बना दिया है। और वो डिजिटल बही खाते यानी कंप्यूटर पर अकाउंट्स मेंटेन करना
1: जी
0: आजकल की एक अनिवार्यता हो गई एक तरह से कहें
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: आजकल तो बहुत अच्छे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मार्केट में उपलब्ध है। डिजिटल अकाउंट्स रखने का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि इसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। स्टॉक का मिलान तुरंत हो जाता है, टैक्स रिटर्न भरना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए समय के साथ चलना
1: जी
0: और डिजिटल अकाउंटिंग अपना व्यापार करना हमारे अपने व्यापार में होता है
1: जी, जी।
0: सही समय पर खरीदी और बिक्री
1: हाँ
0: और खर्च आदि का एंट्री कर दी जाए तो ये सॉफ्टवेयर एक क्लिक पर आपको व्यापार की उधारी, उसकी देनदारी, उसका प्रॉफिट लॉस
1: जी
0: आपको एक रिपोर्ट बना के दे देंगे, ताकि आप आगे की मार्केटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग सही समय पर करके अपने व्यापार को कई गुना बढ़ा सकते हैं
1: जी।
0: और अब तो AI का जमाना है,
1: हाँ।
0: घंटों का काम मिनटों में और सेकंडों में होने लगा है।
1: बिल्कुल,
0: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं कि अगर आपकी खरीदी
1: हाँ।
0: और आपके बैंक स्टेटमेंट
1: जी
0: अगर आपके मेल में आते, ईमेल में
1: हाँ,
0: आते
1: हाँ जी, हाँ,
0: तो उस ईमेल को सॉफ्टवेयर के साथ में आप लिंक कर दीजिए, तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली वो ईमेल में से खरीदी बिल उठा लेगा, बैंक स्टेटमेंट उठा लेगा और आपकी सारी अकाउंटिंग एंट्रियां मिनटों में कर देगा। चाहे वो 50 पेज का कोई बैंक स्टेटमेंट आया हो,
1: हाँ,
0: उसको एक मिनट भी नहीं लगेगा।
1: यानी हमें सिर्फ ईमेल करना है,
0: सिर्फ ईमेल को सॉफ्टवेयर से सिंक कर देना है।
1: अच्छा,
0: लिंक कर देना है।
1: क्या बात है,
0: आपको न तो ईमेल खोलना है ना कुछ करना, वो खुद खोलेगा, खुद एंट्री करेगा, सब कुछ खुद कर लेगा।
1: बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही सर। अच्छा, एक और समस्या जो हर व्यापारी झेलता है और वो है उधारी। माल तो बिक जाता है पर पैसा समय पर नहीं आता। बही खाते में उधारी का प्रबंधन वो कैसे किया जा सकता है?
0: उधारी व्यापार का एक पहिया है
1: जी,
0: उसके बिना व्यापार करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है
1: जी,
0: व्यापार हो नहीं पाएगा। लेकिन एक चीज है कि बिना ब्रेक की गाड़ी खतरनाक होती है।
1: बिल्कुल,
0: आपसे भी मेरा एक सवाल है
1: जी,
0: ये गाड़ी में ब्रेक किस लिए होते हैं? गाड़ी को रोकने के लिए या चलाने के लिए?
1: गाड़ी को रोकने के लिए।
0: गाड़ी को रोकने के लिए नहीं। अब आप यहां पे कुछ गलत भी हो सकते हैं।
1: हाँ।
0: गाड़ी में ब्रेक होते हैं गाड़ी
1: चलाने
0: के लिए। अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो क्या आप गाड़ी चला पाएंगे? कल्पना करिए कि आपकी कार के ब्रेक जो है फेल हो गए, आप घर पे हैं और आपको ऑफिस आना है।
1: हाँ।
0: ब्रेक नहीं लगेंगे आज, उस गाड़ी से आप ऑफिस आ पाएंगे क्या?
1: नहीं,
0: नहीं आ पाएंगे। तो ब्रेक किस लिए है?
1: यानी गाड़ी चलाने,
0: गाड़ी चलाने के लिए।
1: हाँ,
0: ठीक है
1: जी।
0: तो ऐसा बिल्कुल ऐसा ही व्यापार में भी होता है कि अगर आप व्यापार में उधारी ही उधारी देते जाएंगे तो क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा जब इस तरह का एक समय आ जाएगा जब ग्राहक, व्यापार और पैसा सब कुछ चले जाएगा
1: जी।
0: तो उधारी का प्रबंधन बहुत अनिवार्य है। तो उधारी के तीन मुख्य जो बातें हैं मैं आपको बताता हूं
1: जी,
0: जिसको प्रबंधन में व्यापारियों को बहुत मदद मिलेगी। सबसे पहला ये कि जो भी ग्राहक आता है, हर ग्राहक जिसको आप उधारी देना चाहते हैं
1: जी,
0: उसकी वित्तीय जानकारी लेकर एक क्रेडिट लिमिट बनाइए।
1: अच्छा,
0: कि उसको कितना उधार दे सकते हैं, उसकी क्षमता कितनी है
1: जी।
0: दूसरा, उसको कितने समय के लिए उधार दिया जा सकता है। ये हो गया।
1: बिल्कुल।
0: दूसरा है कि आप एजिंग रिपोर्ट समय समय पर निकालिए
1: जी,
0: कि आप देखिए 30 दिन पुरानी उधारी कौन सी हो गई, 60 दिन पुरानी कौन सी हो गई, 90 दिन पुरानी कौन सी हुई, ज्यादा पुरानी और ऐसे बना सकते हैं
1: जी, जी।
0: तो ऐसे ही उधारी बना के उसका एक मैनेजमेंट करना है। आप एक स्टाफ को लगाइए, ज्यादा पुराना हो गया तो उसको कैसे रिकवरी करना उसका प्लानिंग करिए
1: जी, जी।
0: और तीसरा है कि समय समय पर आप अपने ग्राहकों को रिमाइंडर भेजिए। समय पर अगर उगाही कर लेंगे उधारी की तो आपका ग्राहक भी बचेगा और व्यापार भी बढ़ेगा
1: जी।
0: समय समय पर उधारी की एजिंग की एक तय लिमिट के साथ
1: जी
0: चेक करने का सिस्टम भी बनाना चाहिए। व्यापार की साइज के अनुसार एक या अधिक स्टाफ आपको उधारी मैनेज करने के लिए रखना चाहिए
1: जी।
0: और अगर नया, मान लीजिए कोई आपका व्यापारी है जो नया नया व्यवसाय शुरू किया है
1: जी, जी,
0: तो उसको तो इसमें बहुत ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है।
1: बिल्कुल।
0: कारण क्या है कि अगर वो शुरुआत में ही उधारी देना प्रारंभ कर देगा तो सबसे पहले जब नया व्यापार प्रारंभ करते हैं तो कोई बैंक भी फाइनेंस उस समय करती नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: तो फाइनेंस कहां से लाएंगे आप?
1: सही बात,
0: बड़ी परेशानी हो जाएगी।
1: हाँ।
0: तो आप क्या करेंगे, कि उस समय

0: आपको उधारी मैनेज पूरा ठीक से करना चाहिए। और इसके अलावा एक काम और करना चाहिए
1: जी,
0: कि व्यापारी को अपनी स्वयं की क्षमता भी आंकनी चाहिए,
1: बिल्कुल,
0: कि वो कितना उधार दे सकता है। पता चला कि उसका 10 करोड़ का टर्नओवर है, उसमें 5 करोड़ की उधारी है
1: जी,
0: तो क्या हो जाएगा, आपका 5 करोड़ फंस गया,
1: बिल्कुल,
0: कैसे काम करेंगे, कैसे आप अगला माल खरीदेंगे।
1: सही बात है।
0: और एक इसमें विशेष बात एक और है कि जब आप बैंक लोन लेने जाते हैं
1: जी,
0: तो आप हमेशा देखिए सारी बैंकों में लगभग एक क्राइटेरिया होता है उधारी को लेके, कि बैंक के सामान्यतया 90 दिन के ऊपर जो भी उधारी होती है उस पर फाइनेंस नहीं करती। अब क्यों नहीं करती है, बैंकों ने भी स्टडी की होगी, क्यों नहीं करती है वो, क्योंकि बैंक ये मान के चलते हैं कि अगर कोई उधारी 90 दिन या उससे ज्यादा हो गई है तो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल है
1: जी,
0: और वो डूबने के बहुत ज्यादा चांस है।
1: हाँ।
0: इसलिए उधारी जो है हमें बिल्कुल उसका ठीक से मैनेजमेंट
1: करना
0: जरूरी
1: है। आपका जो सुझाव है बहुत ही महत्वपूर्ण लगा। हमारे एक श्रोता ने सवाल भेजा है कि पारिवारिक व्यवसायों में जहां घर के लोग ही दुकान संभालते हैं, वहां अकाउंट्स में पारदर्शिता कैसे रखी जाए, क्योंकि घर और दुकान का पैसा एक हो जाता है।
0: बिल्कुल, ये एक गंभीर समस्या है
1: जी।
0: हमारे यहाँ कई बार ये देखने में आता है, और जब तक एक क्या बोलते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं आता है, कोई व्यापारी जो है नया नया व्यापार शुरू किया है,
1: हाँ,
0: और थोड़े समय बाद तो समझ में आ जाता है कि कितना लाभ हानि क्या हो रही है, वो निकाल लेता है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन कई बार ऐसी ये समस्याएं अगर होती है तो व्यापार भी थोड़ा सा खतरे में आ जाता है। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप परिवार का जो खर्च है और जो व्यवसाय के खर्च हैं उनको इकट्ठा एक साथ देखकर कोई अलग अलग हिसाब नहीं रख रहे, तो उसमें क्या हो जाएगा, व्यापार का कितना लाभ हानि है आप पता नहीं कर पाएंगे, समय पे नहीं मालूम पड़ेगा।
1: बिल्कुल।
0: तो आपको करना क्या चाहिए इसके लिए, कि परिवार के लोग ही अगर व्यापार कर रहे हैं, सभी लोग मिलकर व्यापार कर रहे हैं, तो परिवार के सदस्य दुकान या फैक्ट्री में जितना समय दे रहे हैं उसी अनुसार उनका एक वेतन तय करना चाहिए
1: जी,
0: और वो वेतन समय समय पर उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर देना चाहिए, और पारिवारिक खर्चे जितने भी होते हैं
1: जी
0: वो उस खाते में से करना चाहिए।
1: अच्छा।
0: इससे क्या हो जाएगा कि जो वेतन आपने परिवार में जो व्यक्ति समय दे रहा है उसको वेतन दिया, वो आपके व्यापार के खर्च में लिखा गया,
1: हाँ,
0: बैंक खातों में दर्ज हो गया वो
1: जी,
0: तो वहां पे आपको खर्च मिल जाएगा, खर्च की छूट मिल जाएगी
1: जी,
0: और इधर जो भी वेतन मिला है
1: हाँ,
0: वो सदस्य अपने व्यक्तिगत ITR में उसको जोड़ेगा, वहां पे उसको वो टैक्स भरेगा। तो इससे क्या होगा, मिक्सिंग नहीं होगा
1: जी,
0: और इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि जब जॉइंट फैमिली होती है
1: हाँ,
0: और सब लोग मिलके व्यापार कर रहे हैं
1: हाँ,
0: तो कई बार कोई व्यक्ति ज्यादा खर्च कर रहा है, कोई कम कर रहा है, कोई कितना कर रहा है
1: जी,
0: तो ये कभी आगे चल के भविष्य में कोई विवाद का कारण भी बन सकता है। तो आप अगर ये अलग अलग रखते हैं तो इसमें परिवार के विवादों से भी बचाव हो सकता है।
1: बिल्कुल। कि व्यक्तिगत खर्चों को व्यावसायिक खर्चों के रूप में दिखाना क्या कानूनन सही है?
0: बिल्कुल नहीं है। व्यक्तिगत खर्चे आप व्यवसाय में दिखा ही नहीं सकते। अगर आपने दिखा दिए तो उसकी छूट नहीं मिलेगी।
1: अच्छा।
0: मान लो कि आपका कोई व्यक्तिगत खर्चे के घर में कोई आप ग्रोसरी लेके आए और उसका आपने क्या किया, व्यवसाय में उसको लिख दिया
1: जी।
0: अब ग्रोसरी और आपका जो व्यवसाय है वो कुछ अलग तरीके का है,
1: दोनों मैच नहीं करेंगे,
0: इलेक्ट्रॉनिक का कोई व्यापार करते
1: जी,
0: हैं
1: जी।
0: और ग्रोसरी ले रहे हैं आप
1: हाँ,
0: या घर के कोई सामान आपने ले लिया और वहां डाल दिया, तो वो उसमें मिलना नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: सीधे तौर पर ये होता है कि बिजनेस चलाने के लिए जो खर्च आपने किया है वही खर्च अलाउ होता है।
1: अच्छा।
0: प्रॉफिट के पहले उन्हीं को आप माइनस कर सकते हैं। जो व्यक्तिगत खर्च होते हैं उनको बिल्कुल भी आप बिजनेस वाले खर्चों में नहीं दिखा सकते
1: जी। जी।
0: एक और क्या चीज होती है कि ये जो व्यक्तिगत खर्च आप दिखाते हैं जब ऑडिट होता है आप, तो ऑडिट जब होता है तो ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर को इनको रिपोर्ट करना पड़ता है।
1: अच्छा जी।
0: और इससे होता क्या है कि जब ये ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट होते हैं तो आपको इसकी छूट नहीं मिलती है। आपका जब इनकम टैक्स का कैलकुलेशन होगा
1: हाँ,
0: तो पता चला कि आपने मान लो 5 लाख का प्रॉफिट आपने निकाल के दिखाया और 1 लाख का आपने व्यक्तिगत खर्च उसमें डाल दिया
1: जी।
0: आपको लग रहा है कि आपको तो 5 लाख पे टैक्स लगेगा
1: जी,
0: लेकिन होगा क्या, वो 1 लाख रुपया जो व्यक्तिगत खर्च आपने डाल दिया वो 5 लाख में जुड़ जाएगा और आपको 6 लाख पे टैक्स लगेगा
1: जी।
0: तो इसके उलट आप अगर वो 1 लाख रुपया की सैलरी दे देते
1: हाँ,
0: तो व्यक्तिगत उसकी इनकम में जाती।
1: बिल्कुल।
0: और व्यक्तिगत जो अपना रिटर्न भरेगा व्यक्ति
1: हाँ,
0: उनको 12 लाख की छूट है।
1: बिल्कुल।
0: ठीक है
1: हाँ,
0: तो वो क्या होता, मान लीजिए कि 12 लाख से कम सैलरी है
1: हाँ,
0: दूसरी कोई इनकम है नहीं,
1: हुँ,
0: टोटल रिटर्न 12 से कम

0: का जा रहा तो टैक्स जीरो होता,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन यहां क्या होगा, 5 लाख का आपने प्रॉफिट दिखाया, लाख रुपए वो जुड़ गया, आपको 6 लाख पे टैक्स पे करना पड़ गया। और यही सैलरी अगर आप अलग से दे दिए होते पहले, और उसके व्यक्तिगत खाते में जा चुकी होती, तो यहाँ आपको खर्च मिल जाता और उधर आपको व्यक्तिगत में टैक्स भी नहीं लगता।
1: बहुत बड़ी बात है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है अगर वो व्यापार कर रहे हैं। अब बात आती है छोटे दुकानदारों और व्यवसायियों के लिए, तो वो किस तरह से मैनेज करना है उसको?
0: अब इसमें ऐसा है कि सही अकाउंट रखते हैं तो वित्तीय स्थिति जो भी होती है, लाभ हानि जो इसको अपन बोलते हैं, उसका एक स्पष्ट पता लगता है
1: जी।
0: अब छोटे दुकानदार क्या होते, कई बार थोड़ी सी लापरवाही में क्या होता है, या समय नहीं मिलता या उतना ज्ञान नहीं हो पाता है शुरुआत में, तो वो वही खाते रख नहीं पाते, तो उससे क्या होता है कि सारा चीजें मिक्स होगी, कितना वो खरीद रहा है
1: जी,
0: कितना बेच रहा है, क्या मार्जिन आ रहा है, खर्च कितना हो रहा है, लाभ हानि कितनी हो रही है, वो नहीं निकाल पाता
1: जी।
0: तो इससे होता क्या है कि जब वो रिटर्न भरने जाएगा तो रिटर्न भरेगा तो कितना प्रॉफिट दिखाएगा, तो प्रॉफिट में गलती करेगा, हो सकता है एक्चुअल प्रॉफिट कम हो रहा हो और इसकी वजह से वो ज्यादा प्रॉफिट दिखा के ज्यादा टैक्स पे कर रहा है,
1: बिल्कुल।
0: इसके अलावा अगर डिजिटल उसको मेंटेन करना है तो आजकल तो डिजिटल ऐप तक उपलब्ध,
1: बिल्कुल,
0: जरूरी नहीं कि आप कोई सॉफ्टवेयर खरीदोगे, आप एक मोबाइल ऐप में भी इसको मेंटेन कर सकते हो
1: जी जी।
0: आपका व्यापार इतना बड़ा नहीं है, छोटे व्यापारी हैं, तो आप ऐप में ही मेंटेन करो, कोई
1: बस यहां मैं रोक रहा हूं आपको, क्या वो ऐप सुरक्षित रहेगा?
0: हाँ, अब मेरा ये इसमें है कि बहुत सारे ऐप जो है वो फ्री के आते हैं।
1: अच्छा जी,
0: क्या होता है कि प्रॉपर जगह से कहीं से डाउनलोड नहीं होते हैं और वो फ्री के होते हैं तो उनमें वो सुरक्षित नहीं रहे
1: जी जी।
0: लेकिन करना क्या चाहिए, अगर मोबाइल ऐप आप यूज करते हो तो पेड ऐप आते हैं
1: जी,
0: जो हम जिनका चार्जेस लगता है,
1: हाँ हाँ बिल्कुल,
0: और रिपोर्टेड कंपनियों के होते हैं जो इसी के लिए होते हैं, उनके लिए हम एक छोटा मोटा कोई एक पेमेंट करना होता है
1: जी जी।
0: आप किसी मान लीजिए अकाउंट्स का कोई अकाउंटेंट अफोर्ड नहीं कर सकते
1: जी,
0: कम से कम ऐप का एक छोटा सा पेमेंट तो कर ही सकते,
1: बिल्कुल कर सकते।
0: और आपके व्यक्तिगत डाटा, व्यक्तिगत अकाउंट्स इतने महत्वपूर्ण होते हैं, व्यक्तिगत जानकारी इतनी महत्वपूर्ण होती है कि अगर वो लीक होती है तो कोई मिसयूज हो सकती है,
1: बिल्कुल।
0: तो आपको क्या करना चाहिए, वो एक छोटी सी राशि बचाने के चक्कर में ये नहीं हो जाए कि हमारा व्यवसाय खतरे में आ जाए,
1: बिल्कुल सही बात है।
0: तो ये आपको बिल्कुल उसको ध्यान में रखना चाहिए।
1: व्यापार में कैश बेसिस और मर्केंटाइल यानी कि एक्रुअल बेसिस अकाउंटिंग में क्या मुख्य अंतर आप हमें बताएंगे
0: जी? हाँ, इसमें ऐसा है जो कैश बेसिस होता है,
1: हाँ,
0: इसको मैं बिल्कुल आपको सरल तरीके से बताता हूँ
1: जी जी,
0: कि कैश बेसिस में उधारी का अकाउंटिंग नहीं होता है।
1: अच्छा,
0: उधारी का अकाउंटिंग किसमें होता है? एक्रुअल बेसिस में होता है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: अब कैश बेसिस में क्या होता है कि जब कैश का लेन देन होगा तभी भाई खातों में एंट्री की जाएगी
1: जी।
0: जैसे आज आपने कोई माल खरीद लिया 1 लाख रुपए का और पेमेंट कर रहे हैं आप 1 महीने बाद
1: जी,
0: तो उसकी भाई खातों में खर्च के रूप में,
1: हाँ,
0: खरीदी के रूप में 1 महीने बाद जब आप पेमेंट करेंगे उसी, हाँ, समय एंट्री होगी, नहीं तो वो खरीदी नहीं मानी जाएगी।
1: अच्छा जी।
0: और एक्रुअल बेसिस में क्या होता है कि आपने पेमेंट कभी भी आप करो,
1: हाँ,
0: आज आपने माल खरीद लिया, बिल बन गया, बिल आ गया, अब पेमेंट 2 महीने 4 महीने बाद कभी भी आप करेंगे,
1: हाँ,
0: लेकिन वो खरीदी आपकी मान ली जाएगी
1: जी।
0: अब ये समस्या क्या आती है कि एक ही वित्तीय वर्ष में खरीदा और उसी वित्तीय वर्ष में मान लीजिए पेमेंट कर दिया तो वो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। होता क्या है, वर्ष के अंत में मान लो फरवरी मार्च में खरीदा आपने
1: जी,
0: और पेमेंट अगले साल कर रहे हो आप
1: जी,
0: और 31 मार्च को आपके प्रॉफिट लॉस निकलने वाला है, रिटर्न भरने वाला है, और आपने क्या किया, केस बेसिस अगर होगा तो उसकी उसका भले ही माल आपने मार्च में खरीदा हो
1: जी,
0: पेमेंट अगर आप अप्रैल में कर रहे हैं तो वो अप्रैल में ही खर्चे में बुक किया जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: जबकि एक्रुअल बेसिस में ये होगा कि वो जो माल आपने मार्च में खरीदा,
1: हाँ,
0: पेमेंट भले ही आप अप्रैल में करेंगे,
1: हाँ,
0: 31 मार्च को जो बैलेंस शीट बनेगी,
1: हाँ,
0: आपके खाते बनेंगे, हाँ, फाइनल अकाउंट्स बनेंगे,
1: हाँ,
0: उसमें उसको देनदारी के रूप में दिखाना पड़ेगा।
1: अच्छा,
0: और आपके खर्चे में उसको मिलेगा जो बैलेंस शीट में देनदारी के रूप में खड़ा हो जाएगा। ऐसा का ऐसा ही आप जो सेल करते हैं, जो आप माल बेचते हैं उसमें भी यही होता है।
1: अच्छा,
0: कि माल आपने आज बेच दिया,
1: हाँ,
0: और पैसा आएगा मान लीजिए 2 महीने बाद
1: जी,
0: तो केस बेसिस में क्या होगा, जब पैसा मिलेगा तभी आपकी वो आय या बिक्री मानी जाएगी
1: जी,
0: खातों में तभी रजिस्टर होगी,
1: हाँ।
0: और एक्रुअल में क्या होगा, अगर आपने बिल जारी कर दिया, बिल इश्यू कर दिया, तो उसी समय आपकी बिक्री मान ली जाएगी
1: जी,
0: चाहे पैसा 2 महीने बाद 4 महीने बाद 6 महीने बाद आए, और अगर वो मान लो नहीं भी आया, किसी कारण से डूब गया,
1: हाँ,
0: तो इस साल तो बिक्री मान ली गई आपकी,
1: हाँ,
0: और जब वो पैसा मिलेगा
1: जी,
0: या नहीं भी मिला मान लो डूब गया, तो हो सकता फिर उसके छूट आपको अलग तरीके से बैड डेट्स के रूप में कुछ समय बाद 2-4-5 साल बाद भी मिलेगी। तो ये मेनली जो हमारा अंतर है दोनों का ये है।
1: जी, कई बार व्यापारियों की शिकायत होती है कि साल के अंत में बही खाते के

0: और गोडाउन के वास्तविक जो स्टॉक होता है उसमें बड़ा अंतर आ जाता है, तो इसको कैसे बचाया जाना चाहिए?
1: ये एक बहुत ही आम समस्या है।
0: जी
1: अगर आप देखेंगे तो ये ऐसी एक आम समस्या है कि सभी लोग इनमें कहीं ना कहीं जो है परेशान रहते हैं।
0: जी
1: क्या व्यापारी के पास में इतनी सारी कमोडिटी होती है, बहुत सारी, जिसको इंडिविजुअल जो है उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाता।
0: जी
1: तो उसमें क्या होता है कि जब वर्ष के अंत में बैलेंस शीट बनती है,
0: जी
1: प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फाइनल अकाउंट्स वगैरह बनते हैं, उस समय क्या होता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन और जो आपका रिकॉर्ड स्टॉक बता रहा है उनमें दोनों में अंतर आ जाता है।
0: अच्छा
1: इससे बचने का क्या तरीका है कि आप सीधा सिंपल सी बात है कि आप साल में एक बार क्यों फिजिकल स्टॉक और रिकॉर्ड का मिलान करते हैं? आप ऐसा कोई सिस्टम बनाइए कि आप हर महीने क्यों ना उसको चेक करते हो।
0: बिल्कुल
1: अब हर महीने जो आपका स्टॉक रजिस्टर बता रहा है
0: हाँ
1: उसको एक बार मिलान करिए कि
0: हाँ
1: फिजिकल स्टॉक में उतना है या नहीं
0: जी
1: है।
0: जी
1: कोई वेरिएशन अगर आता है तो उसी महीने उसको एडजस्ट करिए।
0: बिल्कुल सही है
1: तो अगर आप ये एक सिस्टम बना लेंगे कि
0: हाँ
1: फिजिकल स्टॉक को समय समय पर अगर आप महीने में मिलाना
0: मिलान
1: चाहिए,
0: कर
1: मैं तो
0: लें।
1: बोलता हूं हर हफ्ते कहीं नहीं करना चाहिए।
0: हाँ सही बात है
1: बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े मॉल है, मान लो
0: हाँ
1: इतने बड़े बड़े मॉल है, कितने कमोडिटी होती है।
0: हाँ
1: अगर वो इस तरह का करेंगे तो कैसे बिजनेस ही नहीं हो पाएगा उनका।
0: बिल्कुल सही बात
1: तो
0: है
1: उनका तो सॉफ्टवेयर पे रियल टाइम पे वो चीज सब निकल के आती है।
0: जी
1: इसमें एक और आपको, अगर ये हर हफ्ते मिलाएंगे तो एक तो सब जो एंड में है बैलेंस शीट आपकी सही बनेगी, प्रॉफिट लॉस ठीक बनेगा।
0: हाँ
1: एक छोटा सा सवाल और करता हूं आपसे
0: हाँ
1: मैं
0: हाँ
1: कि आप ये बताइए
0: हाँ
1: कि कौन सा स्टोर कीपर या कैशियर अच्छा होता है, जो छुट्टी लेता है या छुट्टी बिल्कुल नहीं लेता है?
0: हाँ ये सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो छुट्टी नहीं लेता है
1: नहीं लेता।
0: वो अच्छा होता है, मान सकते।
1: अब आप इसमें गलत भी हो सकते हैं।
0: अच्छा
1: मेरे को तो लगता है कि कई बार ऐसी परेशानी या ऐसी गलत फहमी हो जाती है कि यार ये
0: हाँ
1: व्यक्ति छुट्टी नहीं ले रहा है,
0: हाँ
1: इसका मतलब ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। वो केस काउंटर पे बैठा हुआ है, वो स्टॉक
0: हाँ
1: पे बैठा हुआ है।
0: हाँ
1: अब देखो, कोई हम बैंकों का ऑडिट करते हैं,
0: जी
1: तो बैंक ऑडिट करने जाते हैं तो वहां पे हम, ये भी हमारा एक देखने का बिंदु
0: जी
1: रहता है,
0: हाँ
1: मैनेजर से पूछते हैं कि अटेंडेंस रजिस्टर बुलवा लेते हैं कि ये कैशियर है
0: हाँ
1: हमारा। हालांकि वो काम नहीं होता है
0: बिल्कुल
1: कि अटेंडेंस रजिस्टर देखने का हमारा क्या मतलब है, हम तो फाइनेंशियल अकाउंट देखने गए।
0: जी बिल्कुल
1: हम उसको पलटते हैं, ये
0: हाँ
1: कैशियर ने छुट्टी कितनी ली?
0: अच्छा
1: और वो कैशियर ने साल भर में छुट्टी नहीं ली, लगातार आ रहा है, तो
0: हाँ
1: हमको वहां पे डाउट होता है। क्योंकि हम ऑडिटर हैं तो हम क्रिटिकली उसको देखते हैं, यार
0: बिल्कुल
1: ये व्यक्ति निरंतर लगातार आ रहा है, एक दिन छुट्टी नहीं ली, तो ऐसा तो नहीं कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है और इसकी एब्सेंस में कोई आके बैठेगा और इसकी गलती पकड़ लेगा,
0: हाँ
1: तो उस डर से वो छुट्टी नहीं ले रहा।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है
1: ऐसे किसी स्टोर कीपर में भी होता है
0: हाँ
1: कि स्टोर कीपर जो है वो छुट्टी नहीं ले रहा है,
0: हाँ
1: वो हमेशा मतलब वही आता है, वही मतलब रहता ही है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कुछ गड़बड़ हो रही है, उसको ये
0: बिल्कुल
1: डर है कि उसके एब्सेंस में कोई दूसरा आएगा, वो
0: जी
1: स्टॉक चेक करेगा, तो
0: हाँ
1: वहां पे गड़बड़ हो जाएगी।
0: सही बात है
1: इसलिए कर्मचारियों का कई बार, इससे बचने के लिए क्या कर सकते हो आप,
0: हाँ
1: कि कर्मचारियों का इंटरनल ट्रांसफर करना चाहिए। केसियर को हमेशा केस पे नहीं बिठाइए,
0: जी
1: उसको कहीं इधर उधर ट्रांसफर करिए,
0: बिल्कुल
1: उसका ट्रेनिंग करिए। अगर नहीं आता है तो ट्रेनिंग करें, इधर से उधर दूसरा काम दीजिए, उसकी जगह दूसरे को बिठाइए।
0: जी
1: तो कई सारी बड़ी कंपनियों ने ऐसे सिस्टम बनाए होते हैं, तो ये बचने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है।
0: जी कई बार छोटे या बड़े प्रतिष्ठानों में ऐसा देखने को मिलता है कि सब कुछ ठीक चलने के बाद भी गल्ले या स्टॉक में शॉर्टेज निकल आती है। इस आंतरिक गड़बड़ी को रोकने के लिए बही खातों में क्या नियंत्रण किया जा सकता है या क्या किया जाना चाहिए?
1: देखिए, ये लगभग वैसे ही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं और एक्सप्लेन करता हूं कि ऐसे केस में जब ऐसी कोई गड़बड़ी आपको लगता है कि मिल सकती है या गड़बड़ी कहीं चल रही है, तो इसमें ड्यूल कंट्रोल सिस्टम
0: जी
1: एक तरह से हम कर सकते हैं। करना क्या चाहिए कि मान लीजिए केस बुक भी एक ही व्यक्ति लिख रहा है और वही केस भी संभाल रहा है,
0: जी
1: फिजिकल केस भी वही संभाल रहा है और केस बुक में एंट्री भी वही कर रहा है।
0: जी
1: तो अगर वो केस में कोई गड़बड़ी कर रहा होगा तो एंट्री करके मैनेज कर लेगा।
0: बिल्कुल
1: तो करना क्या चाहिए, जो केस संभाल रहा है उसको केस बुक में एंट्री करने का अधिकार मत दो।
0: जी
1: कहीं ना कहीं प्रिकॉशनरी हम ऐसा कर सकते हैं कि जो केस का काम कर रहा है वो सिर्फ फिजिकल केस का ही काम करें, उसको केस बुक में एंट्री करने का अपन उसमें अधिकार नहीं दें।
0: जी
1: ऐसे केस स्टोर कीपर के बारे में भी हो सकता है कि जो स्टोर फिजिकल स्टॉक स्टोर कीपर जो वहां बैठा रहता है, जो स्टॉक इशू करता है,
0: हाँ हाँ
1: वो एक व्यक्ति वहां बैठा हुआ है,
0: जी
1: तो स्टोर कीपर को स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करने का अधिकार नहीं दिया जाए।
0: जी
1: ये करके आप कई सारी परेशानियों से बच सकते हैं। और ये
0: बिल्कुल
1: जो नियंत्रण की आपने बात की है,
0: हाँ
1: तो एक नियंत्रण करने में आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलेगी। और इसमें मैनेजमेंट को भी चाहिए कि वो सरप्राइज चेक करें, कभी कभी खुद भी चेक करें।
0: बिल्कुल सही बात है। हर व्यापारी चाहता है कि उसका व्यवसाय बढ़े,

0: और व्यवसाय बढ़ने के साथ साथ नई शाखा खुले या फैक्ट्री में नई टेक्नोलॉजी आए या नई मशीनरी लगे, तो इसके लिए बैंक से लोन लेते समय बही खातों की क्या भूमिका होनी चाहिए?
1: बिल्कुल मुकाम जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि बैंक से लोन तो सभी को लेना ही रहता
0: जी
1: है जनरली।
0: बिल्कुल
1: ये एक जनरल फंडा है, या जनरल अपन बात करें तो ऐसा है कि कोई भी व्यापार अगर बड़ा करना हो तो बैंक से लोन लेना ज्यादा उचित रहेगा।
0: हाँ
1: घर की पूंजी लगा के व्यापार बहुत बड़ा आप नहीं कर सकते।
0: जी जी
1: तो क्या करना है कि बैंक के पास जब लोन लेने हम जाते हैं तो उस समय बैंक क्या देखती है? बैंक आपका व्यवहार नहीं देखेगी।
0: जी
1: बैंक क्या देखेगी? बैंक देखेगी आपके फाइनेंशियल अकाउंट देखेगी, आपका बैंक स्टेटमेंट देखेगी, आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स देखेगी,
0: जी
1: बैलेंस शीट है, अकाउंट वगैरह वो सारा देखेगी। अगर आपने सही मुनाफा दर्ज कर रखा है, टैक्स भरा हुआ है,
0: जी
1: तो बैंक चुटकियों में लोन दे देता है। बैंक
0: है
1: को रिकॉर्ड पे पूरा चाहिए, और बैंक देखती है वहां पे कि भैया स्टेटमेंट में कितना आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारा। तो लोन लेने से पहले आपको हो सकता है आपका जो बैलेंस शीट है उसको ठीक से करवा लाना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: और ऑडिटर से उसको ऑडिट करवा लेना चाहिए।
0: जी
1: ऑडिट मान लीजिए एप्लीकेबल नहीं है आपके केस में, तो
0: हाँ
1: कम से कम आप सर्टिफाई कर सकते हो, तो बैंक
0: हाँ
1: को एक कॉन्फिडेंस आ जाता है।
0: फैक्ट्रियों में भवन, मशीनें, गाड़ियां, ऑफिस का फर्नीचर लंबे समय तक इस्तेमाल होता है, तो व्यापारी भाई अक्सर पूछते हैं कि हर साल इनके डिप्रिसिएशन को बही खाते में दिखाना क्यों जरूरी हो जाता है?
1: डिप्रिसिएशन जो होता है
0: जी
1: एक तरह का, जो जिसको मूल्य ह्रास बोलते हैं हम, कि कीमत में जो कमी हो जाती है समय के साथ में,
0: जी
1: मशीनें उपयोग हो रही हैं, माल बन रहा है, निर्माण चल रहा है,
0: जी
1: तो ये जो भवन, मशीनें, गाड़ियां, फर्नीचर सब जो समय समय पर इस्तेमाल होती हैं, पुरानी होती जाती है,
0: जी
1: तो उनकी जो कीमत कम होती है उसी को हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं।
0: जी जी
1: अगर आप देखें तो अगर ये डिप्रिसिएशन खातों में बुक नहीं करेंगे
0: हाँ
1: तो क्या होगा? डिप्रिसिएशन एक तरह का खर्च है।
0: जी
1: अगर खातों में बुक नहीं करेंगे तो आपका प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा,
0: हाँ जी
1: तो क्या हो जाएगा? आपको ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। जबकि असल में हुआ क्या कि आपकी जो संपत्ति है उसकी कीमत घट गई है, कम हो गई है,
0: जी
1: और जो आप निर्माण कर रहे हैं उसके साथ साथ में एक तरह से देखा जाए तो डिप्रिसिएशन के रूप में उन एसेट का भी यूज हो रहा है।
0: जी
1: तो आप अगर उसका बुकिंग नहीं करते हैं या नहीं
0: हाँ
1: लेते हैं तो आपको ज्यादा मुनाफा दिखाना पड़ेगा और ज्यादा टैक्स आपको भरना पड़ेगा।
0: हाँ
1: तो एक तरह से देखा जाए तो फैक्ट्री में कच्चे माल के साथ में मशीनों का भी तो उपयोग हो रहा है, तो उसका भी कोई ना कोई चार्ज तो उसमें डालना ही चाहिए,
0: जी
1: तभी
0: जी
1: जाके आपका प्रॉफिट सही दिखेगा और आपको
0: बिल्कुल
1: टैक्स में बचत होगी,
0: जी
1: और आप आगे चल के और नई मशीन वगैरह खरीदनी होगी तो आप ठीक से प्लानिंग भी कर पाएंगे।
0: बिल्कुल उद्योगों और व्यापार में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी, PF, ESI और ओवरटाइम का हिसाब रखने में अक्सर गलतियां हो जाती है, तो जिससे कानूनी पचड़े की भी शुरुआत हो जाती है, इससे कैसे बचा जा सकता है?
1: देखिए लेबर लॉ जो है, श्रम कानून है, पालन करना अभी आज के समय में या पहले से ही बोले कि बहुत अनिवार्य है, और इनसे सुरक्षा भी है।
0: जी
1: कोई भी पॉलिसी बनती है, कोई सरकार बनाती है
0: जी
1: तो आपकी सुरक्षा के लिए बनाती है, और अब बिजनेस के लिए भी अच्छा है और जो कर्मचारी उनके लिए भी ठीक रहता
0: जी
1: है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए कि कर्मचारी का जो वेतन रजिस्टर होता है उसको अटेंडेंस के साथ में, या डिजिटल अटेंडेंस अपन रखते हैं उसके साथ उसको मिलना चाहिए, वो
0: जी
1: डेली होना
0: जी
1: चाहिए।
0: जी
1: PF काट रहे हैं, ESIC काट रहे हैं, TDS काट रहे हैं, तो उनके रिटर्न आप समय पे जमा करें, और जो काटी हुई राशि है उसको ठीक से टाइम पे विद इन ड्यू डेट आप उसको चालान के रूप में जमा कर दें। कई
0: बिल्कुल
1: बार क्या होता है, एक छोटी सी लापरवाही अगर आपने कर दी तो उसकी वजह से भी ये बहुत जो गलती है बहुत भारी पड़ सकती है, बहुत हैवी पेनल्टी भी लग सकती है, और कई बार कानूनी कार्रवाई भी जो है व्यापारों पे हो जाती है। मैंने ऐसे ऐसे उदाहरण देखे हैं
0: जी
1: कि PF और ESI में गड़बड़ी होने की वजह से वो व्यापार या फैक्ट्री बंद होने की नौबत आ गई। इतने बड़े केसेस, इतनी बड़ी कानूनी कार्रवाई हो जाती है,
0: जी
1: तो
0: जी
1: इनको जो है पालन करना बहुत अनिवार्य आज
0: बहुत
1: है।
0: जरूरी है। अब आते हैं टैक्सेशन से जुड़े हुए प्रश्नों पर, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अगर अंतिम तिथि अगर चूक जाए तो फिर क्या करना है?
1: देखिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जो तिथियां दी हुई हैं उसमें दो तीन तरह से अलग अलग जो तिथियां हैं वो मैं आपको बता देता
0: जी
1: हूं।
0: जी
1: एक तो यह है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है, सैलरी है उनकी, कोई रेंट की इनकम है, ब्याज की इनकम है,
0: जी
1: कैपिटल गेन है, लेकिन बिजनेस की इनकम नहीं है, तो उनके लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
0: अच्छा ठीक है
1: लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनकी बिजनेस इनकम भी है,
0: हाँ
1: दूसरी इनकम भी है लेकिन साथ में बिजनेस इनकम भी
0: जी
1: है,
0: जी
1: तो उनके लिए अंतिम तिथि इस बार से
0: हाँ
1: 31 अगस्त कर दी गई है। पहले
0: अच्छा
1: इनकी भी 31 जुलाई होती थी,
0: हाँ
1: लेकिन इस बार इनको अलग अलग कर दिया कि बिजनेस इनकम है
0: जी
1: और ऑडिट नहीं होता है तो 31 अगस्त है।
0: अच्छा
1: अब इसके बाद में आगे चले
0: हाँ
1: तो ऐसे व्यापारी
0: हाँ
1: जिनकी भली सब सारी इनकम हो या

0: सिर्फ बिजनेस इनकम हो
1: जी,
0: लेकिन बिजनेस का ऑडिट भी होता है।
1: हाँ हाँ बिल्कुल,
0: दो तरह से हो सकता है। एक तो भाई बिजनेस है, इनकम है, लेकिन ऑडिट के लिमिट में नहीं आता है, तो रिटर्न आपको 31 अगस्त के पहले भरना पड़ेगा
1: जी।
0: लेकिन बिजनेस की इनकम है और ऑडिट भी होता है तो आपके लिए दो तिथियां उसमें है
1: जी।
0: तो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की तिथि है 30 सितंबर, और फिर रिटर्न जमा करने की तिथि हाँ। जो है वो है 31 अक्टूबर।
1: अच्छा अच्छा,
0: ऐसे करके किया हुआ है। अगर समय निकल जाए, रिटर्न नहीं भर पाए आप टाइम पे
1: हाँ।
0: तो उस केस में लेट फाइलिंग फीस लगती है, 234F धारा है उसमें लगती है
1: जी।
0: 1000 रुपए से ले 5000 रुपए तक हो सकती है।
1: अच्छा,
0: 5 लाख से कम इनकम है तो 1000 रुपए, 5 से ऊपर है तो 5000 रुपए की आपको लेट फीस लगती है। इसके अलावा जो टैक्स पेबल अगर है तो उस पर ब्याज लगता है। ऐसे ही अगर ऑडिट रिपोर्ट आप समय पे सबमिट नहीं कर पाते, जैसे 30 सितंबर की डेट है, तो उस केस में पेनल्टी बड़ी हैवी है।
1: अच्छा,
0: उसमें क्या होता है कि सेल्स टर्नओवर जो है उसका 0.5% पेनल्टी लग सकती है, और अधिकतम पेनल्टी आपकी 1.5 लाख तक जा सकती है। और ITR फाइल नहीं करने का एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो ये होता है, ये तो ठीक है, ये तो फाइनेंशियल आपका चलिए 1000-5000 कोई भी भर देगा
1: हाँ, हाँ।
0: लेकिन बड़ा नुकसान क्या होता है
1: हाँ।
0: कि मान लें उस वर्ष में
1: हाँ।
0: आपका कोई लॉस है
1: जी,
0: बड़ा लॉस है
1: हाँ।
0: और उसको इनकम टैक्स में एक प्रोविजन है कि लॉस अगर इस साल में है तो आप आगे ले जाएंगे और आगे के जो भविष्य के प्रॉफिट है उसमें उसको सेट ऑफ कर सकते हो
1: जी, जी।
0: इस साल 10 लाख का लॉस है, अगले साल 10 लाख का प्रॉफिट है, तो आगे अगर समय पर रिटर्न भरा तो अगले साल भी आपको 10 लाख पे टैक्स नहीं भरना है। क्यों? क्योंकि पिछले साल का 10 लाख का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करके यहां लाए तो वो सेट ऑफ हो जाएगा
1: जी जी।
0: लेकिन समय पर रिटर्न नहीं भरा
1: हाँ।
0: तो 10 लाख का लॉस जो इस साल आगे जा सकता था वो आगे नहीं जाएगा।
1: अच्छा,
0: तो होगा क्या, अगले साल 10 लाख का जो प्रॉफिट है उसे पूरे पे टैक्स लग जाएगा। तो एक ये बहुत बड़ा नुकसान है, इसको ध्यान में बिल्कुल रखना चाहिए व्यापारियों को और समय पे भरना चाहिए।
1: बिल्कुल, अब चूंकि अब हमारा समय कम है
0: जी,
1: आधा घंटा लगभग हमारा ये कार्यक्रम होने जा रहा है
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: तो हम ये सवाल आपसे जानना चाह रहे हैं कि ऑडिट की बात आई तो हमारे श्रोताओं को ये बता दीजिए कि इनकम टैक्स के नियमों के अंतर्गत अपने व्यापार का ऑडिट करवाना किन के लिए अनिवार्य है।
0: देखिए, ये ऐसा एक प्रश्न है
1: जी,
0: या सवाल आपने किया है, जिनको एक एक्सपर्ट तो ठीक से समझ जाते हैं लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए थोड़ा सा समझना मुश्किल पड़ता है
1: जी।
0: अब आपने सवाल किया है तो मैं एक कुछ मुख्य आधार वो बता देता हूँ कि अगर व्यापार का कुल टर्नओवर 1 करोड़ है या अधिक है
1: जी,
0: तो उसमें फिर ऑडिट कराना अनिवार्य है। लेकिन अगर आपका नगद लेन देन कुल टर्नओवर के 5% से कम है
1: जी,
0: ठीक है,
1: मतलब
0: 1 लाख में 5000 ही है रेशो अपन बात करें तो उस केस में क्या होता है, ये लिमिट बढ़ के 10 करोड़ हो जाती है। अदरवाइज तो 1 करोड़ क्रॉस किया ऑडिट करना है। लेकिन आपका ऑनलाइन बिजनेस होता है, डिजिटल ही पेमेंट होते हैं
1: जी,
0: या नगद पेमेंट 5% से कम है तो आपका सिर्फ 10 करोड़ तक वो लिमिट जाती है
1: जी।
0: ऐसे ही अगर आप बुक्स नहीं रखते
1: जी,
0: जैसा इनकम टैक्स में चाहिए, बुक्स नहीं रखते और आपका आपका टर्नओवर है वो 2 करोड़ तक है
1: जी,
0: तो उस केस में क्या होगा, नगद लेन देन अगर आपके 5% से कम है तो 3 करोड़ तक भी ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है अगर आप प्रॉफिट 8% दिखाते हो
1: जी।
0: और अगर आपके नगद लेन देन ज्यादा है तो 2 करोड़ तक आपको ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन शर्त क्या है कि 8% आपको प्रॉफिट रिटर्न में दिखाना पड़ेगा
1: जी।
0: ऐसे प्रोफेशनल की अगर बात करें तो प्रोफेशन में क्या होता है, 50 लाख की लिमिट है, 50 लाख क्रॉस होते ही आपको ऑडिट करवाना है। नगद लेन देन अगर 5% से कम है टोटल रिसिप्ट के तो ये लिमिट फिर 75 लाख हो जाती है
1: जी।
0: इस तरह की जो है लिमिट्स हैं और भी कुछ लिमिट्स हैं
1: जी,
0: लेकिन जो सरल जो सीधी सिंपल है वो मैंने आपको
1: बिल्कुल। शर्मा साहब, सवाल तो बहुत सारे हैं, प्रश्न भी बहुत सारे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे व्यापारी भाइयों के लिए बहुत कुछ और जानना जरूरी है, लेकिन हम चाहेंगे कि ये बातें हम किसी और प्रोग्राम के माध्यम से जानें। अब जो समय है वो हमें अनुमति नहीं दे रहा है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बहुत सारी जानकारी हमारे सुनने वालों को दी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी व्यापार कर रहे हैं या जो सामान्य उद्योग चला रहे हैं वो इस बातचीत के माध्यम से बहुत ही लाभान्वित होंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मुकाम जी, आकाशवाणी के माध्यम से सभी श्रोताओं से जुड़कर मुझे भी बहुत अच्छा लगा।
2: श्रोताओं, ये था आज का विविधा कार्यक्रम समझदारी का हिसाब। इस विषय पर केंद्रित कार्यक्रम में विशेषज्ञ थे कैलाश चंद्र शर्मा और उनके साथ बातचीत की मुकाम सिंह चौहान ने। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए लोक संगीत। आज हम आपको सुशीला वसुनिया के गाए मालवी लोकगीत सुनवा रहे हैं।

लोक संगीत में अभी आपने सुशीला वसुनिया के गाए मालवी लोकगीत सुने। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। कलाकार हैं आशा भोसले।

शास्त्रीय संगीत में अभी आपने आशा भोसले की गाई गैर फिल्मी रचनाएं सुनी। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत। आज हम आपको अनुजा जोकरकर का गाया राग भैरवी में ख्याल सुनवा रहे हैं। एक ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं खबर मोरी, तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं नीना हरी का। संगतकार हैं तबले पर अश्रुत पांचाल और वायलिन पर पंडित कमल कामले।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी आपने अनुजा झोकरकर का गाया राग भैरवी में ख्याल सुना। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, 10 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले की जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं इंदौर जिले की चिट्ठी, आलेख है मनिंद्र दुबे का और वाचन स्वर है दीपा सिंह का।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है इंदौर जिले की चिट्ठी, आलेख मनिंद्र दुबे, वाचन स्वर दीपा सिंह। इंदौर नगर निगम ने शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने और हरियाली बढ़ाने के लिए आधा किलो प्लास्टिक लाएं एक पौधा ले जाएं अभियान चलाया। 20 से 31 अगस्त तक चले इस अभियान में 4,644 नागरिकों 61 जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान 2,196 किलो प्लास्टिक जमा किया गया और प्लास्टिक देने वाले लोगों को 4,041 से ज्यादा अलग अलग प्रजातियों के पौधे बांटे गए। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में बिजासन टेकरी के सामने वन विभाग की जमीन रमना में 50,000 पौधे लगाए गए। मंत्री ने बताया कि इस साल जिले में 21 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। इसके अलावा इंदौर ने एक स्थान पर बड़ी संख्या में पौधे लगाकर और 2 साल तक उनका संरक्षण कर उन्हें पेड़ बनाने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। रेवती रेंज में लगाए गए पौधों की गणना के बाद एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 13,10,012 पेड़ होने की घोषणा की है। एक ही स्थान पर लाखों पौधे लगाकर उन्हें 2 साल तक संरक्षित करने का ये रिकॉर्ड है। इसी तरह इंदौर पुलिस ने जिले भर में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 नाम से 15 दिन का जन जागरूकता अभियान चलाया। स्कूल, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों और बस्तियों में लोगों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया। अभियान के दौरान 8,534 पुलिसकर्मियों, समाजसेवियों, विद्यार्थियों और नागरिकों ने मानव श्रृंखला बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इंदौर में विकास से जुड़ी एक बड़ी सौगात मिली। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लवकुश चौराहे पर 175 करोड़ रुपए की लागत से बने प्रदेश के पहले डबल लेयर फ्लाईओवर ब्रिज की एक भुजा का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ 2028 के दौरान यह फ्लाईओवर इंदौर उज्जैन मार्ग पर बढ़ते यातायात को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इंदौर जिले की फोटोयुक्त मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण पूरा होने के बाद 27 जुलाई को अंतिम सूची प्रकाशित की गई। अंतिम सूची के अनुसार जिले में नगरीय निकाय और पंचायत क्षेत्रों को मिलाकर कुल 25,08,181 मतदाता है। इनमें 12,62,983 पुरुष, 12,45,093 महिलाएं और 105 अन्य मतदाता शामिल हैं। आम लोगों की शिकायतों और समस्याओं के जल्द समाधान के लिए जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास

अभियान चलाया जा रहा है। 7 अगस्त से शुरू हुआ यह अभियान 8 जनवरी 2027 तक चलेगा। इसके तहत हर शुक्रवार नगर निगम, नगर परिषद और जनपद पंचायत क्षेत्रों में शिविर लगाए जा रहे हैं। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जिला रोजगार कार्यालय, ITI और जिला उद्योग केंद्र ने मिलकर 1 दिवसीय युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया। मेले में निजी क्षेत्र की 26 कंपनियों ने हिस्सा लिया और 531 अभ्यर्थियों का प्रारंभिक चयन किया गया। आपदा के समय लोगों को तुरंत मदद देने के लिए इंदौर जिले में 900 आपदा मित्र तैयार किए जाएंगे। पहले चरण में SDRF केंद्र पर 7 दिन का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। दिन में 150 आपदा मित्रों को प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें प्राथमिक उपचार, CPR, खोज और बचाव, बाढ़ प्रबंधन, आग से बचाव के शुरुआती उपाय और घायलों को सुरक्षित स्थान तक पहुँचाने का प्रशिक्षण दिया गया। इंदौर जिला मुख्यालय पर इनहेंसिंग एक्सेस टू जस्टिस विषय पर 2 दिवसीय वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसका शुभारंभ भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रमुख संरक्षक जस्टिस सूर्यकांत ने किया। इस दौरान विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के हिन्दी संस्करण और ब्रेल लिपि में गाइड का विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में बच्चों से जुड़े न्याय कार्यक्रम और मध्यस्थता पर सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किया गया। संगीत में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए भी इंदौर में मौका है। जिला मुख्यालय स्थित शासकीय लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय में 10 सितंबर को संभागीय लता मंगेशकर सुगम संगीत प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में 8 से 15 साल और 16 से 25 वर्ष की 2 आयु वर्गों में प्रतिभागी हिस्सा ले सकेंगे। इसके लिए 4 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। इंदौर जिले में HIV/AIDS को लेकर भी 12 अगस्त से सघन जागरूकता अभियान 3.0 चलाया जा रहा है। 12 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में लोगों को HIV संक्रमण के कारण बचाव के तरीकों और जांच तथा इलाज की जानकारी दी जा रही है। जिले को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन सुपोषण अभियान चला रहा है। अभियान के तहत कलेक्टर शिवम वर्मा ने गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए 1000 न्यूट्रिशन किट बांटी है। अभियान का उद्देश्य 6 महीने से 6 साल तक के गंभीर कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार कर उन्हें स्वस्थ और सामान्य श्रेणी में लाना है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे इंदौर जिले की चिट्ठी। आलेख मनिंद्र दुबे का था, वाचन स्वर था दीपा सिंह का। ये आकाशवाणी भोपाल,
1: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
2: हेलो MH हॉटलाइन।

0: एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। श्रोताओं को हम ये बता दें कि हमारे फ़ोन नंबर्स उन श्रोताओं के लिए जो हमसे आज नए जुड़ेंगे, हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2710223 और 2710224, इंदौर का एसटीडी कोड 0731। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 2710223 और 2710224, इंदौर का एसटीडी कोड 0731। हमारे उन श्रोताओं के जिनके फ़ोन कॉल पिछले कार्यक्रमों में लग चुके हैं, अनुरोध करेंगे कि कृपया 15 से 20 दिन का अंतराल रखें। और अब लेते हैं आज का पहला फ़ोन कॉल। हेलो एमएच हॉटलाइन जी।
1: शालिनी जी नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग।
0: कौन सा आप बोल रहे हैं?
1: जी मोहम्मद यूनुस खत्री बोल रहा हूँ, शिवा कॉलोनी गंगा। जो कल का विदाई समारोह बहुत शानदार रहा
0: जी, जी
1: हमारे सर के लिए
0: जी।
1: हमारे सर के लिए आज मैं डेडिकेट उनको गीत करना चाहता हूँ एमएच हॉटलाइन के माध्यम से
0: जी।
1: फिल्म का नाम है नाम और गीत के बोल हैं, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा
0: जी। आपकी तरफ से, सभी श्रोताओं की तरफ से ये गीत हम डेडिकेट करते हैं और आप सभी को सुनवाते हैं।
1: कल है तो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, कल हम
0: जी
1: गए थे, बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा
0: जी।
1: बढ़िया, बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया रहा, सब ने अच्छे से काम किया और सब बढ़िया, मेहनत इंसान की मेहनत ही रंग लाती है
0: जी। बिल्कुल सही बात है,
1: मेहनत के बिना कोई फल नहीं मिलेगा।
0: ये तो आपने बहुत सही बात कही।

0: कि जीवन में मेहनत करने से ही फल मिलता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैं भी मेहनत करता हूँ शॉर्ट लाइन में
0: जी,
1: मैं तो तन मन धन मोहब्बत और प्यार सबसे मतलब करता हूँ कि भाई नहीं अपना प्रोग्राम है अच्छे से अच्छा बनाओ।
0: जी बिल्कुल सही है, और हम उम्मीद करते हैं कि अब आप 15 दिन का अंतराल भी रखेंगे।
1: जी जी बिल्कुल, बड़ी दीजिए आपके आपकी आज्ञा सर आपको कर।
0: जी जी नहीं आज्ञा नहीं, देखिए सिर्फ अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है हमारा, ताकि नए लोगों को जुड़ने का मौका मिल सके।
1: वो तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है, हम तो 15 दिन में 20 दिन में कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं।
0: जी चलिए आपको सुनवा देते हैं खत्री जी आपकी पसंद का गीत, और सुनिए।

0: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
1: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
2: हेलो एमएच हॉटलाइन।
3: हेलो एमएच हॉटलाइन, नमस्कार मैडम।
2: नमस्कार, थोड़ा रेडियो सेट से दूर हो जाएं।
3: मैडम रेडियो तो मेरा मोबाइल पर चलता है, मैं मोबाइल पर बात कर रहा हूँ आपसे।
2: अच्छा, बताएं कौन सा गीत सुनेंगे, कौन सा आप बोल रहे हैं?
3: मैडम मैं गांव लिहेदिगर तालुका जामनेर जिला जलगांव महाराष्ट्र से दिनेश चौहान बात कर रहा हूँ।
2: जी दिनेश जी, बताएं कौन सा गीत सुनेंगे?
3: मैडम फिल्म का नाम है चांदनी।
2: चांदनी फिल्म का?
3: गाने के बोले लगी आज वो सावन के फिर वो झड़ी।
2: आपके यहाँ झड़ी लग रही है बारिश की?
3: झड़ी तो नहीं लग रही है, पर लेकिन अच्छा लगता है गाना सुनना। और ये मौसम ऐसा तो हो रहा है कि जैसा बारिश होगी ऐसा।
2: अच्छा,
3: तीन चार दिन से मतलब बहुत बादल छा रहा है।
2: अच्छा चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि बादल अच्छे बरसे भी और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद फोन करने के लिए।
3: शुक्रिया, नमस्कार मैडम।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हाँ, मैं खतरों से अशोक कुमार शर्मा बोल रहा हूँ
0: जी। शर्मा जी बताएं,
1: जी।
0: कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मुझे हमराज फिल्म का गाना सुना दिए, किसी पत्थर की मूरत से।
0: जी जी जी आप पहली बार फोन लगा रहे हैं कार्यक्रम में?
1: नहीं, ये क्या है कि मानसिक रोग है, बड़ी चिढ़ आ जाती है कभी कभी, तो मेरा 6 महीने में लगा होगा ये फोन।
0: जी जी जी
1: इससे पहले लगाया था एक बार तो लग गया था वो, और उसमें मैंने दरिंदा फिल्म का पूछा था, दरिंदा फिल्म की उपलब्ध नहीं थी गाने आपके पास।
0: कुछ गीत हैं जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है।
1: हाँ
0: जी,
1: तो ठीक है, आप ये मुझे सुना दीजिए।
0: जी,
1: जी
0: धन्यवाद फोन करने के लिए। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत।
1: थैंक यू मैम।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन सा आप बोल रहे हैं?
1: हेलो,
0: कौन सा आप बोल रहे हैं, नाम बताएं अपना।
1: मैं मोहम्मद रफी मंसूरी बोल रहा हूँ, पालदाना का इंदौर से। त्रिशूल
0: जी, मोहम्मद रफी मंसूरी जी, बताएं कौन सा गीत सुनेंगे?
1: फिल्म का है मैडम,
0: त्रिशूल फिल्म का कौन सा गीत?
1: जाने मन तुम कमाल करती, वो है ना वो वाला।
0: जी, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद फोन करने के लिए।
1: जी धन्यवाद।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो एमएच होटलाइन जी मैम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात
0: नमस्ते, आप अपना नाम बताएं।
1: जी। मैं नरेश प्रजापति बात कर रहा हूँ और एमएच होटलाइन कार्यक्रम का नियमित श्रोता हूँ।
0: जी, आपके नाम को लेकर भी बहुत सारी शिकायतें हैं कि आपका फोन हमेशा लग जाता है।
1: लेकिन
0: नरेश
1: मैं
0: जी,
1: तो ये
0: दूसरे
1: चीज
0: लोगों को नाराज कर रहे हैं आप अपने श्रोता साथियों
1: नहीं
0: को, जो आप ही के साथी
1: नहीं
0: हैं।
1: मैं तो उन श्रोता साथियों से ये कहना चाहूंगा, भाई मेहनत करिए, प्रयास करिए, क्योंकि प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। केवल शिकायत करने से कुछ नहीं होता है, यदि आप मेहनत करेंगे, डायल करेंगे तो आपका कॉल भी लगेगा, इसलिए
0: देखिए,
1: डायल
0: आप
1: करते रहिए
0: फोन
1: जी।
0: फोन छोड़ेंगे आप तो डायल कर पाएंगे।
1: नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, हमने फोन पकड़ के नहीं रखा
0: चलिए, अच्छा बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज।
1: जी हाँ, साहिर लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत, रफी साहब की मधुर आवाज, फिल्म नीलकमल, और इसका गीत है, आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार, मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में। अच्छा सा गीत है, बहुत ही बढ़िया गीत है,
0: जी,
1: और
0: गीत बहुत अच्छा है।
1: राजकुमार और वाहिदा वहीदा रहमान की ये फिल्म रही है,
0: जी
1: और
0: जी
1: बिल्कुल मजा आ जाता है इस गीत को सुनकर। नीलकमल के गीत वाकई में लाजवाब हैं।
0: बिल्कुल, बहुत सही बात है। इस फिल्म के सारे गीत लाजवाब हैं। और प्रजापति जी, उम्मीद करेंगे कि अब आप 1 महीने बाद हमें कॉल करेंगे
1: अच्छा
0: आपकी
1: मैम,
0: पसंद।
1: मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अच्छा,
0: जी
1: 1 महीने का बोलते हैं तो 1 महीने का तो नहीं, हाँ 1 सप्ते के बाद जरूर आप बताएं श्रोताओं को, कि 1 सप्ते का अंतराल जरूर दें। जी
0: चलिए, आप 1 सप्ताह का अंतराल दीजिएगा।
1: जी जी
0: आपको
1: धन्यवाद,
0: जी आपको
1: बिल्कुल
0: सुनवा देते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी बताएं कौन सा गीत सुनेंगे।
1: दीदी फिल्म का नाम है मुस्कान और गाने के बोले जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, ये वाला गीत सुनना है दीदी। और कुछ दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे।
0: जी बताएं।
1: पहले तो मांगेलाल चंदेल जी हैं, केसे सिंह राजपूत जी, रामबाबू शर्मा जी, राजेंद्र गंगवार जी, श्रीपाल गोयल जी हैं,
0: जी
1: और धीरज भाई रवाड़ी, दिलीप पाहुजा जी, राजू यादव जी, सतीश रघुवंशी जी, गंगाधर सावनकर जी हैं।
0: जी आपके काफी सारे दोस्त हैं और आप
1: जी
0: सब
1: ये
0: मिलके रेडियो सुनते
1: सभी
0: हैं।
1: लोग, जी हाँ दीदी, ये सभी आपको लाइव सुन रहे हैं अभी।
0: जी चलिए, तो आपकी पसंद का गीत सभी सुनना चाह रहे हैं।
1: हाँ दीदी।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन
1: जी मैम,
0: जी, कौन सा आप बोल रहे हैं? कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मैडम नमस्ते, आदाब।
0: नमस्ते, आदाब।
1: मैडम मैं भोपाल से आरिफ खान मंसूरी बात कर रहा था। मैडम
0: जी बताएं कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मैम आप मुझे सुनवा दीजिए, मिला फिल्म का गीत,
0: मिला फिल्म का कौन सा गीत?
1: गाने बोले कई सदियों से कई जन्मों से।
0: जी सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद फोन करने के
1: मैम
0: लिए।
1: मैं आपको एक बार कहना चाहूंगा कि
0: जी
1: मेरी इंदौर में सन 2008 में बात हुई थी।
0: अच्छा
1: हाँ, और अलप्रत तिवारी जी करके अनाउंसर थी,
0: जी
1: उनसे बात हुई थी मेरी।
0: अच्छा
1: हाँ, और बीच में मैंने 10-15 साल छोड़ दिया एफएम मोबाइल सुनना,
0: जी
1: और अभी एक महीने से सर मैंने शुरू कर दिया, तो मैं सब में फोन लगा रहा हूँ अब मैं।
0: अच्छा, तो अभी तक आप
1: जी
0: भोपाल में फोन लगाते थे? अच्छा,
1: मैं मैम विद्यार्थी में जुड़ा हूँ 25 साल से,
0: तो विविध भारती
1: और
0: भोपाल में आप फोन लगाते थे, इंदौर आप अभी लगा रहे हैं पिछले एक महीने से?
1: हाँ नहीं इंदौर तो मैं आज पहली बार लगाया और मेरा फोन भी लग गया इंदौर तो,
0: अच्छा,
1: मगर इंदौर में मेरी 2008 में बात हुई थी
0: जी,
1: आकाशवाणी में,
0: जी, चलिए
1: और
0: आपका
1: सर
0: एक बार
1: मैं
0: फिर से हम स्वागत करते हैं, जुड़े रहिए, बस थोड़े से अंतराल के बाद फोन कीजिए और हम
1: जी
0: आपको आपकी पसंद के गीत ज़रूर सुनवाएंगे। तो
1: ठीक। तो
0: अच्छा
1: सर
0: लगा आपसे
1: कितना
0: बात
1: अंतराल,
0: करके। जी आप कुछ कह रहे थे?
1: कितना अंतराल रखें मैडम फोन लगाने में?
0: कम से कम एक महीने का अंतराल रखिएगा।
1: जी, ठीक
0: जी धन्यवाद,
1: है मैडम, ओके
0: आपको
1: मैम,
0: सुनवा रहे हैं
1: शुक्रिया।
0: आपकी पसंद का गीत, सुनिए।

0: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार
1: एक चंद अकबाल बोल रहा था मैडम, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
0: जी, बताएं कौन सा गीत सुनेंगे।
1: मैडम सबसे पहले तो जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: जी आपको भी शुभकामनाएं, आपने तो अग्रिम शुभकामनाएं दे दी।
1: मैडम एक थोड़ा सा एक दो लाइन बोलना चाहूंगा
0: जी
1: आपसे, रिक्वेस्ट है कि इसको, इस कार्यक्रम का जो नाम है हॉटलाइन,
0: जी
1: इसको अगर आप चेंज करके कोई दूसरा नाम रख दे तो ज्यादा अच्छा आएगा,
0: जी
1: क्योंकि ये फोन लाइन इतनी गर्म हो जाती है कि हम लोग का फोन ही नहीं लगता तो इसलिए हमने आपको अग्रिम शुभकामनाएं दे दिए हैं,
0: जी
1: समय पे आपसे बात हो पाई नहीं हो पाई।
0: जी जी
1: तो
0: जी।
1: कम से कम हमें ये तो मलाल नहीं रहेगा कि भाई हमने आप लोग को, आप तक के हम लोगों ने शुभकामनाएं नहीं पहुँचाए।
0: नहीं देखिए, आपकी शुभकामनाएं अग्रिम हमें मिल गई, इससे अच्छी क्या बात है।
1: जी जी
0: और बाकी आपका जो भी सुझाव है, आपका पत्र कार्यक्रम के माध्यम से वो पहुंचा सकते हैं।
1: मैडम ये तो थोड़ा सा क्या ना, हंसी मजाक हो जाती है
0: जी
1: जो दायरे के अंदर होती है, कहना चाहिए आप लोगों से।
0: जी बिल्कुल सही है, हंसी मजाक होती रहनी चाहिए, जिंदगी की खुशियां इन्हीं चीजों से हैं, छोटी छोटी हंसी मजाक से।
1: नहीं नहीं मैडम, क्या है आप लोग हमारी मातृशक्तियां हैं, तो हम लोग एक सीनियर सिटीजन है, तो हम लोग मतलब ऐसी बात बोलना चाहते हैं कि जो कभी आप लोग को किसी प्रकार का कोई दुख ना हो कि भाई सामने वाले श्रोता भी कोई ऐसी बात करते हैं क्या।
0: जी जी जी सही बात है।
1: तो आज मुझे सुनवा दीजिए, फिल्म है ठोकर
0: जी,
1: और मुकेश जी की आवाज है
0: जी, गाने
1: और
0: के बोल,
1: एक गाने के बोल है, मेरी सुन ले दीन दयाल, बस ये फोन लगा इसीलिए ये गाना सुनना है
0: जी। चलिए धन्यवाद आपको फोन करने के लिए टेकचंद जी, आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: शुक्रिया जी।

0: हेलो, एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो, नमस्ते। खम्मा खनी हुकम।
0: नमस्कार, खम्मा खनी। कौन सा आप बोल रहे हैं?
1: हाँ, मैं जिला बालोतरा राजस्थान से आपका नियमित श्रोता मोहनलाल प्रजापत।
0: जी मोहनलाल जी, बताएं कौन सा गीत सुनेंगे?
1: हाँ, फिल्म का नाम है धर्म करम, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, मुकेश साहब की आवाज है।
0: जी, आपका फोन लगा है, ये कार्यक्रम का अंतिम गीत है। आपको
1: जी
0: सुनवा देते हैं आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद फोन करने के लिए।
1: धन्यवाद।

0: हम अपने सभी श्रोताओं का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आज के कार्यक्रम में फ़ोन लगाए और जो लगातार प्रयास कर रहे थे। धन्यवाद फ़ोन करने के लिए। अब आज का MH हॉटलाइन कार्यक्रम समाप्त करने की शालिनी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: हेलो MH हॉटलाइन।

0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाज़ में।
1: अभी आप एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

शांतनु मैत्रा का संगीत विधु विनोद चोपड़ा के लिखे बोल, श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म वजीर से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है शाहिद माल्या की आवाज़ में फिल्म उड़ता पंजाब से।

अमित त्रिवेदी का संगीत, लेट श्री शिव कुमार बटालवी के लिखे बोल, शाहिद माल्या की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म उड़ता पंजाब से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है पिपॉ की आवाज़ में फिल्म सुल्तान से।

विशाल शेखर का संगीत इरशाद कामिल के लिखे बोल। पैपों की आवाज़ में आपने गीत सुना फिल्म सुल्तान से। कार्यक्रम है फिल्म संगीत का और अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म तुम बिन टू से। आवाज़ है अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की।

मनोज मुंतशिर के लिखे मनोज मुंतशिर का संगीत, शकील आज़मी के लिखे बोल, अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म तुम बिन टू सी। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की आवाज़ में फिल्म रुस्तम से।

जीत गांगुली का संगीत मनोज मुंतशिर के लिखे बोल, अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की आवाज़ में एक गीत सुना आपने फिल्म रुस्तम से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है अरिजीत सिंह की आवाज़ में फिल्म राज रिबूट से।

जीत गांगुली का संगीत कौसर मुनीर के लिखे बोल, अरिजीत सिंह की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म राज रिबूट से। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत अरिजीत सिंह की ही आवाज़ में सुनिए, द स्काई इज पिंक से।

प्रीतम का संगीत, गुलजार के लिखे बोल, अरिजीत सिंह की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म द स्काई इज पिंक से। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की गरिमामयी उपस्थिति में सशस्त्र सीमा बल द्वारा आयोजित समारोह का सजीव प्रसारण कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सीमा बल SSB के अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं अतर सईद और दी एंड्रू। आइए विज्ञान भवन चले।
1: नमस्कार, मैं अतर सईद अपने सहयोगी कमेंटेटर डी एंड्रू के साथ आकाशवाणी की ओर से विज्ञान भवन नई दिल्ली में सशस्त्र सीमा बल द्वारा आयोजित सशस्त्र सीमा बल अलंकरण समारोह में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर सशस्त्र सीमा बल के जवानों की उत्कृष्ट सेवाओं और उपलब्धियों को सम्मानित किया जाएगा। आज का ये अलंकरण समारोह माननीय केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उनकी गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न होने जा रहा है। हम देख पा रहे हैं कि गणमान्य व्यक्तियों का आगमन का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। एंड्रयू,
2: आज का दिन हमारे बल के लिए, इनफैक्ट द चीफ गेस्ट सेंट्रल होम सेक्रेटरी श्री गोविंद मोहन हैज अराइव्ड एंड सीटेड नेक्स्ट टू हिम आर मिस्टर अनीश दयाल, द डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एंड डॉक्टर राजेंद्र कुमार, द सेक्रेटरी बॉर्डर मैनेजमेंट। एंड टुडे दे आर सेलिब्रेटिंग द इन्वेस्टिचर सेरेमनी ऑफ द सशस्त्र सीमा बल, एंड दिस इज बीइंग हेल्ड इन द प्लेनरी हॉल ऑफ विज्ञान भवन। The hall is packed with personnel of the SSB in their khaki uniforms.
1: बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण अवसर है जब राष्ट्र की सुरक्षा, सीमाओं की रक्षा और देश सेवा के लिए समर्पित सशस्त्र सीमा बल के वीर अधिकारियों और जवानों की उत्कृष्ट सेवाओं, साहस और उपलब्धियों को सम्मानित किया जाएगा, उन्हें अलंकृत किया जाएगा। समारोह में माननीय केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी का आगमन यहाँ पर हो चुका है। श्रोताओं के लिए जानना भी महत्वपूर्ण है कि सशस्त्र सीमा बल यानी SSB देश के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना वर्ष 1963 में विशेष सेवा ब्यूरो, स्पेशल सर्विस ब्यूरो के रूप में की गई थी। बाद में इसे भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई और भारत भूटान सीमा की सुरक्षा का दायित्व भी।

0: माननीय केंद्रीय गृह सचिव इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, उनको उनका सम्मान किया जा रहा है, उनका आगमन का आभार व्यक्त किया जा रहा है, उन्हें पौधा भेंट किया जा रहा है और यहाँ पर उपस्थित जन तालियां बजाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं। सभी गणमान्य व्यक्ति
1: नेपाल
0: एक
1: और
0: बार फिर
1: भूटान
0: अपने
1: में
0: आसन
1: निशान
0: पर
1: सीमाओं की रखवाली करने से लेकर
0: बैठते
1: देश
0: हुए
1: के भीतरी हिस्सों में उपद्रवियों और असामाजिक तत्वों से लोहा लेने तक सशस्त्र सीमा बल राष्ट्र की सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ है। अलंकरण समारोह के इस विशेष अवसर पर भारत के केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी की उपस्थिति न केवल इस स्तंभ को और अधिक मजबूती प्रदान कर रहा है, बल्कि आज समस्त सशस्त्र सीमा बल आपकी उपस्थिति से अभिभूत है। महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल श्री संजय सिंघल सशस्त्र सीमा बल परिवार के इसी भाव को व्यक्त करने तथा स्वागत संबोधन हेतु सादर आमंत्रित हैं।
0: और अब सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक श्री संजय सिंघल द्वारा स्वागत संबोधन हम सुन पाएंगे। माइक्रोफोन पर श्री संजय सिंघल।
2: आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, सचिव सीमा प्रबंधन श्री राजेंद्र कुमार जी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं अन्य संगठनों के महानिदेशक गण, सशस्त्र सीमा बल के पूर्व महानिदेशक गण, विशिष्ट अतिथि गण, आज अलंकृत होने वाले सशस्त्र सीमा बल के वीर एवं समर्पित पदक विजेता, उनके गौरवान्वित परिवारीजन, एसएसबी परिवार के सभी सदस्यगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हमारे साथी देवियों और सज्जनों, आप सभी का सशस्त्र सीमा बल की ओर से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि अपरिहार्य कारणवश माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी इस कार्यक्रम में उपस्थित होने में असमर्थ हैं, परंतु उन्होंने वीरता पदक के अलंकरण अधिकारियों, कर्मियों और परिवारिकजनों को एवं समस्त एसएसबी परिवार हेतु अपनी हार्दिक शुभेच्छाएं प्रेषित की हैं। मैं समस्त एसएसबी परिवार की ओर से माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का उनकी शुभेच्छा हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय केंद्रीय गृह सचिव महोदय का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी व्यस्तताओं के बीच इस कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया और अपनी उपस्थिति से हमारे अधिकारियों, जवानों और उनके परिवारों का उत्साहवर्धन किया। आज हमारे लिए गर्व और प्रेरणा का अवसर है। आज न केवल हमारे 18 साथियों को वीरता एवं पराक्रम के सर्वोच्च समर्पण के लिए एवं 5 साथियों को डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए सम्मानित किया जाएगा, बल्कि राष्ट्र सेवा की हमारी प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से आगे बढ़ाने वाली 248 करोड़ रुपए लागत की आधारभूत संरचना परियोजनाओं का भी आभासी माध्यम से महोदय द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। सशस्त्र सीमा बल की स्थापना वर्ष 1963 में भारत चीन युद्ध के पश्चात हुई थी और वर्ष 2001 में बल को भारत नेपाल तथा वर्ष 2004 में भारत भूटान की कुल 2450 किलोमीटर लंबी खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया। इन सीमाओं की अपनी विशिष्ट चुनौतियां हैं। भारत नेपाल सीमा पर प्रतिदिन लगभग 46,000 वाहन और 3.25 लाख से अधिक व्यक्ति तथा भारत भूटान सीमा पर लगभग 8,000 वाहन और एवं 50,000 से अधिक व्यक्तियों का आवागमन होता है। इतनी बड़ी संख्या में वैध आवागमन के बीच सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सुरक्षा संवेदनशीलता और मित्र संबंधों के बीच संतुलन बनाए रखना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। हमारे अधिकारी और जवान मादक पदार्थों, हथियारों, जाली मुद्रा, मानव तस्करी, अवैध आवर्जन तथा अन्य संगठित अपराधों के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ ही सशस्त्र सीमा बल आंतरिक सुरक्षा, वामपंथी उग्रवाद, सीआई ऑपरेशंस, इलेक्शन ड्यूटी, कानून व्यवस्था तथा आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न दायित्वों में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। वर्तमान में नेपाल में आई भयावह त्रासदी से निपटने के लिए बिहार तथा उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में एसएसबी के बचाव व राहत दल अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा से निर्वहन कर रहे हैं। आज सुरक्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। हाइब्रिड वारफेयर, साइबर एवं इंफॉर्मेशन वारफेयर, ड्रोन आधारित खतरे और तस्करी के नए नए तौर तरीके हमारे सामने नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रहे हैं। इन चुनौतियों से प्रभावी रूप से निपटने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय गृह मंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व तथा गृह मंत्रालय के मार्गदर्शन में सशस्त्र सीमा बल का आधुनिकरण निरंतर जारी है। बल के तकनीकी आधुनिकरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय

0: प्रगति की है। आधुनिक निगरानी प्रणालियों, आधुनिक संचार साधनों, ड्रोन एवं अन्य तकनीकी उपकरणों के प्रभावी उपयोग के माध्यम से हमारी परिचालन क्षमता को निरंतर मजबूत किया जा रहा है। बदलती सुरक्षा चुनौतियों के अनुरूप तकनीकी दक्षता और आधुनिक साधनों का समावेश हमारी प्राथमिकताओं में है। सीमावर्ती क्षेत्र में विन हार्ट्स एंड माइंड हमारी कार्य संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिविक एक्शन प्लान के माध्यम से हम सीमावर्ती नागरिकों तक सुरक्षा के साथ साथ विकास और विश्वास का संदेश पहुंचाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत हमारा लक्ष्य केवल सीमाओं को सुरक्षित करना ही नहीं बल्कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमांत, सजग समाज के संकल्प के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित करते हुए एक जागरूक और सशक्त सीमावर्ती समाज का निर्माण करना भी है। SSB ने विगत 5 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में 28 स्वर्ण, 25 रजत एवं 40 कांस्य पदक समेत कुल 93 पदक जीते हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए एवं खिलाड़ियों के प्रोत्साहन करने के लिए विशेष प्रदर्शन करने वाले 19 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण, सौर ऊर्जा के उपयोग, नशा मुक्ति भारत अभियान, प्लास्टिक मुक्त भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत तथा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भी SSB निरंतर सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। माननीय गृह मंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व एवं गृह विभाग के मार्गदर्शन में सीमा सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, जल कल्याण, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के आधुनिकीकरण और कार्मिक कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की जा रही हैं। सशस्त्र सीमा बल इन पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन में अपना जिम्मेदारी के अनुरूप पूरी निष्ठा एवं प्रतिबद्धता के साथ योगदान दे रहा है। आज इस अवसर पर मैं गृह मंत्रालय के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिनके निरंतर मार्गदर्शन, सहयोग और सहायता के कारण ही सशस्त्र सीमा बल आज एक आधुनिक, प्रोफेशनल और जन केंद्रित सीमा प्रहरी के रूप में उभरा है। अंत में मैं पुनः गृह सचिव महोदय का SSB परिवार की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी गर्मयमय उपस्थिति और प्रेरणादायक मार्गदर्शन से आज के इस अवसर को विशेष बना दिया है। आज यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय SSB।
1: That was the welcome address by the Director General, Shri Sanjay Singhal, an IPS officer of the 1993 cadre. And now, we have the online inauguration of the SSB projects by the Honorable Chief Guest, the Home Secretary, Shri Govind Mohan. And this will be followed by unveiling of the SSB e-magazine.
2: बहुत ही गौरव के क्षण यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सभागार जवानों से खचाखच भरा हुआ है और गणमान्य व्यक्ति मंचासीन। इस समय हम देख पा रहे हैं कि समारोह के मुख्य अतिथि और माननीय केंद्रीय गृह सचिव भारत सरकार श्री गोविंद मोहन महोदय SSB परियोजनाओं का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य।
1: Press the button and there it comes on the screen right behind them and it has been inaugurated and what a beautiful sight it is over here with people clapping and of course the SSB
3: सशस्त्र सीमा बल परिसर फरीदाबाद हरियाणा में 440 अत्याधुनिक पृथक आवासीय भवन बनकर तैयार हैं। हर जरूरत का सम्मान करते हुए इस परिसर में टाइप 2 के 336 आवास, टाइप 3 के 96 आवास और अधिकारियों के लिए टाइप 4 के 8 विशिष्ट आवास, सोलर सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, CCTV सर्वेलेंस, मल्टी लेवल पार्किंग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और एक भव्य मल्टीपर्पस हॉल के निर्माण का कार्य 170 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण किया गया है। इसी क्रम में केंद्रीयकृत प्रशिक्षण केंद्र सपड़ी हिमाचल प्रदेश में अधीनस्थ अधिकारी आवासीय मैस तथा टाइप 2 के 48, टाइप 3 के 6 एवं टाइप 5 के 3 आवासीय भवनों के निर्माण का कार्य 31 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से पूर्ण किया गया है। इसके अतिरिक्त 30वीं वाहिनी दिरांग अरुणाचल प्रदेश में टाइप 2 के 80 आवास एवं टाइप 3 के 28 आवास के निर्माण का कार्य 46 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से पूर्ण किया गया है। यह उपलब्धि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व एवं निरंतर मार्गदर्शन का प्रत्यक्ष परिणाम है। इन परियोजनाओं के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर सशस्त्र सीमा बल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता है।
2: तो हमने देखा कि SSB परियोजनाओं का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन यहाँ पर हुआ। माननीय केंद्रीय गृह

0: सचिव द्वारा। और अब सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की ई स्मारिका का अनावरण माननीय श्री गोविंद मोहन जी के कर कमलों से किया जा रहा है। बहुत ही शानदार दृश्य यहाँ पर नजर आ रहा है विज्ञान भवन नई दिल्ली के इस सभागार में।
1: And now, the chief guest, the secretary, he is going to unveil the e-magazine of the SSB.
0: SSB की स्मारिका का अनावरण इस समय स्क्रीन पर पत्रिका के पृष्ठ उलटते हुए बहुत ही गौरवशाली क्षण यहाँ पर है। सशस्त्र सीमा बल का आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, और यही भावना यहाँ पर नजर आ रही है। यही भावना बल के कार्यों में नजर देती है। सीमा की सुरक्षा के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ विश्वास, सहयोग और सौहार्द का संबंध बल यहाँ पर रखता है।
1: That was the unveiling of the SSB e-magazine, and now we're going to start the investiture ceremony. And the Central Home Secretary, Shri Govind Mohan, he is the chief guest for this gathering over here, and he is going to give away the awards to the ones who have really done their yeoman work, and of course for the selfless duty towards the safety of the country and of contribution towards the security of their motherland, that is India. And now it will be starting in a very short while, and of course about 18 people are going to get the awards for the fantastic service which they have done for the safety of the country, and of course the selfless contribution towards the security of their motherland.
0: असाधारण साहस, उत्कृष्ट सेवा और कर्तव्य के प्रति अदम्य निष्ठा का प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया जाना यकीनन पूरे बल के मनोबल को नई ऊंचाई प्रदान करता है।
2: 23 नवंबर 2020 छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर कांकेर जिले के माटला रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में चल रही रावघाट रेलवे लाइन परियोजना के पास सीओबी कोसरुंडा 33वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल केवटी के 30 जवानों की रोड सिक्योरिटी ऑपरेशन पार्टी पर लगभग 130 से 150 नक्सलियों ने हथियार व गोला बारूद लूटने के उद्देश्य से घात लगाकर हमला किया, जिसके उपरांत तत्काल ही उप निरीक्षक चंद्रमोनी मजुमदार व उनकी टीम ने अत्यंत दिलेरी के साथ बेहतर रणनीतिक समझ का परिचय देते हुए न सिर्फ उस हमले को विफल किया बल्कि 3 दुर्दांत नक्सलियों को मार गिराया। इनके अदम्य साहस, दृढ़ता और असाधारण कार्य हेतु इन्हें वीरता पदक से सम्मानित किया जाता है।
3: इसी क्रम में दिवंगत मुख्य आरक्षी रवि शर्मा, जिन्होंने इस ऑपरेशन के दौरान अदम्य साहस का परिचय दिया जिस हेतु मरणोपरांत वीरता पदक हेतु आमंत्रित हैं, दिवंगत मुख्यारक्षी रवि शर्मा की धर्मपत्नी श्रीमती रजनी शर्मा

0: सदैव कदमों से मंच।
1: दिनांक 11 फरवरी 2021 को बिहार के लखीसराय के चिरोन कुंडासी के घने व दुर्गम जंगलों में नक्सली गतिविधि के संदर्भ में पुख्ता खुफिया जानकारी पर कार्यवाही करते हुए उप कमांडेंट हेमंत कुमार और उनकी टीम ने उत्कृष्ट शौर्य, रणनीतिक समझ और साहस का परिचय देते हुए एक सशस्त्र नक्सली को मार गिराया व एक इंसास राइफल तथा भारी मात्रा में गोला बारूद के बरामदगी में सफलता हासिल की। उप कमांडेंट हेमंत कुमार व उनकी टीम के 4 सदस्यों को उनके असाधारण वीरता, अदम्य साहस और शौर्य को सम्मान देते हुए वीरता पदक से सम्मानित किया जाता है।
0: ये क्षण केवल
2: आमंत्रित है उप कमांडेंट हेमंत कुमार
0: बल्कि उनके परिवार, उनके साथियों और पूरे सशस्त्र सीमा बल के लिए गर्व का क्षण है। वर्दी केवल एक परिधान नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी, अनुशासन और समर्पण का प्रतीक है। सभागार में उपस्थित जवान करतल ध्वनि से स्वागत करते हुए उत्साह वर्धन करते हुए
3: द मोटो ऑफ एसएसबी इज सर्विस
2: सहायक कमांडेंट सैयद अफसर
3: ब्रदरहुड दे रिस्क देयर लाइफ दे फाइट अगेंस्ट द नक्सलाइट्स हु आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स बट फॉर देम Service comes first, risking the life for the safety of the country. And for that, they are being awarded today. They are getting a scroll and a medal.
0: Sima par tainat hamare jawanon ka jeevan kathin
2: paristhitiyon ke beech Arakshi Raut Yogendra Ramchandra
0: nirantar satarkata aur seva ka jeevan hai. Alankaran samaroh yahan par Vigyan Bhavan ke sabhagar mein garv ka kshan गौरवशाली क्षण तमाम जवानों के लिए, सशस्त्र सीमा बल के लिए और हम सब के लिए।
2: आरक्षी जुनमुनि बरुआ
0: सदे हुए कदमों से सीना ताने हुए ये जवान अपना पुरस्कार ग्रहण करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव के सामने मेडल और प्रशस्ति पत्र उनके हाथ में छायाकार इन क्षणों को कहते
2: आरक्षी रितेश कोंगारी
3: दिस सेरेमनी इज हेल्ड एवरी ईयर टू ऑनर द पर्सनल फॉर देयर सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सिक्योरिटी ऑफ देयर मदरलैंड एंड द हॉल ऑफ कोर्स इट्स पैक्ड यू कैन सी इन फैक्ट यू कैन जस्ट इफ यू वर हियर यू वुड हैव रियली एंजॉयड सीइंग द साइट ओवर हियर ऑल इन द खाकी यूनिफॉर्म सिटिंग इन अ वेरी डिसिप्लिन मैनर ऑफ कोर्स व्हेन यू आर इन द आर्मी लाइफ यू ऑलवेज लीड अ वेरी डिसिप्लिन लाइफ
2: दिनांक 8 जून 2022 सोलहवीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल को विभिन्न स्रोतों से पुलिस स्टेशन गढ़ी के वीरगोड़ा गांव के अंतर्गत 4 से 5 नक्सलियों के एक समूह के उपस्थिति के संदर्भ में खुफिया जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर कार्रवाई करते हुए कमांडेंट सोलहवीं वाहिनी के मार्गदर्शन में निरीक्षक शिवशंकर कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राप्त आसूचना के आधार पर नक्सलियों के संभावित स्थान पर दबिश दी और विपरीत परिस्थितियों में भारी गोलाबारी के बीच अपने जान की परवाह न करते हुए एक कुख्यात नक्सली मतलू तुरी को मार गिराया व भारी मात्रा में हथियार व गोला बारूद बरामद किया। उनके अदम्य साहस और पराक्रम को सम्मान देते हुए निरीक्षक शिवशंकर कुमार व उनकी टीम के 4 सदस्यों को वीरता पदक से सम्मानित किया जाता है। आमंत्रित है निरीक्षक शिवशंकर कुमार।

0: उप निरीक्षक कुमारजीत।
1: कुमारजीत जी सदैव कदमों से मंच की ओर। कुमारजीत सिंह को पदक पहनाते हुए मुख्य अतिथि महोदय, सीने पर पदक, हाथ में प्रशस्ति पत्र और दिल में भारत की रक्षा का प्राण साफ नजर आ रहा है।
0: मुख्य आरक्षी

0: Anil Kumar Kumbhar.
1: Anil Kumar, he walks to the place where the home minister, where the secretary is standing, and of course he salutes, gives a crisp salute, and then he takes the award on his chest, and now the scroll is handed over to him, gives a salute to the home secretary and marches out. In fact, the way they march,
0: Arakshi Ziaul Haq Ansari.
2: Arab Ziaul Haq Ansari manch ki aur agrasar sadhe ve khadmon se kendriya krish sachiv ke samne aaj ke mukhya atithi ke sammukh seena taane hue seene pe padak saja haath mein prashasti patra aur adbhut drishya ko qaid karte hue yahan par chhayakar haath milate hue
3: 20 sitambar 2022 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बारामूला जम्मू कश्मीर से ग्राम यादीपुरा पत्तन में खूंखार आतंकवादियों के छिपे होने की गुप्त सूचना प्राप्त हुई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अनुविभागीय पुलिस अधिकारी द्वारा तत्काल अतिरिक्त परिचालन बल की मांग की गई। तत्कालीन कमांडेंट मुकेश कुमार के कुशल नेतृत्व में त्वरित विचार विमर्श के पश्चात एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरे अभियान की व्यूह रचना की गई। 29 राष्ट्रीय राइफल्स एवं विशेष अभियान समूह के साथ तालमेल बिठाते हुए अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों, निरंतर मंडराते खतरे और दुश्मनों की ओर से हो रही अंधाधुंध गोलाबारी के बीच श्री मुकेश कुमार और उनकी जाबाज टीम ने अदम्य साहस, श्रेष्ठ रणनीतिक सूझबूझ और अद्भुत युद्ध कौशल का परिचय दिया। मुठभेड़ के दौरान अपने जान की परवाह न करते हुए की गई इस सटीक और घातक जवाबी कार्रवाई में भारी हथियारों से लैस दो कुख्यात आतंकवादियों यावर शफी भट्ट और आमिर हुसैन भट्ट को ढेर कर दिया गया। मौके से भारी मात्रा में स्वचालित हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया।
0: कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित इस अदम्य साहस, अद्वितीय शौर्य और उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए उप महानिरीक्षक श्री मुकेश कुमार एवं उनकी टीम के 3 सदस्यों को वीरता पदक से अलंकृत किया जाता है। आमंत्रित है उप महानिरीक्षक मुकेश कुमार।
2: वीरता पदक के लिए अब मुकेश कुमार और उनके 3 साथी इस समय मंच पर नजर आते हुए मुकेश कुमार के सीने पर पदक टांगते हुए केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन और सारे ही जवान कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करते हुए अपने साथी का अद्भुत दृश्य यहां पर नजर आ रहा है।
0: उप कमांडेंट रणजीत सिंह,
1: द एसएसबी पर्सनल इनिशियली दे वर पुट ओनली फॉर द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड भूटान, बट ओवर द इयर्स एज टेररिज्म एंड ऑल द क्रॉस बॉर्डर प्रॉब्लम स्टार्टेड, देयर एरिया ऑफ कवरेज हैज बीन इंक्रीज्ड एंड दे आर कवरिंग ऑल द स्टेट्स व्हिच आर बॉर्डरिंग ऑन नेबरिंग कंट्रीज, दैट इज पाकिस्तान, चाइना and apart from that Bangladesh and Burma.
0: Mukhya Arakshi Medics Ritesh Sharma.
2: Manch par Up Commandant Ranjit Singh ke baad ab manch par agrasir hamare jawan bahut hi adbhut drishya yahan par nazar aa raha hai.
0: Arakshi Mohammad Saidullah Mir.
2: Arakshi मोहम्मद सैदुल्ला मीर इस समय मंच की ओर अग्रसर पदक प्राप्त करते हुए पुरस्कृत होते हुए, इस सम्मान दरअसल एक जवान का नहीं बल्कि देश का सम्मान है, उन भावनाओं का सम्मान है जो भावनाएं
3: विशिष्ट सेवा के लिए रक्षा करती हैं पदक से सीमाओं की। डॉक्टर परेश सक्सेना, महानिदेशक नागरिक सुरक्षा बिहार
1: से दिस इज Mr. Paresh Saxena, who walks up, and the medal that they are getting, in fact, it is a lifetime achievement for them. And the scroll, the commendation letter, I'm sure they'll definitely frame it and put it in the house, that they remember it all their life, as long as they are alive. And what a wonderful sight it is over here. Every moment of this program is being photographed, clicked away to glory. And I'm sure this is going to be a wonderful experience, lifetime experience for everyone over here.
2: Arab Ratan Sinje. इस समय मंच पर दरअसल आज प्रदान किया जा रहा प्रत्येक अलंकरण राष्ट्र की ओर से सेवा और समर्पण के प्रति सम्मान का प्रतीक है, और ये भावना यहाँ पर नजर आती हुई साफ तौर पर विज्ञान भवन में कर्तव्य ध्वनि से जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जा रहा है।
3: श्री सोमित जोशी, महानिरीक्षक।
2: और अब सोमित जोशी अपना पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मंच पर मौजूद मुख्य अतिथि के सम्मुख

0: उनके सीने पर पदक और ये प्रशस्ति पत्र उनके हाथों में। मुख्य सचिव श्री गोविंद मोहन इस समय,
1: श्री वंदन सक्सेना महानिरीक्षक,
2: मिस्टर वंदन सक्सेना, ही वॉक्स, ही कम्स फॉरवर्ड, ही हैज द मेडल पुट ऑन हिज चेस्ट एंड सैल्यूट्स द होम सेक्रेटरी, द चीफ गेस्ट, and takes a scroll, the commendation lecture, which he gets it in his hand. And I'm sure they're going to frame it, of course, as I said earlier, they'll frame it and put it, hang it in their house.
1: Shri Jagdish Ram, Upcommandant.
0: Shri Jagdish Ram, Upcommandant. Ab apna padak prapt karne hetu manch par maujood. Anushasan ke saath yahan par apne padak grahan karte hue jawan. सैल्यूट करते हुए केंद्रीय सचिव,
1: धन्यवाद महोदय। महानिदेशक महोदय से पुनः अनुरोध है कि विमाननीय मुख्य अतिथि महोदय को समस्त बलकर्मियों तथा उपस्थित जनसमूह को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करने की कृपा करें।
2: That brings us to the end of the investiture ceremony. And now we have for you the address by the Honorable Chief Guest for today, that is Shri Govind Mohan, the Chief Secretary of the Home Ministry.
3: सर्वप्रथम मैं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का संदेश आप सबके समक्ष पढ़ना चाहूंगा। मैं आरंभ करता हूं। सशस्त्र सीमा बल के अलंकरण समारोह के अवसर पर बल के सभी जांबाज अधिकारियों, जवानों, पदक विजेताओं तथा उनके परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कुछ अपरिहार्य प्रतिबद्धताओं के कारण इस गरिमामय कार्यक्रम में मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबके बीच उपस्थित नहीं हो सकता हूं, परंतु मेरी आत्मीय भावनाएं और शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ में जान गंवाने वाले सभी लोगों को मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। इस आपदा के दौरान एसएसबी मानवीय सहायता और बचाव कार्यों में अत्यंत सराहनीय भूमिका निभा रही है। संकट की इस घड़ी में एसएसबी की त्वरित, समन्वित और संवेदनशील कार्रवाई उसके ध्येय वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व का जीवंत स्वरूप है। राष्ट्र की सेवा करते हुए आज तक अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले एसएसबी के 51 वीर जवानों को मैं श्रद्धापूर्वक नमन भी करता हूं। उनकी वीरता, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रभक्ति एसएसबी की अमूल्य विरासत है। वीरता पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित हो रहे सभी अधिकारियों एवं जवानों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। ये अलंकरण आपके साहस, अनुशासन और उत्कृष्ट सेवा भाव के साथ आपके परिवारों के त्याग एवं सहयोग का भी सम्मान है। पदक विजेता अधिकारी और जवान बल के युवा कार्मिकों के लिए आदर्श हैं। मेरा आग्रह है कि आप अपने अनुभव, कार्य पद्धति और कठिन परिस्थितियों में लिए गए निर्णयों को नई पीढ़ी के साथ साझा करें। सीमाओं पर तैनात एसएसबी का प्रत्येक जवान देश का सजग प्रहरी, आपदा के समय प्रथम सहायक और भारत की सद्भावना का प्रतिनिधि है। मित्रवत सीमा पर आम नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा के बीच संतुलन एसएसबी की सबसे बड़ी शक्ति है। एसएसबी की विशिष्ट पहचान उसकी शक्ति और संवेदना के अद्भुत समन्वय में है। हिमालय जैसी अडिग दृढ़ता और गंगा जल जैसी पवित्र संवेदना के साथ एसएसबी भारत की मित्रवत सीमाओं की सुरक्षा, सीमावर्ती नागरिकों की सेवा तथा पड़ोसी देशों के साथ आत्मीय संबंधों को निरंतर सुदृढ़ करता रहे। सशस्त्र सीमा बल के सभी अधिकारियों, जवानों, पदक विजेताओं और उनके परिवारों को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सेवा के आपके संकल्प, साहस

त्याग और समर्पण को कोटि कोटि नमन। वंदे मातरम, भारत माता की जय। अब मैं अपनी ओर से कुछ शब्द कहना चाहूंगा। मंच पर मेरे साथ जो मेरे सहयोगी बैठे हुए हैं, SSB के महानिदेशक संजय सिंघल जी, गृह मंत्रालय में मेरे सहयोगी श्री राजेंद्र कुमार सेक्रेटरी बॉर्डर मैनेजमेंट, श्रीमती रेखा लोहानी एडिशनल DGP, श्री रामलु नायक IG ऑप्स SSB, इस सभागार में उपस्थित CAPF और अन्य पुलिस प्रतिष्ठानों के वरिष्ठतम नेतृत्व, उनके DGs, अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण और SSB परिवार के सभी अधिकारी और कर्मीगण, गृह मंत्रालय की ओर से कुछ विषय हैं जो आज चूंकि मेरे को मौका मिला है तो मैं यहां रखना चाहूंगा। भारत की सीमाओं की सुरक्षा हमारे मंत्रालय का और अंततः भारत सरकार का एक बहुत ही अहम, महत्वपूर्ण और संवेदनशील लक्ष्य है। 15,000 किलोमीटर की लगभग भारत और अन्य देशों की सीमा की निरंतर चौकसी और उसकी सुरक्षा जब तक हम मजबूत ढंग से नहीं कर पाएंगे, तब तक भारत की आंतरिक सुरक्षा का भी जो हमारा लक्ष्य है वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। इसलिए जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस विभिन्न सीमाओं पर काम करती हैं, वो देश के प्रति एक बहुत उच्चतम उनका बलिदान है और देश निर्माण के काम में एक बहुत बड़ी उनकी भूमिका है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कुछ दिन पूर्व एक चतुष्कोणीय सुरक्षा व्यवस्था भारत के सभी बॉर्डर्स के लिए परिकल्पित करी है। इस चतुष्कोणीय सीमा व्यवस्था में जो चार प्रमुख स्तंभ हैं वो हैं बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, राज्य सरकारों के जो प्रथम पंक्ति में बॉर्डर्स पर कार्यरत कर्मचारी हैं, जिसमें बॉर्डर के जिलों के जिला अधिकारी, वहां के पुलिस निरीक्षक और अन्य जो पूरी व्यवस्था है बॉर्डर के जिलों पर जो राज्य सरकार ने स्थापित की हुई है, वो इसका दूसरा स्तंभ है। तीसरा स्तंभ है भारत सरकार की विभिन्न संस्थाएं, जिसमें बैंक्स हैं, जिसमें आयकर विभाग है, जिसमें नारकोटिक्स का पूरा व्यवस्था है। इस तरह के जो 15 से 20 प्रमुख निकाय हैं भारत सरकार के, जो आर्थिक अपराधों पर, नारकोटिक्स पर, फेक करेंसी पर निगाह रखते हैं, वो इसका तीसरा स्तंभ है। और अंततः इसका चौथा स्तंभ है जो वहाँ का समुदाय है, जो वहाँ के आम नागरिक हैं। ये शायद पहली बार भारत के, स्वतंत्र भारत के लगभग 75 से 80 वर्ष के इतिहास में एक ऐसी परिकल्पना को जन्म दिया गया है जिसके प्रणेता गृह मंत्रालय के माननीय मंत्री, हमारे गृह मंत्री जी हैं, उनके आदर्श से ये परिकल्पना विकसित हुई है। और यहाँ मुझे इस परिकल्पना के बारे में बताते हुए इसलिए मुझे हर्ष भी हो रहा है और ये प्रासंगिक भी है कि इस व्यवस्था को आत्मसात किया जाए सभी स्टेक होल्डर्स में और इसको ग्राउंड पर सुचारू रूप से उतारा जाए। इसका पहला जो बड़ी मीटिंग हुई थी वो SSB के ही तत्वाधान में भारत नेपाल बॉर्डर में, बिहार के किशनगंज और लगे हुए जो जिले हैं उनको सम्मिलित करते हुए लगभग आज से 6 से 7 महीने पहले हुई थी। तो इस पूरी व्यवस्था जो कि आने वाले कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में एक बहुत ही पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के रूप में उभरेगी, इसका जन्म SSB के ही कर्मभूमि में हुआ था। और इसलिए इस पूरी व्यवस्था को आरंभ करने की जो बधाई है उसके पात्र SSB के महानिदेशक, उसके अधिकारीगण और उसके कर्मी हैं।

के उपरांत इस व्यवस्था को और विकसित किया गया, गुजरात के बॉर्डर्स पर, राजस्थान के बॉर्डर्स पर, त्रिपुरा के बॉर्डर पर और अंत में बंगाल के जो बांग्लादेश से सटे हुए बॉर्डर्स हैं उनमें इसकी अंतिम बैठक लगभग आज से एक महीने पहले हुई थी। इन्हीं बैठकों के क्रम में हम और जगह भी जाएंगे और जितने भी हमारे बॉर्डर जिले हैं उनके साथ वार्तालाप करके इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। तो एक ये नई पहल जो गृह मंत्रालय में आरंभ हुई है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप में एक प्लानिंग है और इसमें एसएसबी जो हमारी एक अहम बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है उसका बहुत बड़ा योगदान है। जो दूसरा विषय मैं एसएसबी के बारे में आप सबके समक्ष रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि उनका जो कार्य क्षेत्र है वो अपने आप में एक अनोखा कार्य क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ जो हमारी सीमाएं हैं वो मित्र देशों से लगी हुई हैं, इसलिए वहाँ बाड़ लगाने का कोई प्राविधान नहीं है और बाड़ जो सुरक्षा प्रदान करता है उस सुरक्षा के बगैर एसएसबी को उस सीमा को सुरक्षित रखना है। पिछले दो वर्ष में मेरा जो अपना अनुभव रहा है सीमा सुरक्षा के विषय में वो ये है कि ये अपने आप में एक कठिनतम कार्य है। बिना किसी फिजिकल बैरियर के एक बॉर्डर को सेफ रखा जाए इसकी कल्पना शायद विश्व में बहुत कम जगह पर की गई है और एक बहुत ही हर्ष का विषय है कि एसएसबी ने पिछले कुछ वर्षों में इस बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए कई प्रकार के नवाचार किए हैं जो टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं लेकिन जिनका प्रभाव लगभग लगभग उतना ही है जैसे कि वहाँ पे एक भौतिक बाड़ की व्यवस्था हो। इसमें डिटेल में मैं अभी नहीं जाना चाहूँगा लेकिन फेशियल रिकग्निशन के माध्यम से, रडार और सीसीटीवी के माध्यम से और अन्य प्रणालियों को विकसित करके आज एसएसबी ये सुनिश्चित करता है कि नेपाल से और भूटान से जो भारत में आवागमन हो रहा है उस पर एक पैनी निगाह रखी जाए और किसी भी हालत में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, कोई भी ऐसा तत्व जो भारत में किसी भी प्रकार का उपद्रव करने में के लिए यहाँ आ रहा हो उसको हम बॉर्डर पे ही उसको रोक सकें और उसको वहीं पे अपनी गिरफ्त में ले सकें। इसमें सफलताएं भी मिली हैं और अभी हाल में ही गृह मंत्री जी सिलीगुड़ी गए थे, वहाँ एसएसबी ने एक विस्तृत उनके समक्ष प्रस्तुति भी की थी और उसके माध्यम से बताया था कि मानव तस्करों से लेके एफआईसीएन के स्मगलर से लेके नारकोटिक्स और आर्म्स के जो नेटवर्क्स हैं उन तक एसएसबी ने अपनी पकड़ मजबूत करी है और एक हमें एक कॉन्फिडेंस भी मिला और एक इस बात का सामने प्रत्यक्ष उदाहरण भी मिला कि एसएसबी के प्रयासों के चलते आज नेपाल और भूटान से जो भारत की सीमाएं हैं वो काफ़ी हद तक हमने सुरक्षित कर ली हैं। अंत में एसएसबी की उभरती भूमिकाओं के बारे में जो मंत्रालय का एक विजन है उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। जैसा कि महानिदेशक महोदय ने बताया, एसएसबी का जब जन्म हुआ था 1961-62 के कालखंड में, तब उसका मुख्य ध्येय था बॉर्डर के गाँव में एक भारत के प्रति एक सद्भाव पैदा करना, जो गाँव के निवासी हैं उनके साथ मिलके एक आसूचना का सुदृढ़ तंत्र बनाना भारत के बॉर्डर्स पर, और जो बाकी अन्य आर्म्ड फोर्सेस हैं यूनियन की उनकी मदद में इन दो तीन गतिविधियों के माध्यम से अपना सहयोग देना। धीरे धीरे ये जो व्यवस्था थी ये थोड़ी क्षीण होती गई और एसएसबी का रोल एक सशक्त और एक आर्म्ड बॉर्डर गार्डिंग फोर्स के रूप में अधिक होता गया और जो ओरिजिनल रोल था कि सीमावर्ती गांवों के साथ मिलके वहाँ एक नेटवर्क बनाना, सौहार्दपूर्ण वातावरण विकसित करना, आसू

0: रचना के तंत्र को और सुदृढ़ करना, वो कहीं ना कहीं कम होता हमको दिखा है। तो अब आने वाले समय में मंत्रालय का ये मत है कि एसएसबी को अपना जो ओरिजिनल रोल था उस ओर फिर कदम उठाने चाहिए, जिससे कि जो इसकी मूल परिकल्पना थी उसके भी उसके भी निरूपण के लिए हम एक व्यवस्था बना सके। और जो आर्म्ड बॉर्डर गार्डिंग फोर्स का रोल है वो तो रहेगा ही रहेगा, बट उसके अतिरिक्त जो ओरिजिनल रोल था उस ओर भी हम अपनी क्षमताओं को सुदृढ़ कर सके। तो हमें पूरा विश्वास है कि वर्तमान महानिदेशक के नेतृत्व में ये जो नई परिकल्पना विकसित हुई है, इस पर भी एसएसबी पूरे बल से और पूरे अपने मन से अपने कार्यों से इस ओर भी काम करेगा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जाते जाते एसएसबी के अलंकरण समारोह में गृह मंत्रालय की ओर से फिर सभी एसएसबी कर्मियों को बधाई, उनको हार्दिक शुभकामनाएं और उनको पूरा गृह मंत्रालय का सहयोग रहेगा आने वाले समय में, इसका आश्वासन देते हुए आप सभी को फिर से मैं बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत।
1: That was the address by the Honorable Chief Guest, Shri Govind Mohan, the Central Home Secretary.
2: और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय के ओजपूर्ण संबोधन के बाद अब मंच पर हम देखेंगे कि सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे।
1: And now a memento will be presented to the Honorable Chief Guest by the Director General of the Sashastra Seema Bal. A memento is being given, and a beautiful one, a beautiful memento, a big one, and it's being shown to the public, the people over here.
2: और अब अपर महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल द्वारा धन्यवाद ज्ञापन होगा। धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपर महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल पोडियम पर।
3: माननीय केंद्रीय गृह सचिव भारत सरकार श्री गोविंद मोहन जी, सचिव सीमा प्रबंधन श्री राजेंद्र कुमार जी, मंचासीन महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल श्री संजय सिंघल जी, आईजी ऑप्स श्री एमआर नायक, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं अन्य संगठनों के महानिदेशक गण एवं वरिष्ठ अधिकारी गण, सशस्त्र सीमा बल के पूर्व महानिदेशक गण, सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथि गण, आज अलंकृत किए गए सशस्त्र सीमा बल के वीर एवं समर्पित पदक विजेता कार्मिक गण, मीडिया के प्रतिनिधि गण, देवियों एवं सज्जनों, आज सशस्त्र सीमा बल के इस अलंकरण समारोह के अवसर पर आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति ने इस आयोजन को अत्यंत सार्थक एवं गौरवपूर्ण बना दिया है। सर्वप्रथम मैं आज की मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह सचिव भारत सरकार जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मान्यवर, आपने अपनी व्यस्तताओं के बीच इस समारोह के लिए समय निकालकर न केवल हमारा मान बढ़ाया है, बल्कि यह भी दर्शाया है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा में समर्पित सीमा प्रहरियों के प्रति आपका स्नेह, सम्मान एवं विश्वास अटूट है। सशस्त्र सीमा बल आपको यह विश्वास दिलाता है कि आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को हम सभी अपने कार्य एवं जीवन में आत्मसात करते हुए और अधिक निष्ठा, समर्पण एवं ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। मेरा विशेष आभार माननीय सचिव सीमा प्रबंधन श्री राजेंद्र कुमार जी के प्रति भी है, जिनका स्नेह एवं मार्गदर्शन सशस्त्र सीमा बल को सदैव मिलता रहा है। महोदय, आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए अनेक धन्यवाद। मैं आज सम्मानित किए गए सभी पदक विजेताओं, उनके गौरवान्वित परिवारजनों को भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देती हूँ। इन पदकों के पीछे आपकी कर्तव्य निष्ठा, समर्पण एवं आपके परिवारों का त्याग और निरंतर सहयोग भी निहित है। मैं मीडिया के सभी उपस्थित प्रतिनिधियों का भी विशेष धन्यवाद करती हूँ।

0: जिनके माध्यम से इस बल के कार्मियों को की उपलब्धियों एवं राष्ट्र सेवना की भावना को देशवासियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। एक बार पुनः मंचासीन अति विशिष्ट अतिथिगणों एवं सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों, पदक विजेताओं एवं उनके परिवारजनों को बल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं एवं धन्यवाद। जय हिंद।
1: That was the vote of thanks by the Additional Director General of Sashastra Seema Bal.
2: और अब अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने के लिए सभी उपस्थित जन राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के लिए सावधान मुद्रा में खड़े हो रहे हैं।
3: आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के उपरांत सभी लोग अपने आसन पर एक बार फिर विराजमान होते नजर आ रहे हैं। और जहां तक गणमान्य व्यक्तियों का प्रश्न है तो उनका प्रस्थान यहां पर शुरू हो गया है। गणमान्य व्यक्ति प्रस्थान करते हुए नजर आ रहे हैं और अब ये अलंकरण समारोह अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर गया है। आज विज्ञान भवन में आयोजित ये सशस्त्र सीमा बल अलंकरण समारोह 2026 हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि राष्ट्र की सुरक्षा एक सतत दायित्व है। सीमा पर तैनात जवान कठिन परिस्थितियों में देश की सुरक्षा के लिए अपना वर्तमान समर्पित करते हैं ताकि हमारे देश का भविष्य सुरक्षित रह सके। आज जिन अधिकारियों और जवानों को अलंकरण प्रदान किया गया उनकी वीरता, सेवा और समर्पण पूरे राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है। इसी के साथ विज्ञान भवन नई दिल्ली में सशस्त्र सीमा बल SSB द्वारा आयोजित सशस्त्र सीमा बल अलंकरण समारोह संपन्न होता है। अब मैं अतहर सईद, अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू और OB प्रभारी विवेक कुमार तोमर और हमारी तकनीकी टीम के सदस्य अशोक कुमार मिश्रा और सुमित कटियार के साथ आपको आकाशवाणी स्टूडियोज वापस लिए चलता हूँ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार। नमस्कार, जय हिंद।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
6: इस समय आप हैं हमारे साथ।
7: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
8: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
9: सच कहा,
10: इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
8: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।
7: मालवा की शान
6: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत।
7: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
11: चलो दीदी, झूला झूलते हैं।
12: हाँ हाँ, क्यों नहीं,
11: और झूलते झूलते सुनते हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
13: अरे दीदी, धीरे धीरे।
8: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
6: इस समय आप हैं हमारे साथ।
7: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
14: अरे मौसा जी, जल्दी चलो। अरे गाड़ी आ गई है। अरे शादी में चलना है ना।
15: अरे मैं नहीं आता कहीं शादी में, मैं तो सुन रहा हूँ मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर। तुम जाओ शादी में जाना हो तो।
16: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
17: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।

0: तो सुनते रहिए मालवा किसान
1: आकाशवाणी इंदौर।
2: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।

0: भागे वही राह तुम भी। ए भैया वही राह तुम भी चुनो मेरे भैया, वही राह तुम भी चुनो मेरे भैया, जमुनिया की कहनी सुनो मेरे।
1: अभी तक आपने सुना कि जमुनिया अपने पति रतन के साथ बहुत खुश थी, किंतु धोखेबाज दीवान और उसके भाई करण ने मिलकर रतन को कर्ज के जाल में फंसा दिया, जिसके चलते रतन को आत्महत्या करनी पड़ी। बाद में करण ने जमुनिया को भी उसकी दुधमुही बच्ची के साथ घर से निकाल दिया और जमुनिया के बेटे को हथिया लिया। उधर जमुनिया को पास के गांव के एक व्यक्ति छुल्लन ने सहारा दिया। जमुनिया बांस की डलिया और पंखे बनाकर जीवन यापन करने लगी। अचानक जमुनिया को लगा कि उसकी बदहाली की सबसे बड़ी वजह उसकी अशिक्षा है। उसने पढ़ने की इच्छा प्रकट की। गांव के गुरुजी से शिक्षा प्राप्त कर वो शीघ्र ही पढ़ने लिखने लगी। गांव का सरपंच दीवान था, किंतु गांव की सीट महिला सीट घोषित होने पर उसने अपनी पत्नी को पर्चा भरवाया तो दूसरी ओर गांव वालों के आग्रह पर जमुनिया भी अपना पर्चा भरकर चुनाव के मैदान में कूद पड़ी। दीवान अपनी कुटिल चाले चलता रहा, पर जमुनिया ने सभी का सामना सच्चाई और धैर्य के साथ किया। अब आगे।
2: माई उठो, माई सुबह हो गई।
3: अरे हाँ बिटिया, रात जरा देर से सोई तो थोड़ी ज्यादा देर हो गई। तुमने हाथ मुंह धोया?
2: हाँ माई, हमने तो चना चबेना भी खा लिया और बाबा कह रहे थे कि जमुनिया को अभी सो लेने दो, उसे आज बहुत भाग दौड़ करनी है ना।
3: बाबा भी ना कितनी चिंता करते हैं हमारी। कितने दिनों से एक भी पंखा डलिया नहीं बनाया, अकेले बेचारे लगे रहते हैं और हम सब का पेट भर रहे हैं।
4: अरे बिटिया।
3: हाँ बाबा।
4: अब तू मेरा गुणगान बंद कर और थोड़ा बहुत जो भी है खा कर जा। चुनाव का मोर्चा संभाल, परसों चुनाव है, इन्हीं दो दिनों में बहुत इधर का उधर होता है, समझी?
3: ठीक है बाबा। हाँ। पूरी कोशिश करूंगी कि इस बार ऐसा ना हो।
4: हाँ।
3: अरे आप लोग आ गए पुलिस भैया, नमस्ते।
5: जी जमुनिया जी।
3: आप लोग इतने दिनों से हमारे साथ हैं और हम आप लोगों की कोई आवभगत नहीं कर पाए, वो तो आप देख ही रहे हैं। हमारे पास आप लायक कुछ खाने को भी नहीं है, माफ करिएगा।
6: अरे जमुनिया।

0: भैया,
1: हाँ
0: मैं आप लोगों से एक मदद मांग रही हूँ।
1: हाँ हाँ बोलो बहन।
0: हो सके तो हाँ कीजिएगा, हाँ नहीं तो मेरी बड़ी किरकिरी हो जाएगी।
1: हाँ
2: बोलिए बहन, बोलिए।
0: हमने गांव की औरतों से विनती की है कि जिनके आदमी शराब पीते हैं वो अपनी कसम दे कि चुनाव के एक दिन पहले खाली एक दिन शराब ना पिए। और सबने हमारी बात भी मानी है।
1: अच्छा, अच्छा।
0: वो लोग अपने अपने आदमियों से बात भी कर चुकी हैं।
2: अच्छा, अच्छा। वो तो हम लोग देख रहे हैं।
1: हाँ।
2: बहुत अच्छा सोचा है आपने।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, पर आप हमसे क्या सहायता चाहती हैं?
0: आज मैं शराब की दुकान पर जाकर उसके मालिक है ना शंकर भैया,
1: हाँ हाँ।
0: उनसे कहने वाली हूँ कि वो एक दिन के लिए चुनाव से पहले वाले दिन अपनी दुकान बंद रखे, दारू ना बेचे।
1: अच्छा, तो इसमें हमें क्या करना होगा?
2: हाँ बताइए।
0: शंकर भैया मान जाएंगे, मुझे यकीन है, एक दिन की बात ही तो है।
1: हाँ हाँ।
0: वो मान भी सकते हैं, पर मान लो नहीं माने
1: तो
0: क्या आप लोग उन्हें रोक सकते हैं दुकान खुलने से?
2: हम तो आपके साथ ही चलेंगे।
1: हाँ।
2: और आपके कहने से मान गया तो ठीक है, वरना हम चुनाव को साफ सुथरा करवाने के नाम पर दुकान बंद करने को कहेंगे उससे।
1: हाँ हाँ और क्या, और हमें तो लगता है कि बात बन जाएगी बहन।
0: अरे वाह, तुझ पे चलिए।
1: हाँ हाँ चलिए
2: चलिए
1: चलिए, आइए
2: चलिए।
3: अरे सुना
4: जी मालिक,
3: जरा उस करण को तो बुला के लाओ।
4: आजकल तो उसका कोई ठिकाना ही नहीं है मालिक। अरे कभी घर जाता है कभी नहीं। हाँ, और किसी ने कुछ खिला दिया तो ठीक, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता है मालिक।
3: अच्छा अच्छा, अब ये कहानियां मत सुनाओ मुझे, जाओ उसे ढूंढ के लाओ।
4: ठीक है मालिक, देखता हूँ कहाँ है।
1: हाँ हाँ मालिक,
3: जल्दी निकलो जल्दी।
4: जी मालिक,
3: जल्दी बुला के लाओ उसे।
4: कहाँ ढूंढे उसको
1: यार, अब देखते चलते
4: दारू गड्ढे
1: पे। अरे कुआं पे देख, चलते कुआं पे।
4: ये लो भैया, जिसे खोज रहे थे वो तो यही लुढ़का पड़ा है।
1: क्यों रे?
4: अरे करण, क्या अभी तक रात की उतरी नहीं?
5: अरे कहा भैया, तुम पीने की बात करते हो, कोई पानी को तो पूछता नहीं है। दारू कौन देगा भाई, घर पर भी कौन है, यहीं के लोगों के बीच बैठ जाता हूँ, वक्त कट जाता है। अरे कभी कभार कोई पुराना यार दोस्त मिलता है तो एक आध घूंट पिला देता है बस।
4: अच्छा सुन, जीवान जी बुला रहा है तुझे, चल।
5: अब क्यों बुला रहे हैं?
4: चल,
5: बर्बाद तो कर दिया मुझे, अब क्या बचा है मेरे पास? भैया माफ करो हमें।
4: अच्छा? तो क्या जाके बोल दूं कि तुमने आने से मना कर दिया?
5: अरे अरे, थोड़ी सी जान बची है, ये भी नहीं देखा जा रहा है तुम लोगों को? चलता हूँ चलता हूँ।
4: चल चल चल,
5: चलो
4: बस भैया, खत्म हो गई सारी एकड़ी।
5: अब काहे की एकड़ी भैया, चलो ना।
4: चल चल, आजा।
0: ये तो करण है, तो अभी तक इन्हें चेत नहीं आया, दारू की दुकान को ही घर बना लिया है यही लगता है।
1: अरे भैया,
6: ये
1: तो जमुनिया है।
6: हाँ भैया।
1: अरे जहाँ दारू की दुकान पर क्या करने आई है? अरे करण, रुक रुक रुक, एक मिनट रुक। अबे देख, तेरी भाभी।
5: अरे मुझे मत रोको भैया।
1: काय?
5: मुझे मत रोको, मैं उसके आगे नहीं जाना चाहता।
4: अबे रुक,
5: मैं
4: अबे रुक के देख तो सही।
6: इधर क्या करती है, साथ में दो दो पुलिस लेके घूमती है।
1: हाँ,
6: इसका कुछ भी नहीं कर सकते।
4: ये जमुनिया जी, इधर कैसे?
1: नमस्ते।
0: शंकर भैया है क्या?
4: अरे घर में होंगे भीतर। हाँ, या तो आपके देवर जी हैं। देवर जी।
0: आपको बताने की जरूरत नहीं है, अपने देवर को मैं जानती हूँ, और जब

0: जरूरत होगी खुद समझ लूंगी, तभी तो शंकर भैया से काम है।
1: अरे भाई आता हूं आता हूं आता हूं भाई, कम वक्त सुबह सवेरे से ही दारू पीने आ जाते हैं। अरे आप जमुनिया बहन,
0: जी
1: यहां कैसे? कहिए क्या बात है?
0: शंकर भैया, वो आपसे एक विनती करने आए हैं।
1: विनती? कैसी विनती?
0: आपसे विनती है कि कल दारू की दुकान बंद रखें, ना पिलाएं और ना बेचें, खाली एक दिन के लिए बस।
1: भाई ये तो पहली बार सुन रहा हूं जमुनिया बहन, नहीं तो चुनाव के पहले तो दारू रोज से चौगुनी बिकती है और बिकती रही है, ऐसा क्यों?
0: अनजान मत बनिए शंकर भैया, आप सब समझते हैं, हमसे मत कहलाइए।
2: अरे वाह, ये तो कोई बात नहीं हुई जमुनिया बहन। किसी की रोजी रोटी पर रोक लगाने की बात ठीक नहीं है।
3: और क्या?
2: दीवान जी ऐसा नहीं होने देंगे।
0: देखो भैया, हम आप लोगों से कुछ नहीं कह रहे।
3: अच्छा?
0: रही रोजी रोटी की बात, तो दुनिया की रोजी रोटी दारू के भरोसे नहीं चल रही है।
1: देखो भैया, बहन जी आप भी और आप भी भैया आपस में मत लड़ो, आपस में मत झगड़ो भैया।
3: अच्छा?
1: मैं बहन जी मैं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ, आप मुझे सोचने दीजिए।
3: अच्छा तो हमें पुलिस का रोप दिखाया जा रहा है?
0: आप अगर ऐसा सोचते हैं तो ये ही सही।
1: अरे भाई शांत भी तो रहो, शांत। चलो सोच लिया, अब कल दुकान बंद।
0: हाँ भैया, जी जी
3: बिल्कुल बंद। आप दुकान खोलिए, हम लोग आकर खड़े
2: रहेंगे।
3: अरे देखते हैं कौन दुकान बंद कराता है।
1: तुम दोनों जाओ यहाँ से, चलो।
3: अरे?
1: चलो। और जमुनिया बहन
0: जी,
1: आप निश्चिंत रहिए,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कल दुकान नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी।
3: क्या बात हुई है? दुकान तो खुल के रहेगी। और नहीं खुली तो हम ठेला लगा कर यहीं दारू बेचेंगे। चल बे करण, चल जाओ।
2: चल करण,
3: चल।
4: लगता है ये दीवान का आदमी है।
3: लगता तो है
1: जी साहब, कानून कायदा जानता नहीं है ना, समझता है जो दीवान बोल दे वही कानून है, कुछ कर नहीं पाएगा वो, निश्चिंत रहें।
0: जी
1: हमारा विश्वास करिए बहन जी।
0: जी
1: कल दारू नहीं बिकेगी, यानी नहीं बिकेगी। हाँ
0: बस शंकर भैया, एक दिन की ही बात है। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
3: चल चल
5: चल चल चलो चल।
6: आ गए करण बाबू।
5: जी मालिक, अब हमारे पास क्या बचा है मालिक?
6: देखा हमारा काटा पानी भी नहीं मांगता। हाँ
5: देखा मालिक, देखा।
6: अब तुम्हारे पास केवल तुम बचे हो और उसी से कर्जा वसूलूंगा बच्चू।
5: हे मालिक, एक ही बार में मार डालो, क्यों धीरे धीरे हलाल कर रहे हो हमें? अरे हमसे क्या गलती हो गई?
6: अरे बच्चे, हम किसी को गलती करने का मौका ही नहीं देते।
7: मालिक, ये उसी दारू के अड्डे पर मिला था।
6: अच्छा?
7: हाँ वहीं सो जाता है। मालिक,
6: हाँ
7: आपसे एक बात बतानी थी।
6: अच्छा बोलो बोलो, क्या बात है?
7: मालिक।
6: अरे बोलो ना, क्या बात है?
7: मालिक वहां जमुनिया आई थी।
6: क्या कहा? जमुनिया आई थी?
7: हाँ?
6: शराब की दुकान पर जमुनिया आई थी?
7: यही तो बात है मालिक।
8: हाँ मालिक, वो शंकर भैया से कह रही थी कि चुनाव के एक दिन पहले दुकान बंद रखे।
6: अच्छा, उसके बाप का राज है क्या? हैं? दुकान

0: आन खुलेगी,
1: और क्या भैया,
0: हम खुलवाएंगे। और तुम लोग तैयार है ना रे?
1: मालिक मालिक, एक बात और, बस साथ में पुलिस भी थी जमुनिया के।
0: क्या?
1: हाँ, कह रही थी बिनती मान लो तो अच्छा, नहीं तो कानून से मनवाएंगे। अरे मालिक, मैं तो हड़का आया कि दुकान खुलकर रहेगी। कहा भैया?
2: हाँ मालिक,
0: ये तुमने बड़ी बात बताई।
1: और क्या,
0: पुलिस भी थी वहां पर?
1: हाँ मालिक,
0: इस जमुनिया ने तो नाक में दम कर रखा है। ओहो, कानूनन तो वो दुकान बंद करवा भी सकती है भाई।
2: तो क्या मालिक, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे?
0: अबे सोचने दो मुझे, जो मन में आता है हनाप शनाप कुछ भी कहीं भी बोल के आ जाते हो तुम, और बाद में छेलना तो दीवान को पड़ता है ना। सोचने तो मुझे, सोचने तो। अरे अब सर पर क्यों खड़े हो मेरे, चल भागो यहाँ से, भागो
2: जी।
0: और इसे भी ले जाओ साथ में
2: जी।
0: मूड खराब हो गया मेरा तो। और सुनो
2: जी मालिक,
0: दो रोटी डाल देना, इसके पेट में जाएगी रोटी
2: तो
0: ठीक रहेगा।
1: अच्छा
0: बात करेंगे से। हाँ जाओ, ले जाओ ले जाओ।
1: अच्छा मालिक,
2: चल चल चल चल चल चल।
3: ए चिरैया, चिरैया, अरे कहाँ उड़ गई, कहाँ है चिरैया?
4: मैं यहाँ हूँ माई, क्या बात है, बड़े गुस्से में हो?
3: दादी की तरह सवाल मत पूछ, ला पानी पिला।
4: अभी लाई माई।
5: का बात है बिटिया, कोनू झड़प हो गई का किसी से? हैं, सचमुच गुस्से में दिख रही हो बिटिया तुम।
3: अरे कुछ नहीं बाबा, रोज सोचती हूँ दीवान के आदमियों से सामना ना हो, पर हो ही जाता है, खून खोलता है। पर सोचती हूँ हमें अभी अपनी बात से सबको समझाने बुझाने की जरूरत है।
5: हाँ बिटिया,
3: झगड़ा टंटा से ना नुकसान ही होगा, पर दीवान के लोग उलझ ही जाते हैं।
5: अरे बिटिया, हुआ क्या आखिर, बात ज्यादा बढ़ गई क्या?
3: अरे नहीं बाबा, बात कुछ नहीं है? मैं तो शंकर भैया से इतना कहने गई थी कि परसों चुनाव है ना, वोट डाले जाएंगे, वो कल भर अपनी शराब की दुकान बंद रखें।
5: अच्छा।
3: वो मान भी गए, पर दीवान का आदमी वहीं खड़ा था, वो उलझ गया, बोलने लगा किसी की रोजी रोटी कैसे रोक सकती हो।
5: अरे बिटिया, फिर क्या हुआ?
3: होना क्या था, पुलिस भैया ने समझाया।
5: हाँ।
3: पर वो बोला कि मैं ठेला लगा के यही शराब बेचूंगा, देखूं कौन रोकता है। और पापा, वो मुआ करन वो भी वही मर रहा था बाबा।
5: अरे तो बिटिया, असली बात बोलना कि करण से आमना सामना हो गया तेरा। अरे गुस्सा कहाँ है बिटिया, और निकाल कहाँ रही हो तुम?
4: माई लो ये पानी पियो।
5: हाँ।
4: और गुस्सा ठंडा करो।
3: ला

0: आओ शंकर भैया आओ
1: भैया,
0: मालिक आपको ही याद कर रहे थे। हाँ मैं आने वाला था आपको बुलाने, आप खुद ही आ गए। मैंने तो मालिक को सारी बात बता दी है।
1: हाँ भैया अभी बताई।
2: पता था मुझे कि तुम चुप रहने वाले तो हो नहीं।
3: अरे कौन है भाई उधर? शंकर है क्या?
2: जी मालिक, मैं शंकर।
1: मालिक जी खुद ही आ गए, इन्हीं से पूछ लीजिए मालिक।
3: हाय शंकर, क्या सच्ची जमुनिया आई थी दुकान बंद करवाने?
2: जी मालिक आई तो थी।
3: तो फिर तुमने क्या सोचा है?
2: सोचना का मालिक, बस एक दिन की बात है, रख देते हैं बंद।

0: सबके फायदे की ही बात है माई।
1: कौन से सब हैं? कौन से सब हैं जिनके फायदे की बात है?
0: और कौन मालिक, पूरा गांव ही तो है मालिक।
1: हट गांव। अरे साफ बात तो ये है कि ये जमुनिया के फायदे की बात है। कब पहली बार चुनाव हो रहा है गांव में हैं? अरे हर बार हमने तुम्हारी मदद की है, मुफ्त की दारू दी की पिलाओ सबको, कभी पैसे धेले की बात की हो तो बता। यही तो मौका होता है कि सब लोग मौज मजा करें, खुश रहें। अरे बाद में किसको पड़ी है।
0: वो तो ठीक है मालिक, पर मुझे भी ठीक लगता है। अरे एक दिन बंद रखें दुकान, नहीं तो उसी दिन मुफ्त की दारू पीकर सभी अंट शंट लड़ते झगड़ते हैं। अरे पैसे से पीते हैं तो कम पीते हैं, इतना झंझट नहीं होता मालिक।
1: डर गए शंकर, डर गए तुम शंकर। अरे जमुनिया से डर गए तुम? अरे हम तुम्हारे साथ खड़े हैं शंकर, और तुम जमुनिया से डर गए?
0: डरने की बात नहीं है मालिक, उसकी बात हमें ठीक लगी सो मान गए। हम यही बताने आए थे, हमें डर था कि आपका ये आदमी अनाप शनाप बोलकर बात का बतंगड़ ना बना दे। हमें मालूम था, सीधे जमुनिया से लड़ बैठा कि देखूं कैसे दुकान बंद करवाती हो। मैं यही दारू का ठेला लगा दूंगा।
2: हाँ।
0: इसने बोला ये।
2: हाँ, यही बोला।
0: बात बढ़ाने से क्या फायदा मालिक।
1: बस समझ गए हम, सब समझ गए शंकर, हमें ज्यादा ना समझाओ। हाँ अगर डर कर दुकान बंद करने वाले हो तो साफ साफ बताओ हमें, अरे हम तुम्हारे लिए आदमियों का इंतजाम कर देंगे।
0: अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है मालिक।
1: अरे देख रहे हो तुम लोग
2: मालिक,
1: आज ये शंकर हमें सिखा रहा है कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है।
0: देखिए मालिक, मुझे रोज का धंधा करना है, मेरा लाइसेंस कैंसिल हो गया तो धंधा ही चौपट हो जाएगा मालिक।
1: अरे तो तुम्हें लाइसेंस दिलाया किसने था?
0: आपने मालिक।
1: फिर क्या कल हम फिर से तुम्हें लाइसेंस नहीं दिलवा सकते?
0: अरे जानबूझकर मुसीबत क्यों बुलाना मालिक, और फिर अगर मुफ्त में ही दारू देना है तो मेरी दुकान से ही क्यों? अरे आप तो जहां से चाहें बांट सकते हैं मालिक।
1: बस समझ गए, तुम भी बदले बदले से लग रहे हो शंकर। अरे हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊ।
0: मालिक आप मुझे गलत समझ रहे हैं।
1: गलत समझे थे अब तक, अब आज सही समझ रहे हैं। अरे जी मत समझना कि जमुनिया जीत जाएगी। अरे दीवान हरगिज ऐसा नहीं होने देगा। और मान लो वो ससुरी जीत गई तो भी गांव को चैन से बैठने नहीं दूंगा मैं। अरे देखता हूं ये जमुनिया क्या कर लेती है। अरे अभी जरा चुनाव का माहौल है तो थोड़ा चुप्पी साधे, नहीं तो एक एक को बता देते हम।
2: और हाँ, हाँ।
0: मैं चलूं मालिक?
1: बड़ी जल्दी में हो, लगता है दुकान खोलने की जल्दी है तुम्हें।
0: जी मालिक, आज तो दुकान खोलना ही है।
1: लेकिन लेकिन तुम्हारे हाथ दारू मुफ्त इसलिए बंटवाते हैं शंकर कि सभी पीने वाले तुम्हारे पास ही आते हैं, बेचारे आस भी लगाए बैठे रहते हैं।

0: कि दीवान जी उनके नशे पत्ते का इंतजाम करते हैं।
1: एक ही बात बार बार कहने से क्या फायदा मालिक, मुझे इस बार माफ करिए बस। प्रणाम मालिक, चलता हूं।
0: प्रणाम जाओ। अरे माफ तो हम करेंगे तुम्हें अच्छे से, जरा ये चुनाव हो जाने दो शंकर। ए
2: जी मालिक जी,
0: सुनो
2: जी जी मालिक,
0: ये बेमतलब बातें गलत दीवान की इज्जत दांव पे मत रखा कर।
2: मालिक
0: समझ गए? अरे टाइम अभी नासुक है। और सुनो,
2: हाँ भाई,
0: पता करो कि ई शंकर कोई और खिचड़ी तो नहीं पका रहा है।
2: ठीक ठीक है मालिक, ठीक है।
0: और हाँ, जा बुला के ला उस करण को हमारे पास।
2: जी मालिक।
3: जे लो तो करण भी आ गया। अरे भैया खुद ही आ गया,
2: खुद ही आ गया।
0: कुछ खाया तुमने?
4: जी मालिक, बड़ी भूख लगी थी।
0: और पिए कितने दिन हो गए तुम्हें?
4: याद ही नहीं मालिक।
0: ठीक है, तैयार हो जाओ।
4: हाँ,
0: पर आज नहीं, कल छक्के पीना। और हाँ, अपने जान पहचान वालों को भी पिलवाना, पर ये बात पक्की कर लेना कि पीने वाले वोट के दिन मालकिन को ही वोट दें।
4: हाँ पक्का मालिक, पक्का।
0: समझ गए ना?
4: हाँ
0: चल, अच्छा भाग, तैयारी कर।
4: जी।
0: और हाँ,
4: अगर
0: कामयाब हुआ तो हम तेरी बहुत सारी परेशानियां खत्म कर देंगे, पर जी जान लगा दे करण, जी जान लगा दे हमारे लिए, इस मालकिन को जिताने में जी जान लगा दे तू।

0: करना, मन विजय करे दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें।
1: प्रणाम गुरुजी।
0: प्रणाम प्रणाम। खुश रहो जमुनिया, आज तो तुम बहुत व्यस्त होगी। कल चुनाव है ना, मतदान होगा।
1: जी गुरुजी, पर भीतर बहुत बेचैनी है, सो आपके पास आ गई। लोग कहते हैं टेंशन बुरी चीज है।
0: वाह भाई वाह, टेंशन। टेंशन जानती हो बेटा क्या होता है?
1: जी, जब दिमाग पर बहुत बोझ हो उसी को टेंशन कहते हैं, है ना गुरुजी?
2: रेडियो धारावाहिक जमुनिया की 14वीं कड़ी अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इस बैठक में भारत, चीन और रूस सहित 10 अन्य सदस्य देश शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में आयोजित कार्यक्रम से प्रदेश के करीब 1,22,000 विद्यार्थियों के खातों में लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रूपये की राशि अंतरित की। ये राशि 12वीं में पहली बार में 75% या उससे ज्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थियों को दी गई। भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 7.8% की वृद्धि दर्ज हुई है। अमरीका ने भारत को एक गतिशील, मजबूत और लचीली अर्थव्यवस्था बताते हुए कहा कि भारत की विशाल और विस्तारित अर्थव्यवस्था अमरीकी कंपनियों और निवेशकों के लिए बड़े अवसर प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि GDP वृद्धि 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक विकास की इस गति को बनाए रखने के लिए आत्मनिर्भर

0: भारत बनना जरूरी है। श्री मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी अपनाने, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने और भारत में बने उत्पादों का समर्थन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल ग्वालियर में बलराम जयंती महोत्सव और सहकारी किसान समागम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम मेला मैदान परिसर में आयोजित किया जाएगा, जहां विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दाब क्षेत्र और ट्रफ के असर से 4 सितंबर तक प्रदेश के कई संभागों में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आज उमरिया और बालाघाट में अति भारी बारिश जबकि 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आकाशवाणी के इंदौर केंद्र के योगदान से लीजिए सुनिए महिला कार्यक्रम।

आप हमारी सखी सहेली, हमारी दोस्त, हमारी जान हो, कार्यक्रम के सबसे खूबसूरत हिस्से की पहचान हो। कार्यक्रम महिला सभा में आपके साथ हूँ मैं दुर्गेश नंदिनी। नमस्कार सखियों, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को सही खान पान और संतुलित आहार के महत्व के बारे में जागरूक करना है। देश से कुपोषण, एनीमिया और बच्चों में कम वजन जैसी समस्याओं को दूर करने के उपाय भी बताना है। इस दौरान स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्रों में स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष कार्यक्रम होते हैं। जी हां सखियों, बच्चों और युवाओं के लिए पोषण और स्वस्थ जीवन शैली से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जाती है। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह के विषय हैं मोटापा नियंत्रण, पोषण भी पढ़ाई भी, आहार व्यवहार के साथ ही क्षेत्रीय और पारंपरिक पौष्टिक खान पान को बढ़ावा देना है। उम्मीद करते हैं हमारी प्यारी सखियां इन बातों का ध्यान रखेंगी। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना से आप कैसे लाभ उठा सकती हैं। जी हां सखियों, ये भारत सरकार की एक छोटी बचत योजना है जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया गया है। ये बालिकाओं के उच्च शिक्षा और विवाह के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। पात्रता की बात करें तो बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। खाता माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा खोला जा सकता है। सखियों, प्रति बालिका केवल एक खाता, जहां एक परिवार में अधिकतम 2 बालिकाओं के लिए जुड़वा बच्चों के मामले में छूट के साथ खाते खोले जा सकते हैं। न्यूनतम 250 रुपए और एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। सखियों, निवेश अवधि की बात करें तो खाता खोलने की तारीख से 15 साल तक पैसे जमा करने होते हैं। खाता खोलने की तारीख से 21 साल बाद ये परिपक्व होता है और 18 वर्ष की आयु के बाद बालिका के विवाह के समय बंद किया जा सकता है। ये राशि कर मुक्त होती है। सखियों, आवश्यक दस्तावेज में बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, अभिभावक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता का पहचान पत्र और पासपोर्ट, एड्रेस प्रूफ के लिए सखियों बिजली का बिल या राशन कार्ड और बालिका की फोटो। सखियों, भरा हुआ SSY आवेदन फॉर्म को आप किसी भी अधिकृत बैंक या डाकघर में जमा कर सकती हैं। अब सुन लेते हैं एक प्यारा सा मीठा सा गीत।

0: गीत हमने सुन लिया और भरते हैं हौसलों की उड़ान। क्यों हर कलाकार अपनी रूह में प्रश डुबोता है और अपनी ही प्रकृति को अपनी तस्वीरों में उकेर देता है। जी हाँ, कलाकार अपनी अनोखी दृष्टि के लिए पहचाना जाता है। एक ऐसे ही हुनरमंद कलाकार रचना जोशी श्रृंखला मेरी उड़ान में हमारे साथ रूबरू हो रही हैं। नमस्कार रचना जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: नमस्ते
0: रचना जी, हम देख रहे हैं कि कला के एक से एक नायाब नमूने हमारे चारों ओर हैं और यहाँ कई छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो आपसे प्रशिक्षण ले रहे हैं और उनके साथ ही उनकी मम्मी जो है वो भी के साथ जुड़ी हुई है, कॉलेज जा रही लड़कियां भी हैं, तो इन सब को लेकर आप चल रही हैं, प्रशिक्षण दे रही हैं। इस सफर की शुरुआत कैसे हुई आप हमें बताएं।
1: जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि मैं छोटे बच्चों से लेकर बड़ी महिलाएं और कॉलेज गर्ल्स सभी को ट्रेनिंग दे रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे कोर्सेज अलग अलग जगहों से किए हैं तो मुझे इन चीजों का बहुत ही डिटेल्स में पता चल चुका है कि कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए क्या चीज की जाती है। तो इन सब के लिए मैंने अच्छे से पहले शिक्षा प्राप्त की, खुद मैंने इतना स्टडी किया, उसके बाद मैंने अपनी क्लास स्टार्ट की, जो कि मैंने सबसे पहले घर से शुरुआत की। इसके लिए मुझे थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ा, बट मैंने किसी की बात पर ध्यान ना देते हुए अपना छोटा सा पहले एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। उसी के साथ में मैं अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। पढ़ाई करते करते ही मैंने सारी ये क्लासेस वगैरह स्टार्ट किए। मैंने फाइन आर्ट्स में मास्टर्स किया हुआ है, प्लस NIFD से मैंने अपना फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी किया हुआ है और मैंने अहमदाबाद से एक डिजाइन इनोवेशन करके एक ट्रेनिंग होता है वो भी मैंने लिया था। तो आर्ट की हर एक फील्ड का इतने अच्छे से सारा नॉलेज है कि मैं छोटे से लेके बड़े बच्चे तक सभी को ट्रेन कर सकती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हम जो भी चीज करते हैं पहले उसके लिए हमें अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब आप कोई चीज बता रहे हो तो वो बच्चे को तभी समझ में आएगी जब आपको उस चीज का अच्छे से नॉलेज होगा। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है आप दूसरों को नहीं दे सकते। और टीचिंग ऐसी फील्ड है, ज्ञान ऐसी चीज है कि आप जितना बांटोगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो मेरे लिए टीचिंग कि मेरा एक पेशन है, अच्छा लगता है मुझे बच्चों से इंटरेक्ट करना, बच्चों को नई नई चीजों के बारे में बताना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्ट की प्रतिभाओं को उभारने के लिए हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि इस चीज में वो लोग क्या क्या कर सकते हैं। और स्कूल्स में भी मैं जॉब करती हूँ तो मैं स्कूल के बच्चों को भी ये बताती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई में अच्छे हो तो ही आप कुछ कर सकते हो। पढ़ाई के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जिसमें आप अगर इंटरेस्ट दिखाते हैं तो आप एक अच्छे लेवल पे पहुंचते हैं।
0: बहुत ही विस्तार से आपने जानकारी दी ना जी। आप स्कूल में भी पढ़ा रही हैं, बच्चों को सिखा रही हैं, तो ये एक ऐसा माध्यम है जो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। हम कह सकते हैं वो स्वावलंबी बन सकते हैं, आर्थिक उपार्जन में भी कला जो है वो उनको अपना योगदान दे सकती है। तो क्या इसके लिए बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि आर्ट क्लासेस जो है वो अक्सर महिलाएं घर पर भी चलाती हैं और सुनने में ऐसा आता है कि कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत है। आप क्या सोचती है, हमारी जो सखियां हैं सुन रही हैं उन्हें आप क्या मार्गदर्शन देना पसंद करेंगी कि वो अगर इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहती हैं तो उनके लिए क्या जरूरी है?
1: सबसे पहले तो एजुकेशन तो इम्पॉर्टेंट है। आप जैसा कि जानते हैं कि 12th क्लास तक तो हमें एजुकेशन लेना ही रहती है। तो अगर आप एक 10th क्लास के बाद ही अपना एक टारगेट फिक्स कर लें कि हमें ये चीज करनी है तो उससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे जाके सॉल्व हो जाती है। जैसे कि मेरे साथ ये हुआ था कि जब मैं छोटी थी तो मुझे कोई समझाने वाला नहीं था कि आर्ट में आप ये कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये चीज आई कि मैं अगर फाइन आर्ट्स में कुछ करती हूँ तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। और मैंने फिर उस दौरान कॉमर्स से बैचलर्स किया तो मुझे लगता है कि मेरा वो 3 साल मैंने वेस्ट किए। तो अगर बच्चों को पहले से हम ये चीज बताएं कि आगे आपको इस चीज में ये कोर्सेस करने से ये फायदे मिलेंगे तो वो उनका कुछ समय वो बचा सकते हैं। अगर उन्हें पता ही नहीं होगा तो जो गलती आज मैंने की ऐसे कितने ही लोग कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ में बच्चों का ग्रूमिंग

0: भी जरूरी है। अगर उनका ग्रूमिंग होता है तो वो हर चीज का नॉलेज रखते हैं, तो ऐसी कुछ जगहें रहती है जहाँ पे इन सब चीजों का नॉलेज दिया जाता है। तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि हमारे बच्चों को उन जगहों पे भेजें और उनको इस चीज की डिटेल्स पता करें और बताएं उन्हें कि ये सब चीजों से आप ये कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप डॉक्टर इंजीनियर बनोगे और बस IT और यही कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि इस फील्ड में भी मैंने एक छोटा सा इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने लेवल पे बहुत कुछ कर लिया है। तो ऐसे कोई भी घरेलू महिला अगर चाहे तो कर सकती है। बस ये है कि आप अपने आप को पहले इतना प्रशिक्षित करो कि आप किसी और को अच्छे से प्रशिक्षित कर पाओ। अदरवाइज क्या होगा कि थोड़े दिन तक तो आप अपना कर लेंगे जो भी आपको अधूरा ज्ञान है, तो लेकिन एक लेवल पर जाके फिर आप स्टक हो जाओगे। इसलिए बेटर ऑप्शन ये है कि आप पहले खुद अपने आप को प्रोफेशनल स्किल्स में डेवलप करो, देन आप किसी को गाइड करो।
1: बहुत ही अच्छी आपने जानकारी दी रचना जी, और जैसा कि आपने बताया कि आपने काफ़ी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से जो है डिग्री कोर्सेज भी किया, डिप्लोमा करा और अपनी पढ़ाई पूरी करी, बाहर भी आप गई इसके लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं जो कुछ तैयारी कर रहे हैं, जैसा आपने बताया था कि वो एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ चाहेंगे आप जानकारी दें।
0: जी, इसके लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स होती हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी से डिज़ाइन के कोर्सेज होते हैं, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, और इसके साथ में डिजाइन एनिमेशन में भी कोर्सेज हैं, ग्राफिक्स में कोर्सेज हैं। तो मेरे यहाँ जो भी बच्चे हैं ये सब इसकी प्रिपरेशंस कर रहे हैं इनके एंट्रेंस की, ताकि इनको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। इनके कॉलेजेस जैसे कि आपको थोड़ा सा मैं बता दूं ब्रीफली कि मुंबई महाराष्ट्र में इसका JJ कॉलेज नाम से एक कॉलेज है जो काफी प्रसिद्ध है, प्लस अहमदाबाद में NID तो सभी जानते हैं, उसकी भी मैं एंट्रेंस की प्रिपरेशंस वगैरह करवाती हूँ, बच्चों को गाइड करती हूँ उसके बारे में। तो इस तरह से और भी काफी इंडिया में कॉलेजेस हैं जिसमें डिजाइन को लेके काफी कोर्सेज हैं, तो अगर बच्चों को वो चीज पता रहती है और उसकी एंट्रेंस की वो प्रिपरेशन करते हैं तो काफी अच्छा फ्यूचर है उसके अंदर, काफी इनकम सोर्स है उसके अंदर। लेकिन उसके लिए यही है कि उन्हें अपने आप को पहले उसके लिए एक टारगेट निश्चित करना होगा कि हमें यही चीज करनी है और हमको इसमें फुल्ली डिवोशन रखना है, तभी वो चीज कर पाते हैं। क्योंकि वो भी जिस तरह IT टफ है, वैसे ही उन एग्जाम्स के भी लेवल बहुत टफ होते हैं।
1: रचना जी, आपने बताया कि आप इनको तैयारियां करवा रही, प्रिपरेशन करवा रही हैं, तो क्या यहाँ पर आप बताएंगे कि 12th में जो बच्चे इस तरह के एग्जाम में अपीयर होंगे उनके लिए कुछ परसेंटेज वगैरह भी निश्चित रहता है?
0: एसएस तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर भी 50% अबाव तो परसेंटेज मांगते ही हर कॉलेजेस में, अच्छे कॉलेजेस में अगर चाहिए तो, जैसे NIFT और NID इनका लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, तो उनके लिए बच्चों के GK बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर उनका जनरल नॉलेज अच्छा है, उसमें करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए और डिजाइन वगैरह तो होनी ही चाहिए अच्छी, साथ में पढ़ाई के उन्हें सारी चीजों से अपडेट होना जरूरी है।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपके माध्यम से हमारी सखियों को मार्गदर्शन मिल रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो माताएं हैं उनको ये थोड़ा सा दबाव रहता है जब बच्चा 12th में आता है कि अब आगे क्या करना है। तो कुल मिलाकर आपकी जो कला है वो उसने आपको पहचान दी, आपको सभी तरह से सफल बनाया। रचना जी, आप हमारी सखियों से क्या कहना चाहेंगे, जो सखियाँ इस ओर आगे बढ़ना चाहती हैं, जो सीख रही हैं?
0: मैं सभी महिलाओं के लिए बस एक यही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि कभी भी हमें किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहिए। हमें अपने लिए जो भी करना है, जो भी सोचना है, उसके लिए हमें सोचना है। हम हमेशा ये चीज़ क्यों सोचते हैं कि हम एक महिला हैं तो हम किसी और के पीछे चलें? हम हमारे बारे में खुद सोचेंगे तभी दुनिया हमें आगे बढ़ने देगी। तो कभी भी कोई भी परेशानी आपको लाइफ में आएगी भी तो आप अच्छे से उसको हैंडल कर लो।
2: रचना जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, निश्चित रूप से हमारी सखियों को मार्गदर्शन मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और सखियों, सुन लेते हैं एक और गीत।

गीत हमने सुन लिया सखियों, और अब बात करते हैं रूप लावण्य की। जैसा कि हमारा सौंदर्य केवल बाहरी रूप रंग तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये आंतरिक गुणों, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व का भी एक अनूठा मेल होता है। किसी भी महिला का आत्मविश्वास और उसकी मुस्कान उसके चेहरे के आकर्षण को कई गुना बढ़ा देती है। साथ ही सखियों, सादगी और विनम्रता बाहरी दिखावे से कहीं ज्यादा आकर्षित करती है। जी हाँ, विशेष बात सखियों, सेहतमंद त्वचा और बालों के लिए ताजे फल, हरी सब्जियाँ और भरपूर मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। सखियों, रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेने से चेहरे पर प्राकृतिक चमक बनी रहती है। रासायनिक उत्पादकों के बजाय घरेलू और प्राकृतिक नुस्खों का उपयोग त्वचा के लिए ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात सखियों, नियमित योग, ध्यान और व्यायाम रूप लावण्य को बनाए रखने में बहुत मददगार साबित होता है। और अब सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत जो आपके चेहरे की चमक को दुगना कर देगा।

और सखियों, खाने पीने में हमें पौष्टिक चीजों का सेवन करना है, ये हम सभी जानते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं मिलेट्स यानी श्री अन्न से बनने वाली एक बेहद स्वादिष्ट और पौष्टिक रेसिपी। जी हाँ, मिलेट वेजिटेबल पुलाव, जिसे आप आसानी से अपने घर पर बना सकती हैं। सामग्री आप झटपट से नोट कर लें। मिलेट्स कोदो या फॉक्सटेल 1 कप, 10 मिनट पानी में भिगोए हुए, घी या तेल 2 बड़े चम्मच, बारीक कटा 1 छोटा प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 छोटा चम्मच, 1 टीस्पून जीरा, कटी हुई सब्जियां जिसमें गाजर, मटर, बीन्स, कैप्सिकम जो भी आपको पसंद हो 1 कप, नमक, मिर्च, हल्दी स्वादानुसार, पानी 2 कप। विधि बहुत ही आसान है सखियों। एक गहरे बर्तन में घी या तेल गर्म करें, जीरा चटकाएं, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज डालकर सुनहरा होने तक भुनें। अब इसमें कटी हुई सब्जियां, हल्दी, नमक डालकर 2 मिनट तक पकाएं। भीगे हुए मिलेट्स का पानी निकालकर बर्तन में डालें। 2 कप पानी डालकर उबाल आने दें। आंच धीमी करके ढककर तब तक पकाएं जब तक कि सारा पानी सूख न जाए और हाँ, मिलेट्स नरम हो जाएं। जब ये पक जाए तब ऊपर से हरा धनिया डालकर गर्मा गर्म सेहतमंद मिलेट वेजिटेबल पुलाव सर्व करें। और आइए सुनते एक और मधुर गीत।

गीत हमने सुन लिया सखियों, अब करते हैं काम की कुछ बातें। जी हां, अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रखने के लिए फिजिकल फाइल और डिजिटल सुरक्षा दोनों का उपयोग करें। सभी मुख्य दस्तावेज जैसे आधार, पैन, वोटर आईडी और जन्म प्रमाण पत्र एक वाटरप्रूफ प्लास्टिक फोल्डर में रखें। यदि कोई कीमत या संपत्ति के कागजात हैं तो उन्हें बैंक लॉकर में रखना सबसे उत्तम है सखियों। सखियों, सरकार के डिजी लॉकर पर अपने सभी मुख्य डिजिटल फॉर्मेट में सेव करें, ये पूरी तरह सुरक्षित और वैध होते हैं। सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की स्पष्ट फोटो या पीडीएफ बनाकर अपने व्यक्तिगत ईमेल आईडी या गूगल ड्राइव पर सेव करें। ध्यान रखें सखियों, ड्राइव पर पासवर्ड जरूर लगाएं। अपना फोन या लैपटॉप पर मजबूत पासवर्ड या पिन रखें ताकि कोई अनजान व्यक्ति इन्हें ना खोले। अपना मोबाइल नंबर, पता और नाम अपडेट करने के लिए समय पर चेक करें, बस आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी। बातों बातों में सखियों, पता ही नहीं चला कि समय सीमा कार्यक्रम की कब समाप्त हो गई। आपको बता दें, कार्यक्रम संयोजन डॉक्टर प्रीति छड़ीदार का था। अब दुर्गेश नंदनी को दे इजाजत। नमस्कार।

0: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र के योगदान से अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम, प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया गया। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है एक अंतराल का।
1: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
2: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
1: क्या, कैसे?
2: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
1: वाह, अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
2: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।

0: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
0: आकाशवाणी है ना,
3: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
0: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
5: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 1:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत, प्रस्तुति आकाशवाणी के इंदौर केंद्र की है। आज इसमें आप सुनेंगे भेरू सिंह चौहान और साथियों के गाए लोकगीत।

भैरू सिंह चौहान और साथियों के गाए लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। प्रस्तुति आकाशवाणी के इंदौर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी के इंदौर केंद्र की है और आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे यूनुस मलिक की आवाज़ में चंद रचनाएँ।

0: यूनुस मलिक की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे चंद रचनाएं। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है एक अंतराल का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से श्रोताओं, महत्वपूर्ण सूचना। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहा
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: इस समय आप हैं हमारे साथ।
3: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
4: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
5: सच कहा, इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
4: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।
3: मालवा की शान
2: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्म गीत।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
6: चलो दीदी, झूला झूलते हैं।
7: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
6: और झूलते झूलते सुनते हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: अरे दीदी धीरे धीरे।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: इस समय आप हैं हमारे साथ।
3: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
4: अरे मौसा जी जल्दी चलो, अरे गाड़ी आ गई है, अरे शादी में चलना है ना।
5: अरे मैं नहीं आता कहीं शादी में, मैं तो सुन रहा हूँ मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर। तुम जाओ शादी में जाना हो तो।
6: गीत किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाजों में, गीत लिखा है एमजी

जावेद अख्तर का लिखा गीत अभी आपने सुना साथ साथ फिल्म से। आवाजें थी जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की और इसे संगीत दिया था कुलदीप सिंह ने। इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया सहित विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल में प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश के 1,21,000 से अधिक विद्यार्थियों के खातों में लैपटॉप खरीदने के लिए 304 करोड़ रूपये से अधिक की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। इस कार्यक्रम में विभिन्न संभागों से चयनित 10 विद्यार्थियों को लैपटॉप भी वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेधावी विद्यार्थियों से संवाद कर उनके अनुभव और भविष्य की योजनाएं भी जानी।
1: शासन ने आपको लैपटॉप दिया, केवल इतना ही बोलना चाहूंगा कि सफलता मिली है, लेकिन सफलता को सिर पे मत चढ़ने देना। असफलता अगर आ जाए तो असफलता को भी दिल पे मत लगाना। हम जो है, जहां है, वहीं सामान्य बने रहे। मेरिट का बोर्ड में अगर सूची बनती है तो 50% से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों से आते हैं। आगे बढ़ने का जज्बा कायम रखें। देश आपको आगे बढ़ता देखना चाहता।
0: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज शिवपुरी जिले के दौरे पर रहेंगे। वे शिवपुरी और कोलारस में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। श्री सिंधिया अमृत भारत रेलवे स्टेशन और पोहरी रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण भी करेंगे। इसके अलावा स्कूल भवन, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क और बिजली से जुड़े कई विकास कार्यों का शुभारंभ भी श्री सिंधिया करेंगे। कोलारस में उज्जैनी एक्सप्रेस के नए ठहराव का शुभारंभ भी किया जाएगा। वहीं मौसम की खबर में, प्रदेश में अगले 4 दिन तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज उमरिया और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि सतना, रीवा, पन्ना, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, कटनी, मैहर, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, जबलपुर, मंडला, सिवनी और छिंदवाड़ा में भारी बारिश की चेतावनी है। सतना जिले में बारिश के बाद मंदाकिनी, गंगा और सेमरावल नदियों का जल स्तर फिर बढ़ रहा है। सतना सांसद गणेश सिंह ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है।
2: मैं नागरिकों से अपील करता हूं कि सभी लोग अपने परिवार के साथ सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। प्रशासन ऑलरेडी इन सारी व्यवस्था में लगा है, हमारे कार्यकर्ता भी इस काम पर लगे हैं, लेकिन चूंकि पानी फिर से बढ़ता जा रहा है इसलिए सतर्क होने की जरूरत है। भोजन और दवाइयां, पानी आदि का इंतजाम कई समाजसेवी संस्थाओं के और प्रशासन की तरफ से और पंचायतों की तरफ से किया जा रहा है।
0: अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में विश्व वरीयता प्राप्त एरिना सबालेंका ने न्यूयॉर्क में कोलंबिया की कैमिला ओसोरियो को 6-2, 6-4 से हरा दिया है। सबालेंका का अगला मुकाबला रूस की पोलिना यात्सेन्को से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। महू स्थित इन्फेंट्री स्कूल ने अपना 78वां स्थापना दिवस आज मनाया। इस अवसर पर स्कूल के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल विजय बी नायर ने युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। नर्मदापुरम में बीपीएल श्रेणी की बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण के तहत शासकीय आईटीआई में फैशन डिजाइनिंग, कोपा और स्टेनोग्राफी में प्रवेश दिया गया है। झाबुआ कलेक्टर डॉ योगेश तुकाराम ने ओवर स्पीडिंग, मॉडिफाइड व सुपर बाइक चालकों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाने और सोशल मीडिया के जरिए निगरानी तथा कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुरैना में कृषि उपज मंडी परिसर में 4 सितम्बर को आयोजित बलराम कृषि महोत्सव के जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव वर्चुअली जुड़कर जिले के किसानों से संवाद करेंगे। और आगरमालवा के सरस्वती शिशु मंदिर में आज से शुरू हुई 37वीं 3 दिवसीय क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिता में मध्य भारत, मालवा, महाकौशल और छत्तीसगढ़ के करीब 350 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे दोपहर समाचार।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने का आह्वान किया। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के लिए मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट। झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, आतंकवादियों की भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के प्रति कतई बर्दाश्त न करने की नीति और दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के विभिन्न भागों में जारी संघर्षों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी समस्या का समाधान नहीं है तथा सभी विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को सुगम बनाते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हालांकि इन प्रयासों में सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष भारत ने शंघाई सहयोग संगठन सभ्यता संवाद मंच का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इसका पहला सत्र इस वर्ष भारत में आयोजित किया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: आज किर्गिस्तान में हुए शिखर सम्मेलन के बाद शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं ने बिश्केक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। संगठन की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जारी बिश्केक घोषणा पत्र के साथ साथ सदस्य देशों ने संस्थागत ढांचों को बेहतर बनाने और नए सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने के उद्देश्य से व्यापक प्रस्तावों पर भी हस्ताक्षर किए। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने आयातित ऊर्जा और उर्वरकों पर देश की निर्भरता को स्वीकार करते हुए कहा है कि भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की क्षमता प्रदर्शित की है। इसके बावजूद उसकी विकास दर पटरी से नहीं उतरती। वित्त मंत्री ने भारत को एक जीवंत और प्रतिक्रियाशील अर्थव्यवस्था बताया जो बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 7% के अनुमान से अधिक है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को देशवासियों की मेहनत और सामूहिक संकल्प का परिणाम बताया है। आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है।
2: देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा।
0: नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 987 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा बलों ने देश के 8 जिलों से और शव बरामद किए हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 583 विदेशियों और कई सुरक्षा कर्मियों समेत करीब 4000 लोग अभी भी लापता हैं, जबकि लगभग 12000 लोगों को बचा लिया गया है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के शवों की पहचान और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी साझा की है। दूतावास ने बताया कि नेपाल सरकार के अनुसार विदेशी नागरिकों के शवों को सौंपने के लिए कई चरणों की आवश्यकता होती है। इनमें शवों का दस्तावेजीकरण, तस्वीरें और विवरण रिकॉर्ड करना, पोस्टमार्टम, मृत्यु के कारण का सत्यापन, औपचारिक पहचान,

0: उंगलियों के निशान, डीएनए और अन्य फोरेंसिक नमूनों का संग्रह, मृतक के पासपोर्ट या पहचान पत्र का सत्यापन और दूतावास या वाणिज्य दूतावास के साथ समन्वय शामिल है। दूतावास ने कहा कि यदि रिश्तेदार और परिवार के सदस्य नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध तस्वीरों और विवरणों के माध्यम से शवों की पहचान कर पाते हैं तो दूतावास शवों को सौंपने और स्वदेश वापसी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने में मदद करेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नेपाल त्रासदी के दौरान मानवीय सहायता और बचाव कार्यों में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की भूमिका अत्यंत सराहनीय है। बल के शपथ ग्रहण समारोह पर अपने लिखित संदेश में श्री शाह ने कहा कि संकट के समय एसएसबी की त्वरित, समन्वित और संवेदनशील कार्रवाई उसके आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व का जीवंत प्रमाण है। समारोह में गृह सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा गृह मंत्रालय और सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। एसएसबी के 18 जवानों को वीरता पदक और 5 जवानों को विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए गए। गृह सचिव ने एसएसबी की आवासीय परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। कवच स्वदेशी रूप से निर्मित स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के 21 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के लिए 233 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस आधुनिक प्रणाली से पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नल के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। ये स्वदेशी स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को भी सुगम बनाएगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज कहा कि सरकार ने 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर ज्वाइंट वॉरफेयर स्टडीज के दूसरे वार्षिक ट्राइडेंट व्याख्यान में श्री सेठ ने कहा कि देश का रक्षा उत्पादन लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसने भारत की बढ़ती रक्षा आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू आज शाम अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा उड़ान अहमदाबाद से रवाना होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये उड़ान दिल्ली होते हुए दुनिया भर में अलग अलग स्थानों तक यात्री सेवा उपलब्ध कराएगी।
2: अहमदाबाद में इस फैसिलिटी की शुरुआत के साथ गुजरात का यह प्रमुख शहर भारत के बढ़ते हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में वाराणसी और अमृतसर के बाद तीसरा क्षेत्रीय केंद्र बन जाएगा। यह पहल सरकार की उस व्यापक योजना का हिस्सा है जिसका मकसद छोटे और गैर मेट्रो शहरों से विदेश जाने वाले यात्रियों के हवाई सफर को आसान और सुविधाजनक बनाना है। इजी कनेक्ट सुविधा के तहत यात्री अब अपने आखिरी विदेशी गंतव्य के लिए चेक इन, सामान जमा करने से लेकर कस्टम और इमिग्रेशन जैसी सभी जरूरी औपचारिकताएं सीधे अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ही पूरी कर सकेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दिल्ली जैसे प्रमुख हब एयरपोर्ट पर उतरने के बाद यात्रियों को अपना सामान दोबारा लेने, फिर से सुरक्षा जांच कराने या इमिग्रेशन की लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे सीधे अपने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट के प्रस्थान गेट तक जा सकेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि हर गुजरते साल के साथ एआई समाज में तेजी से शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब कम उम्र के विद्यार्थी भी पढ़ाई और रोजमर्रा के कामों में एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। श्री जोशी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के 66वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है। ये चैनल वर्ष 2001 में 1 सितंबर को शुरू हुआ था। ये एआईआर एफएम गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है। एफएम गोल्ड पर समाचार, समसामयिक मामलों और मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। एक रिपोर्ट।
3: श्रोताओं, इस धुन को सुनते ही आपके मन में आकाशवाणी

0: की अमर विरासत से जुड़ा एक अद्भुत उत्साह उमड़ने लगा होगा। जी हाँ, ये वही धुन है जिसने पीढ़ियों को ज्ञान और मनोरंजन से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से आकाशवाणी से जोड़ा। पिछले कुछ वर्षों में एफएम गोल्ड आकाशवाणी की प्रमुख रेडियो सेवाओं में से एक बनकर उभरा है। इस चैनल पर नियमित समाचार बुलेटिन और सुर्खियाँ प्रसारित होती है, साथ ही इस चैनल पर समसामयिक और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। एफएम गोल्ड के कुछ लोकप्रिय कार्यक्रमों में स्पॉटलाइट, मार्केट मंत्रा, स्पोर्ट्स कैन और कंट्री वाइड शामिल हैं। वहीं आज सवेरे और परिक्रमा जैसे कार्यक्रम भी श्रोताओं को खासे पसंद आते हैं। ये तो बात हुई एफएम गोल्ड के प्रमुख कार्यक्रमों की, लेकिन इसके अलावा भी इस चैनल ने पिछले दो दशकों में श्रोताओं को मनमोहक संगीत से मनोरंजित किया है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के वाक्य के साथ आकाशवाणी लगातार जनता के बीच विश्वसनीय और सटीक जानकारी का माध्यम बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में पिछले दो दिन से हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
3: मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर जलभराव के कारण आमजन को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण संपर्क मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए अवरुद्ध है। उधर अल्मोड़ा में भारी बारिश के चलते सोमेश्वर के बड्यूडा में देर रात एक मकान के भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोग की मृत्यु हो गई। वहीं देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में तेज बहाव में आने से एक वाहन में सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: झारखंड में तेज बारिश जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
4: मौसम केंद्र के अनुसार आज झारखंड के लगभग सभी हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में अगले 24 घंटे के लिए कम से मध्यम स्तर के फ्लैश फ्लड का खतरा जताया है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अचानक तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और फ्लैश फ्लड की स्थिति बन सकती है, जिसे देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं रांची, खूंटी, चतरा और सरायकेला खरसावा में येलो अलर्ट जारी करते हुए कहीं कहीं भारी बारिश, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: घरेलू शेयर बाजारों में आज दोपहर कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 44 अंक की गिरावट से 76,915, जबकि निफ्टी 51 अंक की गिरावट के साथ 24,030 पर कारोबार कर रहा था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में विश्व वरीयता प्राप्त एरिना सवालेंका ने न्यूयॉर्क में कोलंबिया की कैमिला ओसोरियो को पराजित कर दिया है। सवालेंका का अगला मुकाबला रूस की पोलिना यात्सेन्को से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर दोहरे मापदंड खत्म करने का आह्वान किया। भारतीय रेलवे ने उत्तरी रेलवे के मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे चरण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 987 हुई। आकाशवाणी एफएम गोल्ड आज अपनी रजत जयंती मना रहा है और छत्तीसगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट, झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं अजनबी फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज में है, साथ में लता मंगेशकर की आवाज भी है। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत आरडी बर्मन का है, और इस गीत की फरमाइश हमें मिली है धामणी मानोरा जिला वाशिम से, तुलसीराम डेरे, मायावती, संदेश, आदेश, किरण और प्रज्वल डेरे और अनुत डेरे की, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, और इसी गीत को पसंद किया है छत्तीसगढ़ के ये हमारे श्रोता है, छत्तीसगढ़ के दतरिंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू। हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद पर अजनबी फिल्म का ये गीत आपके रेडियो सेट पर।

0: क्या सोच रही हो?
1: मैं?
0: हाँ हाँ।
1: कुछ भी तो नहीं।
0: बोलो ना, कुछ तो।
1: ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ।
0: फिर ना कभी कहना दिल।

0: अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी का। साथ ही साथ ये पत्र हमें मिला है यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से, दिलीप मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, जितेंद्र धर्मेंद्र मालाकार का। और गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। हमारे ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं प्रेम कहानी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और इसे सुरों से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: सुनो।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत। इसे संगीतबद्ध किया है आरडी बर्मन ने और फिल्म का नाम है अभिलाषा। और इस गीत को सुनने की अभिलाषा पत्र के माध्यम से हमें मिली है जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमीन और प्रयागराज भट्ट, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले की। और थाना रोड बक्सर से ये हमारे श्रोता है जियोत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी। और नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। इन सभी की पसंद पर अभिलाषा फिल्म की ये गीत रचना।

अरे श्रोताओं की तरफ से मिल रही है। सचमुच गीतों को सुनते सुनते एक माहौल सा बन गया है और यही माहौल और भी खूबसूरत बना रहे, इसके लिए अब हम आपको सुनवा रहे हैं विक्टोरिया नंबर 203। इस फिल्म का गीत किशोर कुमार और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में, गीत लिखा है वर्मा मलिक ने और इसकी धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। और इस गीत को पसंद किया है 51 नंबर पुलिस चौकी गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र, पूजा विकी रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, कुमारी देविका चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे। और ये खत हमें मिला है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप और कालका से सुभाष, कालका से ये है शुभ चंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज। और ये खत कवाई बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक का हमें मिला है। और ग्राम सनोतिया से ये श्रोता है मांगीलाल चंदेल, अरविंद, अशोक और राजकुमार हिमांशु, ये सभी सुनना चाहते हैं विक्टोरिया नंबर 203 का ये गीत।

जी हाँ श्रोताओं, आप भी थोड़ा सा रुक जाइए और चलते चलते सुनिए कार्यक्रम का ये आखिरी गीत, जिसे हमने लिया है निकाह फिल्म से गुलाम अली की आवाज़ में। इसे लिखा है हसरत मोहनी ने और संगीत

मलिका है और इस गीत को पसंद करने वाले हमारे ये श्रोता है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, छाबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। और ये खत हमारे पास आया है लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, मालती स्वाति प्रयाग चौधरी और सिंहपुर बड़ा से ये हमारे श्रोता हैं राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा।

गुलाम अली की आवाज़ में निकाह फिल्म की ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ श्रोताओं, आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश के 1,21,000 से अधिक विद्यार्थियों के खातों में लैपटॉप खरीदने के लिए 304 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के 66वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हर गुजरते साल के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाज में तेजी से शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब कम उम्र के विद्यार्थी भी पढ़ाई और रोजमर्रा के कामों में AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के विनिर्माण क्षेत्र में अगस्त में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहीं विकास की गति 5 साल के निचले स्तर पर आ गई है। आज जारी की गई HSBC इंडिया विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले महीने जुलाई के 53.5 से गिरकर 52.8 हो गया। और मौसम विभाग ने आज उमरिया और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि सतना, रीवा, पन्ना, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, कटनी, मैहर, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, जबलपुर, मंडला, सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पूर्व लीजिए सुनिए हमारे आज सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। मीडियम वेव पर सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी 5 बजे से। 5:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवावाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की होगी। साथ ही साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5:33 पर, रात 8:15 पर और रात 10 बजे, और 6:30 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होगा शाम 6 बजे

Sí. आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से 7:30 से आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। रात 8:00 आकाशवाणी मध्य प्रदेश से पुनः जुड़कर सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। उर्दू कार्यक्रम आईना का समय है 9:30 का और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा राग रजनी, जिसमें आज आपको सुनवाया जाएगा डॉक्टर एन राजम का वायलिन पर बजाया राग यमन। ये थी जानकारी हमारे सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। दोपहर के 3:05 हुए हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त करते हैं। शाम 5:00 इन्हीं मीटर्स पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। डीटीएच के श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और कार्यक्रम

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। शाम के ठीक 5 बज रहे हैं, आरंभ हो गई है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सांध्यकालीन सभा सुनने वाले सभी श्रोताओं का इस सभा में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्रोताओं नमस्कार, आइए इस संध्या का आगाज कर रहे हैं युवाणी कार्यक्रम के साथ।

0: नमस्कार दोस्तों, शाम हो चुकी है। आपकी दिन भर की भागदौड़ अब धीरे धीरे थम रही होगी और इसी सुकून भरे वक्त में आपका स्वागत है आकाशवाणी के युवा कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त तनिष्का।
1: साथियों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त राज। दोस्तों, उम्मीद है आपका आज का दिन जो है बिल्कुल शानदार रहा होगा, और अगर नहीं भी रहा है तो कोई बात नहीं दोस्तों, अगले कुछ मिनट हमारे साथ बिताइए। बातें होंगी, मुस्कुराहट होंगी और नई जानकारियां भी होंगी आपके बीच, और ढेर सारा उत्साह भी।
0: बिल्कुल, और आज हमारे स्पेशल सेगमेंट हमारे शहर में हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश के खूबसूरत शहर की ओर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की, और सबसे पहले आपसे पूछ लेते हैं रोजाना की तरह सामान्य ज्ञान के प्रश्न। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है।
1: और साथियों, आज का दूसरा प्रश्न है, जरा ध्यान से सुनिएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य की किरण

0: किस राज्य में पड़ती हैं?
1: तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब अभी हम आपको नहीं बताएंगे। आप अपने जवाब सोच कर रखिए और कार्यक्रम के अंत में देखिए कि आपके कितने जवाब सही निकलते हैं। चलिए, तब तक सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: सितंबर है और सितंबर की शुरुआत होती है एक ऐसे सप्ताह के साथ जो हमें याद दिलाता है कि अच्छी सेहत की शुरुआत सिर्फ दवाइयों से नहीं, हमारी थाली से होती है।
1: बिल्कुल ठीक तनुष्का, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि आज थोड़ा बाहर का कुछ फास्ट फूड खा लेते हैं, कल से थोड़ा सा हेल्दी खाना स्टार्ट कर देंगे।
0: हाँ राज, और वो जो कल होता है ना, वो धीरे धीरे अगला मंडे बन जाता है, फिर वो जो मंडे होता है वो अगला साल बन जाता है, और ऐसे ही वो कल कभी आता ही नहीं।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। इसलिए दोस्तों, आज से एक छोटा सा सवाल हम सभी के लिए, कि हमारी थाली सिर्फ पेट भर रही है या फिर हमारे शरीर की जरूरत भी पूरी कर रही है?
0: और इसी सवाल के साथ बात करते हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की। दोस्तों, भारत में हर साल 1 से 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में सही पोषण और संतुलित आहार के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और तनिष्का, कई लोगों को ये भ्रांति होती है कि पोषण का मतलब सिर्फ कम खाना या फिर डाइटिंग करना होता है।
0: हाँ,
1: ऐसा तो कतई नहीं है।
0: बिल्कुल दोस्तों, पोषण का सही मतलब है कि हमारे शरीर को उसकी ज़रूरत के अनुसार ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन और जितने भी फाइबर खनिज पदार्थ है वो मिले, और साथ ही पर्याप्त पानी भी मिले।
1: हाँ, यानी हेल्दी प्लेट का मतलब सिर्फ सैलेड तक सीमित नहीं है।
0: हाँ बिल्कुल नहीं, हमारी रोज़मर्रा की जो भारतीय थाली होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होती है। हम बहुत ज़्यादा लकी है कि हम भारत जैसे शहर में रहते हैं जहाँ का खान पान जो है वो बहुत ज़्यादा समृद्ध है, और भारतीय थाली उसी की एक मिसाल है, जिसमें दालें होती है, अनाज होता है, हरी सब्जियाँ होती है, और जो मौसमी फल होते हैं, दूध या उसके जो विकल्प मेवे और जो मिठाइयाँ हम खाते हैं, और ड्राई फ्रूट्स जिसमें रहते हैं, तो एक तरीके से ये सारी चीज़ें जो है वो संतुलन बनाए रखती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और एक और बहुत ज़रूरी बात है साथियों, हर व्यक्ति की न्यूट्रिशनल नीड्स एक जैसी कतई नहीं होती। उम्र, शारीरिक गतिविधि और जीवन की अलग अलग अवस्थाओं के अनुसार ज़रूरतें बदलती रहती हैं हर व्यक्ति की।
0: हाँ, और इसीलिए किसी दूसरे की डाइट को देखकर अपनी डाइट हमको तय नहीं करनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमारा शहर की मतलब हमारा जो शरीर है उसकी ज़रूरत क्या है, हमें ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है।
1: कई बार अनिष्का, हम जो जिम जाने वाले बंदे होते हैं ना, तो हम किसी किसी को देख के उसकी मतलब नकल सी कर लेते हैं कि मुझे इतना सुबह इतना खाना है, शाम को इतना खाना है। पर जैसा कि अभी हम सब ने कहा कि हर शरीर की, हर एक बॉडी की अलग अलग नीड्स होती है, तो मुझे लगता है ये उसी का एक अहम वो है कि हम उसको पहले जाने पहचाने, फिर अपने जीवन में उसको उतार लेता है कि हमको कितना खाना है, कितना व्यायाम भी करना है, सारी चीज़ें उसमें शामिल हो जाए। और साथ ही पोषण की बात हो तो बच्चों का पोषण खास तौर पर महत्वपूर्ण है। बचपन और किशोर अवस्था में सही पोषण उनके शारीरिक विकास, सीखने और ओवरऑल ग्रोथ के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों इस नेशनल न्यूट्रिशन वीक पर कोई बड़ा रेजोल्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटी सी शुरुआत कीजिए, थाली में वैरायटी बढ़ाइए,
1: फल और सब्जियों को रोज़ की डाइट का एक अहम हिस्सा बनाइए,
0: और पर्याप्त पानी ज़रूर
1: और
0: पीजिए।
1: साथ ही बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड सर्जरी और अत्यधिक नमक फूड्स को रोज़ की आदत बनाने से रोकिए।
0: क्योंकि पोषण कोई 7 दिन का चैलेंज नहीं होता है, ये तो रोज़ की ज़िंदगी का एक छोटा सा और ज़रूरी हिस्सा होता है।
1: बिल्कुल सही कहा साथियों। इसी छोटी सी सोच के साथ नेशनल न्यूट्रिशन वीक की शुरुआत कीजिए,
0: स्वस्थ
1: और
0: रहिए और
1: बिल्कुल
0: संतुलित खाना खाइए, और अपनी थाली को रंगीत बनाइए।
1: बिल्कुल फल और सब्जी से।
0: बिल्कुल, तो चलिए अब सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: मध्य प्रदेश जितना अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, उतना ही अपने समृद्ध इतिहास और संस्कृति विरासत के लिए भी प्रसिद्ध है। आज हमारे शहर सेगमेंट में हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश के धार जिले की ओर, एक ऐसी धरती जहां इतिहास की गूंज भी सुनाई देती है, लोक संस्कृति के रंग भी दिखाई देते हैं और साथियों प्रकृति की खूबसूरती भी मन मोह लेती है।
1: धार शहर धार जिले का प्रमुख नगर और ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। धार का इतिहास हमें मध्यकालीन भारत की अनेक घटनाओं से भी जोड़ता है।
0: श्रोताओं, ये क्षेत्र परमार वंश के शासनकाल में विशेष रूप से प्रसिद्ध हुआ। परमार शासन राजा भोज का नाम धार के इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है।
1: राजा भोज केवल एक शक्तिशाली शासक ही नहीं बल्कि कला, साहित्य, शिक्षा और स्थापत्य के महान संरक्षक के रूप में भी याद किए जाते हैं। धार की पहचान आज भी राजा भोज की विद्वता और उनके ज्ञान विज्ञान के प्रति समर्पण से जुड़ी हुई है।
0: और दोस्तों, अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो धार आपके लिए

0: किसी खुली किताब से कम नहीं है, एक ऐसी किताब जिसे आप खूब पढ़ सकते हैं। यहाँ के किले, पुरातात्विक स्थल और प्राचीन स्मारक बीते समय की कई कहानियाँ सब अपने भीतर समेटे हुए हैं।
1: धार का ऐतिहासिक किला शहर की प्रमुख पहचान में शामिल है। इस किले की स्थापत्य शैली और ऐतिहासिक महत्व इसे धार आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का एक केंद्र बनाता है।
0: किले की प्राचीरों को देखकर ऐसा महसूस होता है साथियों, जैसे इतिहास आज भी इन दीवारों के बीच अपनी कहानी सुना रहा हो। लेकिन धार की कहानी केवल एक किले तक सीमित नहीं है।
1: धार में स्थित भोजशाला भी लंबे समय से ऐतिहासिक और पुरातात्विक चर्चा का विषय रही है। इसका संबंध राजा भोज की विद्या और संस्कृत परंपरा से जोड़ा जाता है। धार की ऐतिहासिक पहचान को समझने में भोजशाला का विशेष स्थान है।
0: यहाँ का इतिहास हमें यह याद दिलाता है साथियों कि मध्य भारत की धरती पर कभी ज्ञान, साहित्य और शास्त्रार्थ की समृद्ध परंपराएं विकसित हुई हैं।
1: दोस्तों, अब बात करते हैं धार जिले के उस पर्यटन स्थल की जिसकी खूबसूरती की चर्चा देश भर में होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मांडू की। मांडू, जिसे मांडव भी कहा जाता है, विंध्य पर्वत क्षेत्र में बसा एक ऐतिहासिक नगर है।
0: ऊंची पहाड़ियाँ, हरियाली, प्राचीन महलों और किले और स्थापत्य कला के कारण मांडू का अपना एक अलग आकर्षण है। मांडू का नाम आते ही जहाज महल, हिंडोला महल, होशंग शाह का मकबरा और रानी रूपमती मंडप जैसे ऐतिहासिक स्थल की तस्वीर हूबहू हमारे आंखों के सामने आ जाती है।
1: बिल्कुल, और जहाज महल की बनावट इसे बेहद खास बनाती है। दो जलाशयों के बीच स्थित ये महल दूर से देखने पर पानी में तैरता हुआ जहाज जैसा दिखाई देता है।
0: सही कहा तुमने, वही रानी रूपमती मंडप से जुड़ी प्रेम और इतिहास की कथाएं मांडू को एक अलग भावनात्मक पहचान देती है। मांडू की खूबसूरती केवल उसकी इमारतों में नहीं है, बारिश के मौसम में पहाड़ियाँ हरियाली से ढक जाती हैं, बादल मांडू की पहाड़ियों को छूते हैं और गुजरते हैं और चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, तब इसकी सुंदरता देखते ही बनती है।

0: दोस्तों, हम बात कर रहे थे धार शहर की। तो जो धार जिला है ना, वो केवल ऐतिहासिक धरोहरों की भूमि नहीं है, यहाँ की जो लोक संस्कृति है वो भी बेहद समृद्ध है। धार के आसपास के क्षेत्रों में मालवी और निमाड़ी संस्कृति का प्रभाव बेहद देखने को मिलता है।
1: साथियों, लोकगीत, लोक नृत्य, पारंपरिक वाद्य और स्थानीय मेले यहाँ की सांस्कृतिक पहचान को जीवंत बनाए रखते हैं। जिले के जनजाति क्षेत्रों में भगोरिया जैसे पारंपरिक उत्सव विशेष आकर्षण का केंद्र रहते हैं।
0: हाँ, और भगोरिया केवल एक उत्सव नहीं बल्कि आदिवासी समाज की जीवन शैली, परंपरा और सामुदायिक संस्कृति की एक खूबसूरत अभिव्यक्ति है।
1: दोस्तों, रंग बिरंगे पारंपरिक परिधान, लोकगीतों की धुन और उत्सव का माहौल धार की सांस्कृतिक विविधता को बेहद खूबसूरत रूप दे देता है।
0: और इसी के साथ धार जिले की अर्थव्यवस्था में कृषि का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ किसान विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करते हैं और जिले के ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था काफी हद तक कृषि तथा उससे जुड़े व्यवसायों पर निर्भर है।
1: इसके साथ ही साथियों, धार जिले में उद्योग और व्यापार भी विकसित हुए हैं। पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र जिसे धार जिले की आर्थिक पहचान का एक महत्वपूर्ण अंग है।
0: बिल्कुल, पीथमपुर को मध्य प्रदेश के प्रमुख इंडस्ट्रियल एरियाज में गिना जाता है। यहाँ ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और अन्य इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से जुड़ी कई सारी चीजें होती है। इन औद्योगिक विकास के क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के कई सारे नए अवसर पैदा हुए हैं।
1: और साथियों, जब युवाणी में जब हम किसी जिले की बात करते हैं तो युवाओं की बात करना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। धार जिले के युवाओं के सामने आज शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाएं, तकनीकी शिक्षा, उद्योग, व्यवसाय और स्वरोजगार जैसे अनेक रास्ते मौजूद हैं।
0: बिल्कुल, और पीथमपुर जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज में युवाओं के लिए टेक्नोलॉजी और दूसरे कई इंडस्ट्रियल क्षेत्रों से जुड़े कई सारे अवसर भी मौजूद हैं।
1: और तनिष्का, पीतमपुर में इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं तो मैंने तो एक चीज़ ये भी देखी कि कई सारे युवा जो होते हैं हमारे शहर इंदौर के, देवास के या फिर अलग अलग जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से अप डाउन भी करते हैं। कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज भी वहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही उसी के साथ पर्यटन की दृष्टि से मांडू और आसपास के क्षेत्र स्थानीय युवाओं के लिए टूरिज्म, होटल मैनेजमेंट, गाइडिंग, फोटोग्राफी, लोक कला और डिजिटल कंटेंट जैसे क्षेत्र में भी संभावनाएं पैदा कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, और मुझे तो ये लगता है कि आज का युवा अगर अपनी स्थानीय संस्कृति और इतिहास को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ दे तो वो अपने क्षेत्र को देश दुनिया तक पहुँचाने में एक बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है।
1: सही कहा तुमने तनिष्का।

0: में ऐतिहासिक पर्यटन के साथ साथ साथियों प्राकृतिक पर्यटन की भी अच्छी संभावना है। मांडू की पहाड़ियाँ, बारिश के मौसम की हरियाली, घाटियों और प्राचीन स्थापत्य मिलाकर यहाँ को एक अनूठा पर्यटन स्थल बना देते हैं।
1: हाँ, और इसी के साथ ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम इन ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों को स्वच्छ रखें, पर्यावरण का सम्मान करें और अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखें।
0: वो तनिष्का, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, कई सारी ऐसी सिनेमा की फिल्में हैं जो मांडू के महल पर फिल्माई गई हैं, कई सारे गाने हैं। मतलब हम पुराने बॉलीवुड मूवी की बात करें या फिर अभी जरा हटके जरा बच की मूवी थी जिसमें विक्की कौशल भी थे, तो ऐसे कई सारी मूवीज हैं जिनके गाने, जिनके कई सारे सीन्स, और अभी तो वेब सीरीज का जमाना है तो कई सारी ऐसी वेब सीरीज, यूट्यूब की सीरीज हम सभी को मतलब पर्यटन की दृष्टि से देखने को मिल जाएंगी मूवीज में भी, मांडू की जो होती है। तो साथियों, विरासत सिर्फ पुरानी इमारतों तक सीमित नहीं होती है। विरासत तो पहचान है जो हमें हमारे अतीत से जोड़कर हमारे भविष्य की दिशा दिखाती है। दोस्तों, धार को केवल नक्शों पर मौजूद एक जिला समझना शायद हम सभी के लिए भूल हो सकता है। धार एक इतिहास की पहचान, राजा भोज की विद्या की एक स्मृति है।
1: मांडू की खूबसूरती, लोक संस्कृति के रंग, जनजातीय परंपराओं की जीवंतता और किसानों की मेहनत और युवाओं के सपनों का शहर है धार। यहाँ अतीत भी है और भविष्य की कई संभावनाएं भी है।
0: तो श्रोताओं, अगली बार जब आप मध्य प्रदेश के पर्यटन की योजना बनाएं तो इतिहास को करीब से महसूस करना चाहें या फिर अपने प्रदेश की विरासत के कुछ नज़रिए को देखना चाहें तो धार जिले की अपनी यात्रा सूची में उसको अंकित जरूर कर लें।
1: तो श्रोताओं, आज के हमारे शहर सेगमेंट में हमने जाना धार जिले के बारे में, इसके इतिहास, संस्कृति, पर्यटन, उद्योग और युवाओं के लिए इससे जुड़ी संभावनाओं के बारे में। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आइए सुन

0: अनिष्का, कभी तुम्हें लगा कि हम जो बोलते हैं वो सिर्फ आवाज नहीं होती? कभी कभी एक छोटी सी बात भी किसी का पूरा दिन बदल देती है।
1: बिल्कुल, कभी कोई छोटा सा कॉम्प्लीमेंट हमें दे देता है तो हमें कितना अच्छा लगता है ना। कोई जरा सा सिर्फ बोल दे कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही
0: हाँ
1: हो या ये काम तुमने बहुत अच्छा किया है, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, दिल खुश हो जाता है एकदम।
0: और दूसरी तरफ साथियों, कोई बिना सोचे समझे कुछ ऐसे शब्द बोल देता है जिससे पूरा दिमाग का एक दही घूम बन जाता है और दही पूरा दिमाग हमारा घूमने से लग जाता है।
1: बिल्कुल जी, ये जो शब्द होते हैं ना श्रोताओं, ये हमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन इनका जो असर होता है वो बहुत ज़्यादा गहरा होता है। और कई बार लोग बहुत कठोर बातें कर देते हैं और फिर कहते हैं कि वो तो बस सच बोल रहे हैं, लेकिन सच बोलने का तरीका भी जो होता है ना वो भी मायने रखता है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, फर्क हमेशा बात में नहीं होता साथियों, बोलने के तरीके में भी होता है। एक शब्द किसी का मन छोटा कर सकता है और वहीं किसी बात का हौसला भी बढ़ा सकता है, उसको उसका मन भी खुश कर सकता है।
1: और इसीलिए कबीर दास जी ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। यानी कि आपकी बोली ऐसी होनी चाहिए जिसमें अहंकार ना हो, जो दूसरों को सुकून दे और खुद के मन को भी शांति दे।
0: बिल्कुल ठीक, क्योंकि जब हम अच्छे शब्द बोलते हैं तो माहौल भी अच्छा हो जाता है साथियों, घर में, दोस्तों के बीच, ऑफिस में या फिर किसी भी स्थान पर।
1: और हमारे बड़े भी कहते हैं कि शब्दों में बहुत ताकत होती है, इसीलिए बोलो ऐसा कि सुनने वाले के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाए।
0: बिल्कुल सही, तो साथियों क्यों ना आज से एक छोटी सी शुरुआत करें, बोलने से पहले बस सोच लें कि मैं जो कहने जा रहा हूं क्या उससे किसी का मन दुखेगा तो नहीं, वो खुश तो होगा ना।
1: और अगर इसका जवाब हाँ है तो खुलकर बोलिए, मीठा बोलिए, प्यार से बोलिए, क्योंकि कभी-कभी एक प्यारा सा शब्द किसी का पूरा दिन सुंदर बना सकता है।
0: तो चलिए दोस्तों, आज अपनी बातों में थोड़ी सी मिठास घोलते हैं, क्योंकि मीठी बोलियां सिर्फ सुनने में अच्छी नहीं लगती, रिश्तों को भी और ज्यादा खूबसूरत बना देती हैं।
1: इसी के साथ आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आज इंटरनेट और सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया को हमारे हाथों में ला दिया है। ऐसे में युवा अपने शहर और प्रदेश की संस्कृति, कला, खान पान, पर्यटन और स्थानीय प्रतिभाओं को पूरी दुनिया तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
1: हाँ, और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो जैसा कि हमने आज बात की, मांडू की विरासत, साथ ही महेश्वर की संस्कृति, उज्जैन की पहचान और इंदौर का खान पान और मालवा की लोक कला जैसी कई चीजें हैं जिन्हें युवा डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए देश और दुनिया तक पहुंचा सकते हैं।
0: साथियों, मध्य प्रदेश में और हमारे शहर इंदौर में कई सारे ऐसे सोशल मीडिया साइट्स हैं, पेज हैं, जिनकी इंदौर की संस्कृति को वो ग्लोबल तक पहुंचा रहे हैं। जैसे हम गैर की बात कर लें, गैर एक फेस्टिवल होता है होली के समय, रंग पंचमी के समय, उसको आप फेस्टिवल को ग्लोबल लेवल तक देख सकते हैं। क्यों? इंस्टाग्राम के जरिए, फेसबुक के जरिए या फिर अलग अलग फोटोज ब्लॉग्स के जरिए, एक अच्छी रील, फोटो, ब्लॉग या फिर पॉडकास्ट किसी अनदेखी जगह या स्थानीय प्रतिभा को नई पहचान दे सकता है। साथियों,
1: लेकिन इसके लिए जरूरी ये होता है कि पहले हम अपनी जड़ों को जानें, अपनी संस्कृति पर गर्व करें और उसकी सही एवं सकारात्मक जानकारी जो है ये लोगों तक पहुंचाएं।
0: याद रखे साथियों, स्थानीय हमारी पहचान है और ग्लोबल हमारी पहचान। तो क्यों ना आज से हम अपने शहर की किसी खास कहानी को दुनिया तक पहुंचाने की एक छोटी सी शुरुआत करें।
1: चलिए, इसी खूबसूरत बात के साथ अब हम सुनते हैं खूबसूरत सा गीत।

0: दोस्तों अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उसके पहले शुरुआत में हमने जो आपसे दो सवाल किए थे उनके जवाब भी दे देते हैं। तो पहला सवाल था कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो इसका जवाब है सिक्किम की राजधानी गंगटोक। ये समुद्र तल से लगभग 16,050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
1: साथियों आज का दूसरा प्रश्न था कि भारत में सबसे पहले सूर्य की किरणें किस राज्य में पड़ती हैं। तो उसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। भारत के पूर्वोत्तर में स्थित अरुणाचल प्रदेश देश के सबसे पूर्वी हिस्सों में है, इसलिए यहाँ के देश के अन्य हिस्सों की तुलना में सूर्योदय पहले होता है। इसी वजह से इसे अक्सर लैंड ऑफ द राइजिंग सन भी कहा जाता है।
0: तो दोस्तों इसी के साथ अनुमति दीजिए तनिष्का
1: और अपने साथी राज को। नमस्कार।

0: तो श्रोताओं, ये था युवा साथियों का पसंदीदा प्रोग्राम युववाणी। आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम को आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से, और इसी तरह के बहुत सारे कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर आपके लिए लेकर आता है। तो बने रहिए आकाशवाणी इंदौर के साथ, और अब आनंद उठाइए फिल्म संगीत का।
1: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

अभी आप सुन रहे थे किसना फिल्म का गीत सुखविंदर सिंह, इस्माइल दरबार और इनके साथ साथियों की आवाज़ें इस गीत में आपने सुनी। बोल जावेद अख्तर ने लिखे थे और संगीत था इस्माइल दरबार का। आइए अब आपको सुनवाते हैं देवदास फिल्म का गीत, पंडित ब्रिजभूषण, कविता सुब्रमण्यम और माधुरी दीक्षित की आवाज़ों में ये गीत है। इस गीत को संगीत और गीत को लिखा है पंडित बिरजू महाराज ने। आइए सुनते हैं।

थाई शाम रोक लई रोक लई रोक लई थाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई गई गई सर से मोरी चुनरी गई सरक सरक।

दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच। आहट सुन, आहट सुन, आहट सुन, जियरा गयो धड़क धड़क धड़क धड़क धड़क।

और श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं सुरेश वाडकर की आवाज में ये खूबसूरत गीत, जिसे लिखा है गुलजार ने और ये संगीत है इलैया राज का। फिल्म का नाम है सदमा।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। शाम के ठीक 6 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का आज के उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आज एनसीईआरटी के स्थापना दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं विमलेश आप सबका स्वागत करती हूँ। नमस्कार
1: श्रोताओं, नमस्कार। आइए सुनते हैं पिछले सप्ताह दिए गए विषयों पर एक स्लोगन, जिसे भेजा है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू जी ने लिखा है।
2: रेडियो वाला जमाना अलग था, आवाज से रिश्ते जुड़ते थे। अब फोन वाला जमाना है, फोटो से लाइक जुड़ते हैं। फोन छोटा है जरूर, पर दुनिया बड़ी दिखाता है। अगर इसे विवेक से इस्तेमाल करें तो परायों को भी अपना बना देता है।
1: तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचारों और संदेशों के लिए। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी। अगला संदेश हमें मिला है गांव ढाणी, कुतुबपुर, जिला हांसी, हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी किरत अवाना। लिखते हैं,
2: जैसे कार्यक्रम ज्ञानवर्धन के साथ हमारी गौरवशाली विरासत और महान नायकों से परिचित कराने का सराहनीय प्रयास है। सादर धन्यवाद।
1: आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मार्मिक प्रेरक प्रसंग। तो विमलेश जी, करते हैं शुरुआत और बात करते हैं एक वीर बालक की जिसने देश की आजादी की लड़ाई में अपना अतुल्य योगदान दिया।
2: जी। श्रोताओ, आज हम जिस आजादी की हवा में खुलकर सांस ले रहे हैं, उसकी कीमत सिर्फ बड़े क्रांतिकारियों ने ही नहीं बल्कि देश के नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी चुकाई है। आज हम आपके लिए ओडिशा के ढेंकानाल के एक ऐसे ही बहादुर बालक बाजी राउत की गाथा लेकर आए हैं, जिसकी बहादुरी के आगे कहते हैं कि मौत भी छोटी पड़ गई थी।
1: श्रोताओ, बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को नीलकंठपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। उनकी माँ बहुत ही कठिन परिस्थितियों में परिवार

0: का पालन पोषण करती थी। बाजी नदी पर नाव चलाने का काम करते थे।
1: श्रोता मित्रों, बात है 11 अक्टूबर 1938 की। ढेंकानाल में अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन जोरों पर था। माहौल ये था कि क्या बड़े, क्या जवान, क्या बच्चे, सभी बड़ी सक्रियता से भाग ले रहे थे। स्थानीय प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। उनका एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी। अंग्रेजी सेना को जब इन गतिविधियों की भनक लगी तो वो पूरे दल बल के साथ वहां पहुंचे।
0: उन्होंने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू की, जिसमें कई लोग मारे गए।
1: जी,
0: वहां की मिट्टी शहीदों के रक्त से लाल हो गई। किसी को भी नहीं बख्शा गया और आंदोलन का क्रूरता पूर्वक दमन कर दिया गया। ये समाचार जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गया
1: और दूर दराज के गांवों से भी ग्रामीण आने लगे। भीड़ बढ़ने लगी, नारे लग रहे थे। अंग्रेज सिपाही निर्दोष गांव वालों पर गोलियां चलाने के बाद वहां से भागने की फिराक में थे, लेकिन उन्हें अपनी छावनी तक सुरक्षित पहुंचने के लिए ब्राह्मणी नदी पार करनी थी। वे नदी के घाट की ओर चल दिए।
0: नदी के घाट पर 12 साल का एक बच्चा बाजी राउत अपनी छोटी सी नाव की रखवाली कर रहा था।
1: जी,
0: वह प्रजामंडल का सदस्य था। उसे प्रजामंडल द्वारा सख्त निर्देश मिला था कि किसी भी अंग्रेज को नदी पार करने में कोई सहायता ना दें।
1: जी,
0: रात का समय था और भारी वर्षा हो रही थी।
1: अंधेरी रात और मूसलाधार वर्षा के बीच अंग्रेजों की फौज वहां आ पहुंची। मेजर ने चिल्लाकर बाजी को हुक्म दिया,
0: ए लड़के, अपनी नाव निकाल और हमें नदी के उस पार ले चल।
1: बाजी की जगह कोई और होता तो बंदूक देखकर डर जाता, लेकिन उस बच्चे की आंखों में घृणा और क्रोध के मानो अंगारे दहक रहे थे। उसने दो टूक जवाब दिया,
0: तुमने मेरे गांव वालों का खून बहाया है, मैं तुम्हें अपनी नाव छूने तक नहीं दूंगा।
1: अंग्रेज हैरान थे कि एक छोटे से बच्चे में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। मेजर ने बंदूक तानकर धमकाया, लेकिन बालक बाजी टस से मस नहीं हुआ। जब बाजी ने झुकने और उनकी बात मानने से साफ मना कर दिया तो एक अंग्रेज सिपाही ने अपनी बंदूक की बट से उसके सिर पर जोर से वार किया।
0: बाजी का सिर फट गया, खून की धार बह निकली, लेकिन वो एक इंच भी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी आखिरी सांस तक चिल्ला चिल्ला कर गांव वालों को सावधान करना शुरू किया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के लोग नदी की ओर आने लगे।
1: बौखलाए अंग्रेजों ने उस 12 साल के मासूम के सीने में संगीनें उतार दी और गोलियों से उसे छलनी कर दिया। बाजी राउत शहीद हो गए। लेकिन उस रात अंग्रेजों को नदी पार करने के लिए नाव नहीं मिली, उन्हें जान बचाने के लिए तैर कर भागना पड़ा।
0: जी हाँ श्रोताओ, शहीद भगत सिंह 23 साल के थे, खुदीराम बोस 18 साल के थे, लेकिन बाजी राउत सिर्फ 12 साल के थे। वो भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान सबसे कम उम्र के शहीद माने जाते हैं।
1: साथियों, आज के समय में हम 12 साल के बच्चों को छोटा और नादान समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बच्चे में असीमित क्षमता होती है। उस उम्र में इस बच्चे ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे दी थी। आज उमंग कार्यक्रम के द्वारा हम भारत के सभी शहीदों को श्रद्धा से स्मरण करते हुए नमन करते हैं।
0: जी हाँ, उमंग कार्यक्रम की ओर से उन सभी शहीदों को हमारा नमन। श्रोताओ, आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स PDF टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए। आपको वहाँ कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
0: तो श्रोताओ, अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न, नोट कर लीजिए। हमारा प्रश्न है, बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था?
0: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं कार्यक्रम माई नेम।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बड़े मनोरंजक तरीके से एक मक्खी के बारे में बताता है जो अपना नाम ही भूल जाती है। वो अलग अलग पशु पक्षियों के पास जाती है और अपना नाम पूछती है। अंत में उसे अपने नाम का पता चल जाता है, लेकिन कैसे, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में।
2: Once there was a little fly. One day he could not remember his name. He tried and tried to remember it, but it was of no use. He had forgotten his name. He asked an ant.

0: What do you hear? Can you recognize the sounds? Can you make these sounds? Note to the teacher. Help children find the meanings of their names as it is related to their identity.
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम माय नेम।
2: उस रात ऑफिस से निकलने में दुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो है, निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे, मुझे समझने में एक सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखना, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
3: थकान या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग।
4: ये कार्यक्रम 20वीं सदी के महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और अंतरिक्ष भौतिकी के क्षेत्र में उनके महान योगदानों का उल्लेख करता है, और साथ ही साथ दिव्यांगता से उनके जीवन पर्यंत संघर्ष की भी चर्चा करते हुए संदेश देता है कि दिव्यांगता शरीर से कहीं अधिक मन में होती है।
5: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
6: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
5: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
6: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक

0: विज्ञानी एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
0: 1942 ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
0: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
1: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सटेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ১৯৮৫ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।

0: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
1: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
0: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
2: प्रोफेसर डेनिस
3: जी,
2: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
3: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
2: ओह।
3: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
2: ये तो बड़ी दिलचस्प बात है, वाह, अति सुंदर। और शायद धीरे धीरे इसी भाषा और शब्द संग्रह ने एक धारा प्रवाह वैज्ञानिक भाषा का रूप ले लिया होगा।
3: बिल्कुल ठीक। और फिर उन शब्दों की ध्वनि को मानवीय आवाज में रिकॉर्ड करके हमने स्पीच सिंथेसाइजर में संग्रहित कर लिया।
2: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
3: जी।
2: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
3: तो लीजिए सुनिए।
4: टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड द आउटलुक फॉर द डिसेबल्ड। पीपल लाइक मी कैन नाउ मूव अराउंड इंडिपेंडेंटली एंड दे कैन कम्युनिकेट।
0: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
1: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
0: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
1: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
5: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
0: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
1: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
6: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं, जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।

0: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
1: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
2: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
3: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
0: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
2: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहां स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
0: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए दीजिए आज्ञा।
4: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम NCERT उमंग। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। आज की कलाकार हैं आशा भोसले।

श्रोताओं, सुगम संगीत का कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। आज की हमारी कलाकार हैं आशा भोसले। आप इनके स्वर में सुन रहे हैं कुछ गजलें, और अब आइए सुनते हैं कातिल शफाई का कलाम।

श्रोताओं, सुगम संगीत में आप सुन रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में कुछ गज़लें। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम पेशकश।

0: और अभी आपने सुना कमर जलालाबादी का हलाम। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज हमने आपको आशा भोसले की आवाज़ में कुछ गज़लें सुनवाई।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। शाम के 6:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत। कलाकार हैं तारा मिश्रा और इनके साथी।

श्रोताओं, तारा मिश्रा और साथियों की आवाज़ में आप सुन रहे हैं लोकगीत। लोकगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं इन्हीं की आवाज़ में अगला लोकगीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के इंदौर केंद्र के साथ आप हैं और आप आनंद ले रहे हैं लोक गीतों का। आज हम आपको तारा मिश्रा की आवाज़ में कुछ लोक गीत सुनवा रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम पेशकश।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हमने आपको तारा मिश्रा के स्वर में कुछ लोकगीत सुनवाए। इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। शाम के 7 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया समाचारों के लिए प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
2: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे के संबंध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को बंद करने और जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम में दर्ज प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन में उपक्रमों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। रक्षा मंत्री ने उपक्रमों से बदलते परिदृश्यों के बीच रक्षा तैयारियों को बढ़ाने के लिए अगले 5 वर्षों की रूपरेखा तैयार करने को कहा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। इसका मुख्य उद्देश्य देश के चिन्हित 100 जिलों में योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाना, विभिन्न योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करना और जिला स्तर पर बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करना है, ताकि किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सके। सरकार ने चीनी और प्याज

की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत ने वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर बल दिया है। कनाडा में हिंदू विश्व बंधु कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दुनिया की विभिन्न भाषाओं, परंपराओं और उपासना पद्धतियों का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि ये विविधता ही हमारी एकता का आधार है। अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में मौका मिला है। श्रृंखला का पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा 15 और तीसरा 17 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:30 पर आप सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम, जिसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। 7:08 आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। ये कार्यक्रम भी आप हमारे भोपाल केंद्र से ही सुनेंगे। 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। 9:15 पर चित्र गीत प्रसारित किया जाएगा। 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम कहकशा हमारे भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होगा। आपको बता दें, रात्रि 10:00 आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित प्रोग्राम मन भावन, और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे पंडित गोकुलदास जी महाराज का गाया राग यमन। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम, और आइए अब आपको जानकारी देते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। श्रोताओं, कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना। 6:30 पर आप सुनेंगे चिंतन। 6:35 पर खेती की बातों में विषय होगा जल संरक्षण। 6:40 पर श्री रामचरित मानस गान का कल का संगीतमय पाठ होगा। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपका पत्र। श्रोताओं, 8:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत, ये उद्घोषक का अपना कार्यक्रम होता है। सुबह 9:00 सुनिएगा लोक संगीत। लोक संगीत की कलाकार होंगी शोभा राम और इनके साथी, इन्हीं के गाए लोकगीत आप सुन सकते हैं शाम 6:45 पर। 9:15 का समय होगा सुगम संगीत का। कल हम आपको सुनवाएंगे अनीता उपाध्याय के गाए कुछ सुगम गीत, इन्हीं के गाए सुगम गीत आप सुन सकते हैं शाम 6:30 पर। 9:30 का समय है शास्त्रीय संगीत का। शास्त्रीय संगीत में कल सुबह सुनिए अब्दुल हमीद द्वारा वायलिन पर बजाया गया राग नट भैरव। सुबह 10:00 जिले की चिट्ठी हमारे भोपाल केंद्र से प्रसारित होगी। 10:05 पर सुनिए फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। दिन में 11:00 से हमारे भोपाल केंद्र से कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में आप सबसे पहले सुनेंगे फोन करें गीत सुने। 12:00 फिल्म संगीत। 12:30 पर संग्रहालय से। दिन में 1:00 महिला कार्यक्रम। 1:30 पर लोक संगीत। 1:45 पर सुगम संगीत। 2:00 फिल्म संगीत और 2:30 पर आप सुनेंगे

चित्रपट संगीत। श्रोताओं, हमारी शाम की सभा आरंभ होती है शाम 5 बजे। इस सभा में सबसे पहले युवा साथियों का पसंदीदा प्रोग्राम होगा युववाणी। कल के क्रम में सुनिएगा एक ही फिल्म से। 5:45 पर फिल्म संगीत। शाम 6 बजे NCERT प्रायोजित कार्यक्रम होगा। 7:20 पर आप सुनेंगे ग्राम लक्ष्मी। रात्रि 8 बजे सुनिएगा सुर्खियों में। 8:15 पर दिल ने फिर याद किया। 9:15 पर आप सुनेंगे चित्र गीत। श्रोताओं, 9:30 पर चर्चा का विषय है कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे नाटक में कहानी अतीत का स्वप्न नगर। और रात्रि 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित कुमार गंधर्व का गाया राग बहार। तो ये थे कल के कार्यक्रम। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, आज के शेष और कल के कार्यक्रमों का। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। शाम के 7:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे भोपाल केंद्र से। कृपया समाचारों के लिए कुछ क्षणों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है। आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला? मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
1: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
2: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मुद्दे से जुड़े छात्र प्रदर्शनों की सभी प्राथमिकी बंद करने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन में आतंकवाद को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रदेश मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के विकास से जुड़े करीब 41,000 करोड़ रूपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी। और प्रदेश में अगले 4 दिन तक भारी बारिश की संभावना, उमरिया और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे के संबंध में छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी बंद करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने इन मामलों में आगे जांच न करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम के दायर आवेदनों में उल्लेखित छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी प्राथमिकियां भी रद्द कर दी हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जय मौल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को मिली विशेष शक्तियों के तहत ये आदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की 26वीं बैठक में भाग लिया। शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सभी सदस्य देशों से आतंकवाद के वित्त पोषण, भर्ती, कट्टरपंथ और उनके सुरक्षित ठिकानों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आतंकवाद से निपटने में दोहरे मानदंडों के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने जोर देकर कहा कि युद्ध और संघर्ष किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और सभी विवादों को केवल बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से ही सुलझाना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास और बुनियादी ढांचे के लिए करीब 41,000 करोड़ रूपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री

0: राकेश सिंह ने बताया कि वीवी जीराम जी योजना के लिए 29,619 करोड़, डेयरी विकास के लिए 2,973 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं भोपाल, उज्जैन और जबलपुर में नए प्रौद्योगिकी एवं कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है। इसके साथ ही श्री सिंह ने बताया कि नवगठित जिलों में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कार्यालयों के लिए पदों की संख्या बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है।
1: सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत जो नवगठित जिले हैं उनमें अमले की स्वीकृति भी आज हुई है। 2023 में महुगंज, मैहर और पांडुर्ना इन जिलों का गठन हुआ था और अभी वहां पर सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के कार्यालय संचालित नहीं है, तो वो भी अब संचालित होंगे और इन तीनों जिलों में कुल मिलाकर 15 पद कार्यालय के लिए और चतुर्थ श्रेणी के दो दो पद प्रति जिला, ये भी इसकी स्वीकृति हुई है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। अप्रैल से जून 2026 की तिमाही में देश की जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही, जो गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ने शानदार प्रदर्शन किया है और जनकल्याणकारी योजनाओं से आर्थिक समृद्धि को गति मिल रही है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल में प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदेश के लगभग 1,22,000 मेधावी विद्यार्थियों के खातों में लैपटॉप खरीदने के लिए 304 करोड़ 98 लाख रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित की। प्रत्येक पात्र विद्यार्थी को 25,000 रुपए प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से सफलता में विनम्र रहने और असफलता से सीखकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। ग्वालियर में कल बलराम जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय किसान समागम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मेला मैदान में तैयारियां तेज हैं। किसानों के लिए कृषि प्रदर्शनी, पेयजल और विशेष सेवा काउंटर की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा और यातायात के भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज शिवपुरी में अमृत भारत रेलवे स्टेशन और पोहरी रेलवे ब्रिज का निरीक्षण किया। उन्होंने यात्री सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्री सिंधिया ने कहा कि आधुनिक रेलवे स्टेशन और ब्रिज से शिवपुरी में रेल कनेक्टिविटी, व्यापार, पर्यटन और आवागमन को मजबूती मिलेगी। इससे पहले उन्होंने अनुसूचित जाति के 50 सीटर प्री मैट्रिक बालक छात्रावास का लोकार्पण और विभिन्न सड़कों के निर्माण का भूमि पूजन भी किया।
3: 13,000 स्क्वायर फुट का ये 50 सीटर हॉस्टल सबसे विकट समस्या मेरे बच्चों के लिए होती है, आदिवासी समाज के, अनुसूचित जाति समाज। गांव से आते हैं, शहर में रहने के लिए जगह नहीं होता और उसके वजह से पढ़ाई छूट जाती है। संवेदनशील सरकार ने एक ऐसी योजना निर्धारित की है जिसके आधार पर आपके लिए रहने का जगह आपके घर की तरह हो। आपके प्राचार्य, आपके शिक्षक घर के माता पिता के रूप के हो।
0: देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सुरक्षित भंडार से प्याज बाजार में भेजना शुरू कर दिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने आज मंत्रालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संचालित 106 छात्रावासों में 8 सितंबर से मेस का संचालन अनिवार्य रूप से शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यार्थियों को पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन समय पर उपलब्ध कराने पर जोर दिया। इसके साथ ही विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना का पोर्टल साल भर खुला रखने और हर 3 माह में साक्षात्कार आयोजित करने के निर्देश दिए। अब करते हैं मौसम का। प्रदेश में अगले 4 दिन भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने उमरिया और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि सतना, रीवा, पन्ना, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, कटनी, मैहर, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, जबलपुर, मंडला, सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं खेल की खबर में भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है। श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया है, जबकि वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में जगह मिली है। संजू सैमसन और ईशान किशन विकेटकीपर होंगे। सीरीज का पहला मुकाबला 13 सितंबर को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार।

चार संक्षेप में। देवास जिले के खातेगांव में 5 सितंबर को विकासखंड स्तरीय गैर आवासीय प्रशिक्षण का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। सीहोर के आष्टा के सांदीपनी विद्यालय में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय ने बीए प्रथम वर्ष की मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। नीमच जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव ने कल जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को तत्काल एवं आवश्यक उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। गुना कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में आवेदनों के परीक्षण के बाद रेडक्रॉस के माध्यम से जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। शहडोल के बिरसा मुंडा शासकीय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस पहले राउंड की काउंसलिंग 3 सितंबर तक संचालित होगी। झाबुआ में आयोजित एनकोड और जिला स्तरीय नशा मुक्ति समिति की बैठक में ड्रग फ्री झाबुआ के लिए वर्ष 2026-29 का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की चर्चा की गई। अलीराजपुर कलेक्टर ने जानकारी दी है कि 85 गांवों के खेतों में नर्मदा का पानी छोड़ा जाएगा। राजगढ़ में सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों का सम्मान समारोह 2 सितंबर यानी कल कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया जाएगा। और धार वन विभाग की टीम ने लगभग 3 टन अवैध खैर लकड़ी और परिवहन में प्रयुक्त वाहन को जब्त किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मुद्दे से जुड़े छात्र प्रदर्शनों की सभी प्राथमिकी बंद करने का आदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन में आतंकवाद को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रदेश मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के विकास से जुड़े करीब 41,000 करोड़ रूपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी। और प्रदेश में अगले 4 दिन तक भारी बारिश की संभावना, उमरिया और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सभी को हमारी राम राम। आज हम जिस योजना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उस योजना का नाम है कृषि यंत्रीकरण योजना। ऐसे तो हमारी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं किसानों की सुविधाओं के लिए, जिससे किसान अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर सके, लेकिन कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो किसानों को और भी आधुनिक तरीके से खेती करना सिखाती है और उसमें उनकी बहुत मदद करती है। ऐसी ही एक योजना है कृषि यंत्रीकरण योजना। तो आइए इस योजना के बारे में जानते हैं। किसान भाइयों, ये जो योजना है वो आधुनिक कृषि मशीनों और उपकरणों की पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य खेतों को अधिक समयबद्ध, श्रम कुशल और उत्पादन

0: और लागत प्रभावी बनाना है। कृषि यंत्रीकरण का अर्थ है खेती के विभिन्न कार्यों जैसे जुताई, बुआई, रोपाई, निराई, गुड़ाई, सिंचाई, कटाई, फसल अवशेष प्रबंधन में उपयुक्त मशीनों और तकनीक का उपयोग करना। इस योजना के अंतर्गत किसानों को कृषि मशीनरी खरीदने में वित्तीय सहायता और मशीनों को किराए पर उपलब्ध कराने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर्स और फार्म मशीनरी बैंक जैसी व्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया जाता है। इस योजना के उद्देश्य ये है कि खेती में श्रम और समय की बचत होती है, इससे कृषि कार्यों की उत्पादकता और दक्षता बढ़ती है। जो किसान व्यक्तिगत रूप से मशीन खरीद नहीं सकते हैं, वो किराए पर कृषि मशीन को उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्राप्त कर सकते हैं। फसल की उत्पादन, कटाई के बाद की प्रक्रिया और फसल अवशेष प्रबंधन में उपयुक्त तकनीक को बढ़ावा भी इस योजना के अंतर्गत दिया जाता है। अब आप ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी मशीनें इस योजना के अंतर्गत जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं, तो वो उपकरणों के नाम है ट्रैक्टर और उसके उपकरण, सीड ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, रोटावेटर, रीपर और हार्वेस्टर, पावर वीडर, थ्रेशर, धान, अन्य फसलों की रोपाई से संबंधित मशीनें, फसल अवशेष प्रबंधन के उपकरण, बागवानी और कटाई के बाद उपयोग होने वाले उपकरण। तो ये सारे उपकरण जो है वो इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ये सहायता आपको कैसे मिलेगी, ये हम आपको इस अंतराल के बाद बताते हैं।
1: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
2: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
0: किसान भाइयों, अंतराल से पहले हम बात कर रहे थे कृषि यंत्रीकरण योजना के बारे में। तो आपको ये अनुदान कैसे मिल सकता है? योजना में पात्र किसानों को निर्धारित कृषि मशीनरी पर वित्तीय सहायता या अनुदान दिया जाता है। सहायता की दर और इसकी अधिकतम सीमा मशीन के प्रकार और लाभार्थी की श्रेणी के अनुसार अलग हो सकती है, इसलिए पुराने वर्षों की निश्चित प्रतिशत राशि को वर्तमान अनुदान मानना उचित नहीं है। वर्तमान दर संबंधित राज्य और वर्ष के पोर्टल पर देखनी चाहिए, यानी आप ऑनलाइन अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये जानकारी पूरी मिल जाएगी। ये आप DBT के पोर्टल पर देख सकते हैं। छोटे किसानों के लिए ये बहुत ही विशेष महत्व है इस योजना का, क्योंकि छोटे किसान महंगी मशीन व्यक्तिगत रूप से नहीं खरीद पाते, तो इस योजना के अंतर्गत आप जो है मशीन को किराए पर ले सकते हैं और इस प्रक्रिया को DBT के पोर्टल पर संपन्न किया जा सकता है। ये प्रक्रिया जब आप DBT के पोर्टल पर जाएंगे तो आपको उसमें पूरी जानकारी एक के बाद एक दी जाएगी और ऑनलाइन आप इसका आवेदन कर सकते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश के जो किसान हैं उनके लिए ये योजना जो है वो कृषि यंत्रों के लिए ई कृषि अनुदान यानी DBT व्यवस्था संचालित करता है। MP पोर्टल पर आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया है और कुछ मामलों में धरोहर राशि जमा करने की शर्त दी गई है और लॉटरी से पहले भुगतान की पुष्टि आवश्यक हो सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप ये मशीन लेना चाहते हैं तो आपको कुछ इसमें भुगतान देना पड़ सकता है। ये पूरी जानकारी आप MP के जो MP का पोर्टल है उस पर जाकर वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी विशेष बात यह है कि अनुदान की राशि, पात्रता, उपलब्ध यंत्र और आवेदन की तारीखें समय समय पर बदल सकती हैं, तो इसलिए पुरानी जो सूचनाएं हैं उससे आप सारी जानकारियां जो हैं उससे ना उसको साझा करें, बल्कि नई जानकारी ऑनलाइन जाकर और राज्य के वर्तमान पोर्टल पर ये जानकारी देखनी चाहिए, जिससे आपको सही जानकारी इस विषय की मिल सके। और किसान भाइयों से ये कहना चाहेंगे कि अब कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाणी। तो किसानवाणी कार्यक्रम सुनने के लिए बस कुछ क्षणों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आइए आपको अब लिए चलते हैं अपने भोपाल केंद्र, जहां आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए कार्यक्रम किसान वाणी।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी,

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम किसान
1: वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार,
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।

0: आज की किसान वाणी कार्यक्रम की शुरुआत हम यही नौने संदेश के साथ कर रहे हैं। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैया बहनों को मनोज सक्सेना की दो हाथ जोड़े की राम राम पहुँचे। भैया, पानी छेकबो मतलब के वाटर हार्वेस्टिंग करबो, मतलब के बरसात के पानी को जमीन में उतार के धरती के जल स्तर को बढ़ाने, तभी तो हम अच्छी खेती कर पाएंगे। कहते हैं ना, खेती की कल्पना बिना पानी के करी नहीं जा सकत। तो भैया, अच्छी खेती करबे के लाने पानी को बचावो जरूरी है, पानी को हार्वेस्टिंग करबो जरूरी है, पानी को धरती में उतारबो जरूरी है। और भैया, किसानों को आत्मनिर्भर बनाबे के लाने, किसानों को समृद्ध करबे के लाने सरकार लगातार प्रयास कर रही है, और भारत को दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाबे के लाने भी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। दलहन, हाँ भैया, दाल हमारे भोजन की थाली को सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे दाल हमें प्रोटीन देते हैं ना, वैसे ही दलहनी फसलें भी खेत की मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। मनो फिर भी हम किसान भैया देश में कम दाल उगा रहे हैं, और जय मध्य हमारे देश के लाने पूरी दाल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, सो जा मध्य दूसरे देशों से हमें दाल बुलाने पड़ रही है। भारत को दाल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनावे खा और किसानों की आय बढ़ावे के लाजे केंद्र सरकार ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करो है। सन 2025-26 से 2030-31 तक माने 6 सालों के लाने 11,440 करोड़ रुपया को प्रावधान है, और लक्ष्य है दाल को उत्पादन बढ़ा के 350 लाख टन करो जाए। भैया हरो, जा मिशन में खास तौर पे तुअर मतलब अरहर, उड़द और मसूर पे जोर दव गव है। किसानों को बम्पर पैदावार मिले, एक इलाने बदलते मौसम में अच्छी फरवरी किस्मों के बीज किसानों को बांटे जा रहे हैं। लगभग 88,000 किट फ्री में किसानों को दी जा रही है। तो आप भी जा मिशन को हिस्सा बनो और दलहन उत्पादन से जुड़ो, अपने खेतों में भरपूर दालें लगाओ। और हाँ, ध्यान रखो, जितनी भी दाल आप उगे हो, पूरी की पूरी दाल मतलब 100% खरीदी सरकार करेगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ध्यान दो, अरहर और तुअर को वर्ष 2026-27 को समर्थन मूल्य 8,450 रुपया है, उड़द को समर्थन मूल्य 8,200 रुपया है, और मसूर को समर्थन मूल्य 7,000 रुपया प्रति क्विंटल घोषित करो जा चुको है। तो हम सब किसान भाइयों को मिलके दलहन उत्पादन की तरफ चलने हैं। दलहन उगाएं, मिट्टी बचाएं, किसान की आय बढ़ाएं और भारत को दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएं। भैया, जैसे हमने बात करी समर्थन मूल्य की, मंडी में अनाज विक्रय करबे के लाने सरकार ने एक नई व्यवस्था शुरू करी है, ई नाम, जेखो राष्ट्रीय कृषि बाजार भी कहते हैं। तो भैया, एक हम आपके लाने स्थल रिकॉर्डिंग पे आधारित जब बातचीत सुनवा रहे हैं, जो मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड यानी मंडी बोर्ड के अधिकारियों, मंडी सचिव और किसानों के साथ बैठ के आनंद कृष्ण वर्मा ने करी है। आप एक सुनो और आप भी ई नाम योजना को हिस्सा बनो।
1: किसान भाइयों बहनों, किसानों के सामने हमेशा एक समस्या रही है, हमेशा एक प्रश्न उनके सामने उठता था कि उपज को कहाँ ऐसी जगह पर बेच सकें जहाँ उनकी उपज का अधिक से अधिक अच्छा मूल्य मिल सके, उनकी मेहनत को अच्छा प्रतिफल मिल सके। केंद्र सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना शुरू करी है, ई नाम, इसका मतलब है ई राष्ट्रीय कृषि बाजार। इन्हीं बातों को लेकर के हमने कुछ लोगों से बात करी।
2: इस समय मेरे साथ में हैं श्री एस के कुमरे साहब, जो कि संयुक्त संचालक हैं कृषि विपणन बोर्ड में। कुमरे साहब, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि ये राष्ट्रीय कृषि बाजार होता क्या है और इससे किसानों को किस प्रकार का फायदा मिलता है।
3: किसान भाइयों, भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया ई नेम मतलब राष्ट्रीय कृषि बाजार पूरे देश की मंडियों को जोड़ने वाला एक सरकारी प्लेटफार्म है। ई प्लेटफार्म इसे कहते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग इसमें होती है। इसमें आपकी फसल की बोली सिर्फ आपकी स्थानीय मंडी के व्यापारी नहीं, बल्कि पूरे देश के व्यापारी ऑनलाइन इसी ई प्लेटफार्म के माध्यम से लगाते हैं
1: जी।
3: और जिसमें कंपटीशन ज़्यादा रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा दाम आपको मिलेगा आपकी फसल को ई प्लेटफार्म के माध्यम से बेच दिया जाएगा, जिसमें आपको अधिक से अधिक दाम प्राप्त होंगे।
1: तो ये तो आपने अच्छी चीज़ बताई कि पूरे देश भर की जो मंडियां हैं, देश भर की मंडियों से हम जुड़ जाएंगे और देश भर की मंडियों में जहां सबसे ज़्यादा दाम मिल रहा होगा वहां पर हम अपनी फसल को बेच सकते हैं। ये इसके लिए हमें करना क्या होगा?
3: इसके लिए आप अपने पास की जो भी मंडी है वहाँ जाकर मंडी के नोडल अधिकारियों जो नियुक्त हैं उसमें मुफ्त में आप पंजीकरण करवा सकते हैं
1: जी।
3: अपने मोबाइल पर ई नेम ऐप डाउनलोड करके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं
1: जी। तो आपने ये बताया कि हम देश भर की सारी मंडियों से हम जुड़ सकते हैं, तो क्या हमें अपनी फसल बेचने के लिए किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा क्या?
3: नहीं नहीं, ये बिल्कुल आवश्यकता नहीं है दूसरे राज्य में जाने की। आपको अपनी फसल पहले की तरह पास की मंडी में ही लाना होगा
1: जी।
3: बस उसकी बोली इंटरनेट जो ई प्लेटफार्म है हमारा ई नेम का, इसके जरिए अलग अलग राज्यों के व्यापारी इसमें जुड़े रहते हैं
1: जी।
3: और वहां से वो ऑनलाइन जो है बोली लगाकर आपकी फसल खरीद सकते हैं
1: जी। तो व्यापारी फसल को देखे बिना सही दाम कैसे तय करेगा?
3: क्या होता है कि ऑनलाइन में हमारे यहाँ जो ई प्लेटफार्म में एसेइंग की व्यवस्था है, जो डिस्प्ले लगे हुए हैं
1: जी,
3: जिसमें सैंपलिंग वगैरह करके जो है डिस्प्ले के माध्यम से
1: अच्छा
3: हाँ व्यापारियों तक जो है

0: है
1: जी
0: तो इसमें कंपटीशन रहती है।
1: जी जी
0: किसान तभी स्वीकृत कर अपने बोली जो लगी हुई है उसको, जो उच्चतम बोली होगा उसी को ही स्वीकार करेगा। अगर नहीं करना है तो आप लिख सकते हैं कि इस रेट पर मैं नहीं बेच पाता हूँ, ये बता सकते हैं किसान।
1: मतलब अपनी मर्जी है, हमें बेचना है तो हम बेचेंगे उस रेट पर, नहीं बेचना है तो नहीं
0: बेचना तो नहीं बेचेंगे।
1: अच्छा, हमने मान लीजिए फसल हमारी किसी व्यापारी को पसंद आ गई, हमें उसकी रेट हमें भी स्वीकार हो गई, तो हमारी फसल जब सेल हो जाती है, बिक जाती है, तो उसके बाद में हमें पैसा जो पेमेंट है वो कैसे मिलेगा?
0: पैसा जो है RTGS के माध्यम से जो है आपके सीधे बैंक खाते में चला जाएगा
1: जी। मतलब मंडी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी?
0: नहीं, इसमें मंडी में चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की व्यवस्था इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से है।
1: जी जी जी। सर ये बताएं कि जो भुगतान होता है उसमें कितना समय लग जाता है?
0: हमारे यहाँ चूंकि ये व्यवस्था और भी पहले जो मैनुअल हुआ करता था उसमें तो ऐसा कि नगद तुरंत होता था, इसमें तो तत्काल होगा
1: जी,
0: तत्काल भुगतान की व्यवस्था है इसमें।
1: अच्छा,
0: इसके मतलब बाद ही जो है भुगतान के बाद ही जो है कृषि उपज जो है मंडी से बाहर जा पाएगी।
1: बाहर जाएगी। अच्छा कुमरे साहब, अब हमें ये बताएं कि किन चीज़ों का हमारे किसान भाई विशेष रूप से ध्यान रखें जिससे कि ये काम वो अच्छे तरीके से कर सकें और ई नाम का अधिक से अधिक और अच्छे से अच्छा फायदा वो उठा सकें। अच्छा, एक सवाल ये और है जो कि जब ई नाम इतनी सारी व्यवस्थाएं दे रहा है, इतनी सारी सुविधाएं दे रहा है, तो इसका इस्तेमाल करने के लिए कोई फीस लगती है, कुछ इसके चार्ज लगता है?
0: नहीं, इसमें किसानों के लिए ई नाम पोर्टल पर पंजीकरण और फसल बेचने की सेवा जो है पूरी तरह से निःशुल्क है।
1: या फसल बिकने पर कोई कमीशन वगैरह?
0: नहीं, इसमें इस तरह की कोई भी कमीशन की व्यवस्था नहीं है और ये किसानों के लिए बहुत ही पारदर्शी और सरलतम विक्रय की योजना है। और इसके अलावा भी आपको जानकारी जो है टोल फ्री नंबर है
1: जी
0: 1800-270-0224, इसमें कॉल करके अपनी भाषा में जानकारी ले सकते हैं
1: जी। तो कुमरे साहब, आपने ई नाम के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे किसानों के लिए आपने उपलब्ध कराई हैं, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ई नाम के ऐप के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे साथ में है प्रत्याशा शर्मा जी जो मंडी बोर्ड में पदस्थ हैं और इनको काफ़ी जानकारी है तकनीकी किस्म की। तो प्रत्याशा जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
1: प्रत्याशा जी, ई नाम का जो ऐप है उस ऐप के बारे में अभी जानकारी मिली, तो ये ऐप किस तरह से हमारे किसान भाई अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और उसको उसमें किस तरीके से काम करना होता है, इसके बारे में जानकारी दें।
2: जो इनाम ऐप है उसको डाउनलोड करना और उसको ऑपरेट करने का बहुत ही आसान तरीका है। इनाम अगर आप एक स्मार्टफोन चलाते हैं, आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं या एप्पल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो वो दोनों में अवेलेबल है। आप एंड्रॉयड में भी कर सकते हैं या उसे एप्पल iOS सिस्टम में भी ले सकते हैं। और इनाम ऐप डाउनलोड करने के मात्र 5 तरीके हैं, 5 स्टेप्स आप इजीली उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप सबसे पहले ऐप डाउनलोड कैसे करेंगे, आप अपने स्मार्टफोन के गूगल प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करें, अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर खोलें, सर्च बार में इनाम टाइप करें और आधिकारिक ऐप पहचान कर इंस्टॉल पर क्लिक करें। आधिकारिक आप कैसे जानेंगे, उसमें वहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर कंसोर्टियम। ऐप डाउनलोड होने के बाद आप उसे ओपन करें, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में आप जाएंगे, उसमें आप उसमें भाषा और रजिस्ट्रेशन ऑप्शन चुनेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि इनाम इंटर स्टेट इंटर मंडी सबके लिए बना हुआ है, तो एक ये बहुभाषीय ऐप है। अच्छा। तो आप अपनी ऐप को खोलकर उसमें अपनी भाषा चुन सकते हैं। हम मध्य प्रदेश के परिपाटी में हम इंग्लिश हिंदी जो चुनना चाहें हम हिंदी चुनेंगे। फिर हम स्क्रीन पर जब देख रहे हैं तो वहाँ पे एक जगह आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन लिखा आ रहा है या जिसे हम पंजीकरण भी बोलते हैं, उस पंजीकरण बटन पर आप क्लिक करिए। फिर रजिस्ट्रेशन में आप जो विकल्प, आप एज अ ट्रेडर व्यापारी या एज अ फार्मर या आप एक FPO की तरह भी खुद को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो आप उसमें अगर एक किसान है तो किसान भाई उसमें अपना फार्मर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तीसरा स्टेप ये है जिसमें हमें हमारी जो बेसिक या मूलभूत जो जानकारी है वो दर्ज करना है, जिसमें ये जानकारी आपको बिल्कुल सही भरना है, जिसमें आप अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, आपका जेंडर और आपका जो भी पता है आप जहाँ से भी हैं उसकी जानकारी आप दर्ज करेंगे। फिर हम उसमें अपना राज्य, जिला, पास की इनाम मंडी, अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरे पास कौन सी मंडी है तो उसका एक और ऑप्शन अवेलेबल है, आप उसमें अपने 100 किलोमीटर के रेडियस में अपनी मंडी भी देख सकते हैं कि मैं मुझे कौन सी मंडी बहुत ज़्यादा पास पड़ेगी, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर चौथा स्टेप जो है जो सबसे महत्वपूर्ण भी है, इसमें आप अपना बैंक खाता और अपना दस्तावेज अपलोड करेंगे। बैंक विवरण में आप अपना बैंक खाता नंबर, और आपका IFSC कोड जो आपको बिल्कुल सही सही भरना है। फिर आप अपने दस्तावेज में क्या आप अपना आधार कार्ड,

0: बैंक पासबुक की फ़ोटो और पहचान प्रमाण पत्र की फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हैं। फिर आखिरी स्टेप जो बहुत ही सिंपल है, रजिस्ट्रेशन आप अपना सबमिट कर सकते हैं। आप सारी जो आपने जानकारी है कि हमने हमारा नाम, हमने अपना पता, अपना मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर, IFSC कोड, इसको हम चेक करेंगे और चेक करने के बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, एक आपके मोबाइल में OTP आएगा। जो नंबर आपने उसमें प्रविष्टि की है उसी नंबर पर आपका OTP आएगा और OTP डाल के आपके सत्यापन की जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाएगी। सत्यापन के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन ID भी मिल जाएगी।
1: जी प्रत्याशा जी, आपने तो बहुत विस्तार से और बहुत सहज रूप से आपने सारी की सारी जानकारी दे दी हमारे किसान भाइयों को। ये अब ये रजिस्ट्रेशन ID जो मिल जाती है, उसके बाद में उसका उपयोग क्या होता है?
0: ये जो रजिस्ट्रेशन ID है, जैसे हमारी एक यूनिक ID जनरेट होती है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो रजिस्ट्रेशन ID है आपकी ईनाम पोर्टल पे आपकी एक यूनिक ID, जब आप इसको लॉगिन करेंगे यही रजिस्ट्रेशन ID का उपयोग करके आप लॉगिन करेंगे।
1: जी ये बताएं कि रजिस्ट्रेशन के समय हमारे किसान भाइयों को क्या क्या चीजें या कौन कौन से दस्तावेज अपने पास में रखना चाहिए जिनकी तुरंत में जरूरत पड़ती है?
0: रजिस्ट्रेशन करते समय आप अपना आधार कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आपका फोटो पहचान पत्र रख सकते हैं, जो आपके आइडेंटिटी के लिए होगा। साथ ही, क्योंकि जैसे किसान भाइयों को अपना पैसा प्राप्त करना है जो वो ऑनलाइन माध्यम से जो प्राप्त करेंगे, उसके लिए उनका अकाउंट नंबर बहुत ज्यादा आवश्यक है और उसका IFSC कोड बहुत आवश्यक है, तो इसलिए आप साथ में अपनी बैंक पासबुक की साफ फोटो रखें क्योंकि उसे अपलोड भी करना पड़ेगा। और साथ ही अपना वो मोबाइल नंबर जो एंट्री कर रहे हैं, जिस जो चालू हो, क्योंकि OTP भी उसी पे आएगा। आप इसमें अपने मोबाइल नंबर से भी क्योंकि लॉगिन कर पाएंगे।
1: तो प्रत्याशा जी, आपने बहुत विस्तार से बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भैया कैसी लगी जा बातचीत? जा बातचीत को आगे को हिस्सा हम आपके लाने थोड़ी देर बाद सुने हैं। मनो, अब हम चल रहे हैं बई संदेश की तरफ जो हमने आपको शुरुआत में सुनाओ। तो छेक लियो पानी गा रहे हैं रईस सिंह यादव और साथी। अरे छे

0: का बात है भैया, मजा आ गो। इत्तो नोनो गीत, इत्तो नोनो संदेश, गा रहे थे रई सिंह यादव और साथी। अब फिर चलाते हम वही बातचीत की तरफ जो ई नाम के बारे में मंडी बोर्ड के अधिकारियों से और किसानों से बातचीत कर रहे हैं आनंद कृष्ण वर्मा।
1: साथियों, हमारे साथ इस समय एक और सज्जन है। सर, आपका परिचय?
2: मेरा नाम अशोक कुमार राजपूत है, मैं मंडी सचिव हूँ मकसूदनगढ़ में, ये गुना के पास है।
1: राजपूत साहब, ये बताएं कि हमारे जो किसान मंडी में आते हैं अपनी फसल लेकर के बेचने के लिए
2: जी,
1: तो वो किसान क्या ई नाम से भी जुड़े हुए हैं या ई नाम से भी परिचित हैं?
2: ई नाम से पूरी मंडी हमारी हो गई है, ई नाम से पूरी व्यवस्थाएं हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या वहाँ पर आती नहीं है। मतलब मंडी की डाक नीलामी से लेकर तुलने तक और पेमेंट संबंधी तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती
1: जी। अच्छा, आप किसानों को ई नाम पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किस तरह से प्रेरित करते हैं?
2: पहले हम क्या है कि गांव-गांव में प्रचार कराएं, हमने अनाउंसमेंट भी कराएं
1: जी जी।
2: इसके अलावा वैसे गांव से हम संपर्क भी करते हैं
1: जी,
2: जो हमारे मतलब कार्यालय में आते हैं उनको पूरी जानकारी देकर
1: जी
2: उनको अवगत कराते हैं कि भाई आप ई नाम से आप जुड़िए, और मोबाइल के दूरभाष के माध्यम से भी उनसे मतलब मिलते हैं
1: जी जी। तो आपके यहाँ कितने किसान ऐसे होंगे जिन्होंने ई नाम पर अपना रजिस्ट्रेशन करा के रखा होगा?
2: कम से कम हमारे यहाँ 1500 के मतलब समथिंग किसान ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन और पूरे जानकारी उन पर उपलब्ध है।
1: अच्छा, मंडी में आप लोग कोई उनका किसान जब अपनी फसल लेकर के आता है तो उनके लिए चार्ज किस प्रकार का लिया जाता है? उनसे कुछ शुल्क वगैरह
2: नहीं लिया जाता?
1: निःशुल्क?
2: निःशुल्क, निःशुल्क।
1: बहुत अच्छा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक बात मैं जानना चाह रहा था कि ई नाम के माध्यम से जैसे आपके गाँव का कोई किसान है तो वो किसी दूसरे गांव की या किसी दूसरी जगह की मंडी में भी बेच सकता है?
2: बिल्कुल बिल्कुल साहब, कई बार किसान का किसी भी मंडी में बेच सकता है वो
1: जी।
2: उसके लिए
1: मतलब
2: दाम अधिक मिले तो मतलब हम प्रेरित भी करते हैं अपना साफ सुथरा माल लेकर आ, जिससे ज्यादा से ज्यादा दाम मिले, वो
1: अच्छा दाम मिले,
2: चाहे वो किसी भी मंडी में ले जाए।
1: तो उसको फिर भौतिक रूप से ले जाना पड़ता है माल को कि यहीं से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से माल उनने वहाँ पर दिया, फिर बाद में डिलीवरी होती रहती है, ऐसा कुछ रहता है?
2: नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, वो खुद के स्वयं के वाहन से लेके आते हैं, मंडी प्रांगण में तुलवाते हैं और वहीं से मतलब लेकर वो अपने जो भी पेमेंट होता है वो लेकर वो चले जाते हैं।
1: अच्छा, उनको तुरंत भुगतान हो जाता है?
2: जी, तुरंत भुगतान हो
1: जाता है। अच्छा, तो किसान इस नई व्यवस्था जो है ई नाम की जो व्यवस्था है
2: जी,
1: उससे किसान संतुष्ट हैं क्या?
2: बहुत संतुष्ट हैं सर, क्या है कि उसका प्रचार प्रसार और नई जनरेशन आई है, वो क्या है कि इससे काफी संतुष्ट हैं
1: जी। आप जो नई जनरेशन को और क्या संदेश देना चाहेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे?
2: हम यही कहना चाहेंगे सब, जितने ज्यादा हैं वो ई नाम से ही जुड़े और मंडी प्रांगण में ही फसल बेचें, बिचौलियाँ या अन्य लोगों से मिलकर मतलब वैसा माल नहीं दें किसी को, डायरेक्ट मंडी प्रांगण में ही दें तो ज़्यादा दाम और नगद पेमेंट मिलेगा सर
1: जी जी। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहता हूँ कि जो किसान आपके पास में माल लेकर के आते हैं उस माल में किस प्रकार की गुणवत्ता होना चाहिए जिसको कि मंडी स्वीकार करती है?
2: उसमें सर क्या है कि साफ सुथरा क्लीन होना चाहिए, अच्छा उसमें कचरा वगैरह ना हो, उसमें डंठल मिट्टी वगैरह नहीं हो
1: जी, जी।
2: वो क्या है चलने से छान कर जितना अच्छा लेकर आएंगे उतना उनको दाम बढ़कर मिलेगा।
1: अच्छा, मतलब साफ सफाई से?
2: साफ सफाई से हो, उसमें फफूंद ना हो, मतलब जो है मिट्टी ना हो, डंठल ना हो
1: जी,
2: बढ़िया छान के लाएंगे तो उनको मतलब जो तब लाभ मिलेगा, पैसा ज्यादा मिलेगा।
1: हमने एक किसान से बात करी, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं ई नाम के बारे में या ई नाम से संबंधित किस प्रकार का अनुभव रहा है। भैया, सबसे पहले तो आपका नाम बताइए और आप कौन से गांव से हैं इसके बारे में बताइए।
3: मेरा नाम पिंटू शर्मा है, मैं गुना जिले मधुसूदनगढ़ का रहने वाला हूँ।
1: जो राष्ट्रीय कृषि बाजार जो है ई नाम कहलाता है
3: जी,
1: तो उसका भी

0: चल रहा है उसके बारे में आपको जानकारी है क्या?
1: ई नाम है हमें जानकारी, जिसके माध्यम से हम सौदा पत्रक के माध्यम से हमारी फसल का क्रय विक्रय करते हैं। ई नाम के माध्यम से हमें हमारी फसल का करंट भाव मिल जाता है, इससे हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो जाता है। हमें जानकारी होती है कि आज की कीमत में हमारी फसल की अच्छी कीमत मिल रही है, इससे हमें घाटा नहीं जाता है। नहीं तो पहले बाजारों में ई मंडियां नहीं होती थी, तो पुराने जैसे जो व्यापारी का भाव होता था उसी भाव में हमें बेचना पड़ती थी।
0: अच्छा,
1: आज ई मंडी के माध्यम से हम हमारी फसल को एक मनपसंद भाव में बेच सकते हैं
0: जी। तो ये ई नाम के माध्यम से यदि आप फसल बेच रहे हैं तो आपको अच्छा फायदा मिल रहा है, ये आपको
1: जी
0: कहना है?
1: हाँ।
0: तो आप हमारे किसान भाइयों को और क्या बताना चाहेंगे इस बारे में?
1: जी, ज्यादा से ज्यादा ई नाम मंडी ऐप को डाउनलोड करें और अपनी फसल की क्रय विक्रय इसी के माध्यम से करें और अपने फसल की अच्छी कीमत लें।
0: तो किसान भाइयों, सुना आपने कि ई नाम के माध्यम से हम अपनी फसल की बेहतर से बेहतरीन कीमत प्राप्त कर सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि ई नाम आइए और अच्छी कीमत का ई नाम पाइए।
2: भैया, अभी अपन सुन रहे थे जा एक स्थल रिकॉर्डिंग पे आधारित बातचीत, जो राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम विषय पे आनंद कृष्ण वर्मा ने मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड यानी मंडी बोर्ड के अधिकारियों और किसानों से करी। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भैया, आपने हम सब किसानों के लाने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई। भैया, अब आगे बढ़ रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आप सभी किसान भाइयों को सलाह दी जा रही है कि मानसून की सक्रियता को देखत भए आवे वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बरसात होने की संभावना है। ऐसे में किसान भैया ध्यान रखें, सबसे पहले खेत में जल निकासी की व्यवस्था करें, क्योंकि जल भराव से सोयाबीन, मक्का, अरहर और अन्य फसलों में जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। बरसात के दौरान खाद, उर्वरक और कीटनाशकों को छिड़काव तभी करें जब अगले कछु घंटों तक बरसात होने की संभावना न होए और खेतों में पर्याप्त नमी होए। उद्यानिकी के किसानों के लाने सलाह है कि तेज हवा और बरसात की संभावना को देखत भए सब्जी और बेल वाली फसलों और छोटे फलदार पौधों को सहारो जरूर दें। गरज चमक के दौरान खुले खेत में काम न करें, पेड़ के नीचे खड़े ना होएं, सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। और हाँ, किसान भैया अपने क्षेत्र के मौसम के हिसाब से काम करें, मतलब मौसम विभाग द्वारा जारी आपके क्षेत्र की मौसम की चेतावनी और स्थानीय कृषि सलाह के आधार पर काम करें। भैया, मंडी के भाव भी बता देवे आपको। इंदौर मंडी में कल 31 अगस्त को गेहूं को अधिकतम भाव थो 2630 रुपया प्रति क्विंटल, चना देसी 6520 रुपया, डालर चना 8380 रुपया प्रति क्विंटल, सोयाबीन को भाव 4220 रुपया रहो, मक्का को अधिकतम भाव 2020 रुपया प्रति क्विंटल दर्ज करो गौ, सरसों बिकी 7925 रुपया प्रति क्विंटल, ज्वार को भाव 2520 रुपया, वही मूंगफली को भाव 8520 रुपया प्रति क्विंटल दर्ज करोगा। साथ ही सूचना है कि मूंग बिकी 8800 रुपया प्रति क्विंटल की दर से, तुअर को भाव तो 8474 रुपया, मसूर 6650 रुपया प्रति क्विंटल की दर से बिकी। भैया हरो, जो थो आज को किसान वाणी कार्यक्रम चलत चलत हम फिर आपको वही संदेश देबो चाहेंगे।

0: पानी बहुत जरूरी है, जा पानी को जमीन में उतारें, जैसे कि भूमि को जल स्तर बढ़ सके और हम सब के लाने खेती में फायदा हो सके। जय नोने संदेश के साथ मनोज सक्सेना को दिया गया, राम राम।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछ ना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: इस कार्यक्रम

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम किसान वाणी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल। कार्यक्रम का संचालन कर रही है आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। किर्गिज गणराज्य यानी कि किर्गिज रिपब्लिक के बिश्केक में कल शुरू हुए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO समिट आज संपन्न हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज SCO समिट के राष्ट्र अध्यक्षों के परिषद की 26वीं बैठक में हिस्सा लिया। इस साल SCO की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। आज SCO समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात की। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अम्बेसडर स्कंद रंजन तायल। अम्बेसडर तायल, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: अम्बेसडर तायल, चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, प्रधानमंत्री ने SCO के लिए भारत के विजन के 3 मुख्य स्तंभों पर जोर दिया है जो कि सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी हैं। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं?
3: शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में स्थापित हुआ था, इसको 25 वर्ष अब हुए हैं। ये एक बहुत सुदृढ़ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सामने आया है, इसके 10 सदस्य हैं। और प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में जो कहा वो एक भविष्य के लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की क्या दिशा होनी चाहिए और कहाँ अधिक ध्यान देना चाहिए, उस पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। और बहुत ही समराइज करते हुए उन्होंने कहा कि 3 स्तंभ हैं जो बहुत मुख्य हैं SCO के लिए, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर, अपॉर्चुनिटी। सुरक्षा तो सब जानते ही हैं कि देशों की सुरक्षा बाहरिक और आंतरिक बहुत ही आवश्यक है। अगर किसी भी देश को, किसी भी रीजन को विकास की तरफ बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो उस पर उन्होंने विशेष रूप से आतंकवाद का जिक्र किया। कनेक्टिविटी में जो शुरू में जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी तो केवल 6 मेंबर्स थे और उसमें 4 सेंट्रल एशियन जो देश हैं, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, वो लैंडलॉक्ड हैं, उनका कोई समुद्रिक किनारा नहीं है। तो उनको एक कनेक्शन उनका केवल या तो ऊपर उत्तर दिशा में रशिया के द्वारा है या पूरब दिशा में चीन के द्वारा है। तो ये चाहते हैं कि भारत की तरफ, दक्षिण एशिया की तरफ भी उनका कुछ रास्ता बने, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए, और एक ईरान की तरफ भी रास्ता बने। तो उसमें भारत ईरान की तरफ से जो रास्ता है उसमें बहुत उनका मदद कर रहा है और उसमें कुछ अभी चैलेंजेस आ रहे हैं। और अपॉर्चुनिटी, तीसरी चीज उन्होंने जो कहा कि जो युवा हैं उनके लिए और सब नागरिकों के लिए किस तरह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी कार्यक्रम हैं, उनसे उनके अवसर बढ़े, उनका विकास हो और उनको सहूलियत हो, इस दिशा में कार्य करना चाहिए।
2: प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करने की जरूरत पर भी काफी जोर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि फाइनेंसिंग, रिक्रूटमेंट, रेडिकलाइजेशन और

0: और सेफ हैवन्स जैसी चीजों को भी उन्होंने अपने संबोधन में शामिल किया। जब आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री तो इस टेररिज्म के पूरे इकोसिस्टम को डिसमेंटल करने के लिए कई बार अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन जब वैश्विक मंच पर ये बात कही जाती है, ये बयान आता है, तो पूरी दुनिया इसे कैसे देखती है और ये भारत के नजरिए से कितना महत्वपूर्ण है?
1: पूरा क्षेत्र पीछे सालों में आतंकवाद से जूझता रहा है। भारत, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया, चीन में भी कुछ घटनाएं उइघुर एरिया में हुई थी, और अफगानिस्तान में जब से तालिबान का कंट्रोल पूरा हो गया है तो आतंकवाद में इस क्षेत्र में कमी आई है। पर भारत अभी भी आतंकवाद के घेरे में है, और हम सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि ये आतंकवाद का जो स्रोत है वो पाकिस्तान है, और इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी इस सभा में मौजूद थे और वहां बैठे हुए थे जब प्रधानमंत्री ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है तो हर व्यक्ति जो आतंकी कार्रवाई करता है, जान माल को नुकसान पहुंचाता है, वो आतंकवादी है। उसको ये ना देखें कि वो कहां से आता है, क्या है। और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हर देश, जो भी उनके यहाँ जो इकोसिस्टम है, उसको पूरा खत्म निस्तनाबूद करे। और इस पे फिर संकेत उनका पाकिस्तान की तरफ भी था, क्योंकि उन्होंने सेफ हेवेंस की बात की, तो पाकिस्तान में अभी भी दुनिया भर के आतंकवादियों को छुपने का जगह मिलती है। सब जानते हैं ओसामा बिन लादेन कहाँ पकड़ा गया था। रिक्रूटमेंट वहां मदरसों के द्वारा हो रहा है, रेडिकलाइजेशन मदरसों के द्वारा हो रहा है, और फाइनेंशियल नेटवर्क्स भी पाकिस्तान में पल रहे हैं, पनप रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का ये संदेश सब मेंबर देशों के लिए था, पर मुख्यतः ये पाकिस्तान के लिए था।
0: जी एम्बेसडर तायर, जैसी जानकारी आपने अभी हमारे श्रोताओं को दी उसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि SCO बिश्केक घोषणा पत्र नार्को आतंकवाद के खिलाफ भारत के प्रयासों का समर्थन करता है और साथ ही साथ संगठित अपराध के खिलाफ सहयोग को भी मजबूत करता है। आगे बढ़ते हुए एम्बेसडर तायर से मैं ये भी जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि आतंकवाद पे कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए, तो इस स्टेटमेंट को, इस वक्तव्य को आप कैसे देखते हैं?
1: जैसा कि हमने देखा और पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान कहता है कि वो तो खुद आतंकवाद से प्रभावित है, पर उसके यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी पनप रहे हैं, पल रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया ने देखा ऑपरेशन सिंदूर के समय, जब भारत के मिसाइल्स और रॉकेट्स का हमला हुआ तो किस तरह कई उनके आतंकवादियों के गढ़, जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती थी, उनको ध्वस्त किया गया। तो हर देश जिसमें उनका इशारा मुख्यतः पाकिस्तान के ऊपर था, वो कोई डबल स्टैंडर्ड ना रखे, और आतंकवादी चाहे वो उनके देश पर हमला कर रहे हो या उनके पड़ोसी देशों पर हमला कर रहे हो, जैसे कुछ आतंकवादी अब अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान से चाह के अफगानिस्तान को भी प्रभावित कर रहे हैं, भारत को तो कर ही रहे हैं। तो सब जगह वो पाकिस्तान अपने यहाँ जितने आतंकवादी हैं उन सबको खिलाफ कार्रवाई करे, और जितने चैनल्स हैं उनको, जो उनको सुरक्षा देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, पैसा उनके लिए इकट्ठा करते हैं, उनको भी बंद कर।
0: अम्बेसडर तायर, आगे बढ़ते हुए पश्चिम एशिया में मौजूद घटनाक्रम को देखते हुए प्रधानमंत्री के इस बयान को आप कैसे देखते हैं कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ता है और व्यापार को आसान बनाते हैं, जैसे कि कनेक्टिविटी बढ़ाने के ऊपर भी प्रधानमंत्री ने काफी जोर दिया, और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नए रास्ते भी तलाशने बहुत जरूरी है, तो आखिर आप इस वक्तव्य को कैसे देखते हैं?
1: ये भारत और मध्य एशिया के बीच में बहुत ही मधुर संबंध हैं, पर व्यापार नहीं हो पाता है क्योंकि बीच में अफगानिस्तान है और पाकिस्तान हमारे व्यापार को, हमारे ट्रक्स को वहां नहीं जाने देता है। तो भारत ने बहुत प्रयत्न किया कि ईरान के द्वारा एक नया रास्ता खोजा जाए। चाबहार पोर्ट जो ईरान में है उसमें भारत का निवेश है और एक बर्थ भारत कंपनी चलाती है। पर जो वेस्ट एशिया में जो इस समय युद्ध चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, इसमें ईरान के ऊपर सैंक्शंस और बढ़ गई हैं, और ईरान के द्वारा और ईरान के थ्रू कोई भी, जैसे भारत एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात कर रहा था कि बॉम्बे से चाबहार जाए शिप से सामान, कंटेनर्स, और उसके बाद रेलवे से, और उसके बाद ट्रक से अफगानिस्तान के थ्रू, पर अब वो सब की संभावना कब दिखती है? तो इसलिए कोई नया

0: सोच दुनिया को और इस रीजन के देशों को सोचना होगा, उसकी तरफ इशारा हमारे प्रधानमंत्री ने किया।
1: अम्बेसडर तायल, प्रधानमंत्री ने हमेशा ही कहा है और भारत ने भी हमेशा ये जोर दिया है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी ही किसी भी वॉर का समाधान निकाल सकते हैं। प्रधानमंत्री का ये कहना है कि बैटलफील्ड पे लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, बल्कि समाधान खोजने होंगे जो कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू होंगे। तो इसको वर्ल्ड कैसे देखता है?
0: को पूरी दुनिया बहुत ध्यान से सुनती है और समझती है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जो देश है वो गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी का है, हमेशा डायलॉग और डिप्लोमेसी को भारत ने समर्थन किया है। और प्रधानमंत्री मोदी के इतने अच्छे संबंध दूसरे देशों के राजनेताओं से हैं कि वो बात साफ साफ कर सकते हैं और उसको दूसरे लोग बुरा नहीं मानते। जैसे कि 2 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन को उन्होंने बड़ा पब्लिक स्टेटमेंट में कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है, और उसको पूरी दुनिया में बहुत अच्छी तरह उसको लिया गया था और समझा गया था। और इसी तरह कल जो राष्ट्रपति पुतिन के साथ हमारे प्रधानमंत्री की बैठक हुई, उसमें जो पब्लिकली जो बात हुई, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए ये एंडलेस वॉर हो रही है, अब इसको एंड ऑफ वॉर की तरफ ले जाइए, कि जो वॉर जो खत्म ही नहीं हो रही है उसको खत्म समाप्ति की तरफ ले जाइए। तो ये एक बहुत अच्छा एक मैसेज है। एक जो अपना निर्णय है वो तो हर देश के राजनेता अपने अनुसार लेते हैं, अपनी समझ के अनुसार लेते हैं, पर दुनिया क्या कह रही है, जो एक अच्छा विचार व्यक्त करने वाले लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, उनकी बातों को बहुत ध्यान से लोग सुनते हैं और जहां तक हो सकता है उस पर अमल करने का भी प्रयत्न करते हैं। तो एक बहुत अच्छा संदेश भारत के प्रधानमंत्री ने, मैं समझता हूँ कि सब देशों को दिया, राष्ट्रपति पुतिन को भी दिया, और दुनिया के और जहां जहां भी युद्ध हो रहा है वहां भी ये संदेश बहुत ध्यान से गंभीरता से सुना जाएगा।
1: अम्बेसडर तायल, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सभी देशों को संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना भी अत्यंत ही आवश्यक है। आप इस स्टेटमेंट को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
0: भारत यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है और सभी जो देश हैं सब यूनाइटेड नेशंस के सदस्य हैं और उसके चार्टर को मानते हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा जो एक बिंदु है वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का है सब देशों का, और उसको बहुत मजबूती से प्रधानमंत्री ने सामने रखा। और उन्होंने ये कनेक्टिविटी के संदर्भ में भी ये बात कही, क्योंकि जो BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, जो पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो भारत भारतीय कश्मीर से पास होता है जो कि भारत का क्षेत्र है। तो उनका ये भी एक क्लियर उनका कहना था कि जो भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हो उनमें सब देशों की सॉवरेनिटी की सुरक्षा की जाए। और इस संदर्भ में उन्होंने एक बात और कही कि जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, उसमें ऐसा ना हो कि जो ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनके ऊपर बहुत अधिक कर्ज हो जाए। ये एक इशारा मेरे समझता हूँ कि चाइना की तरफ था, जिन्होंने कई देशों में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को अपना लोन दिया है, पर वो ऊंचे ब्याज पर दिया है, जो कि जैसे श्रीलंका है, उनको हम्बनटोटा के लिए वो कर्ज चुकाना बड़ा मुश्किल हो रहा है।
1: अम्बेसडर तायल, आखिर में आपसे बहुत ही संक्षेप में जानना चाहूंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 25 वर्षों में पीपल टू पीपल टाइज को हमारे सहयोग के केंद्र में रखना चाहिए, तो पीपल टू पीपल टाइज कितने महत्वपूर्ण होते हैं?
0: देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को अब 25 वर्ष हो चुके हैं, तो अगले 25 वर्ष प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 25 वर्ष में पीपल टू पीपल संबंधों को सेंटर ऑफ कोऑपरेशन बिल्कुल बीच में रखा जाए, क्योंकि जो भी हम दुनिया में देख रहे हैं इस समय तनाव की स्थिति है, युद्ध की स्थिति है, और कुछ इस तरह का सोच है कि जो विनर टेक्स ऑल, कि जो अमीर है वो और अमीर होता चला जा रहा है, जो गरीब है वो कहीं भी उस पर सोच नहीं रहा। तो इस संदर्भ में लोगों में डायरेक्ट संबंध होंगे, डायरेक्ट डायलॉग होगा, कल्चरल एक्सचेंजेस होंगी, फिल्में साथ बनेंगी, टूरिज्म होगा, मेडिकल के लिए आएंगे। इससे लोगों में जो विभिन्न देशों से आते हों, विभिन्न धर्म के हों, पर उनमें भाईचारा बढ़ता है, उनमें एक संवाद बढ़ता है, और पूरे विश्व में एक हार्मनी का, एक शांति का माहौल पैदा होता है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा सोच प्रधानमंत्री ने SCO मेंबर्स के सामने रखा, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत कॉन्क्रीट प्रपोजल भी रखा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सिविलाइजेशनल डायलॉग, जो उन्होंने पिछले वर्ष उसकी बात की थी, कि भारत में ये पहला डायलॉग आने वाले महीनों में

0: कि जिस तरह बार बार प्रधानमंत्री भी कहते हैं और हमारे जो देश के चिंतक वर्ग है वो कहता है कि भारत का दुनिया को विरासत सोच की है, थॉट्स की है, फिलॉसफी की है, दर्शन की है। हमने कभी किसी दूसरे देश को कॉन्क्वेस्ट नहीं किया कि अपने यहाँ से हमने फौजें भेजी, पर अच्छे विचार भेजे और अच्छा ज्ञान भेजा जिसको पूरे विश्व ने उसको स्वीकारा और उसको अप्रिशिएट किया। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री अब उस दिशा में कार्य करने का कुछ निर्णय उन्होंने बनाया है।
1: अम्बेसडर तायल, आप आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आए और आपने इतने विस्तार से हमें जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत स्कंद रंजन तायल। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना।
3: सुर्खियों में कार्यक्रम हमारे भोपाल केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

दिल ने फिर याद किया। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन कीजिए स्वीकार। आपकी रेडियो दोस्त श्वेता का प्यार भरा नमस्कार।

दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम में आज बातें प्रेम की। प्रेम केवल किसी को चाहने का नाम नहीं, बल्कि प्रेम एक ऐसी भावना है जो इंसान के जीवन को भीतर से सुंदर बना देती है। प्रेम में अधिकार से अधिक विश्वास, शिकायत से अधिक समझ और शब्दों से अधिक भावनाओं का महत्व होता है। प्रेम वो नहीं जो हर पल पास होने की चाह रखे, प्रेम वो है जो दूर रहकर भी दिल में जगह रखे। रिश्ते तो बहुत मिलते हैं इस जिंदगी के सफर में, मगर सच्चा प्रेम वही है जो उम्र भर साथ निभाने की वजह रखे।

सच्चा प्रेम वो है जिसमें हम सामने वाले की खुशी में अपनी खुशी महसूस करें, उसके दुख में बिना कहे उसके साथ खड़े रहें। प्रेम हमें सिखाता है कि रिश्ते केवल साथ रहने से नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने, सम्मान देने और हर परिस्थिति में साथ निभाने से मजबूत होते हैं। तेरी मुस्कान से मेरी सुबह सज जाती है, तेरी एक बात से शाम सवर जाती है। क्या नाम दूं इस खूबसूरत एहसास को, बस तेरी याद आती है और जिंदगी मुस्कुरा जाती है।

फिर न कभी कहना दिल तोड़ने वाली बात।

दोस्तों, प्रेम का रोग बड़ा अजीब रोग है। इसका कोई इलाज नहीं है। जब किसी की मुस्कान दिल में बस जाए, उसकी बातें बार बार याद आने लगे और बिना किसी वजह के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, तो समझ लीजिए दिल को प्रेम का रोग लग चुका है। इस रोग में नींद कम और ख्याल ज्यादा आते हैं। शिकायतें भी प्यारी लगती हैं और किसी की छोटी सी खुशी अपनी खुशी बन जाती है। इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें इंसान किसी को पाने से ज्यादा उसे खुश देखने की इच्छा करने लगता है।

कभी एक मुस्कान से शुरू होती है कहानी, कभी आंखों से होती है दिल की जुबानी, कभी छोटी सी मुलाकात याद बन जाती है, कभी किसी की आवाज ही सौगात बन जाती है। प्रेम में सिर्फ मिलना ही जरूरी नहीं होता, दूर रहकर भी कोई दिल के करीब होता है। कभी इंतजार में गुजरती है शामें, कभी यादों में कटती हैं सारी रातें। प्रेम कहानी को आखिर शब्दों में कैसे समेटें, जिसे दिल ने जिया हो उसे लफ्जों में कैसे कहें।

हो तो कुछ खास सा लगता है, हर दिन थोड़ा पास सा लगता है। खामोशियों में भी बातें होती हैं, हर पल कोई एहसास सा लगता है। तुम साथ रहो तो राह आसान लगे, हर मुश्किल भी थोड़ी आसान लगे। थक जाए जब ये जिंदगी कभी, तुम्हारा साथ एक मुस्कान लगे। न कोई बड़ी ख्वाहिश न कोई शिकवा रहे, बस रिश्ते में विश्वास हमेशा बना रहे। जिंदगी चाहे कितनी भी बदल जाए, दिल में बस एक दूसरे के लिए प्रेम सदा रहे।

0: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और अफगानिस्तान के साथ 3 T20 क्रिकेट मैच की घरेलू श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। सम्मेलन आतंकवाद, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
2: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक, तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित एससीओ युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले एससीओ सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और एससीओ युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: सम्मेलन 13 प्रमुख निर्णयों के साथ संपन्न हुआ। ये निर्णय आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और डिजिटल सहयोग से संबंधित हैं। इसके अलावा 4 समझौता ज्ञापनों और 20 से अधिक निर्णयों को भी मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा प्रगति और समृद्धि के लिए मजबूत और भरोसेमंद कनेक्टिविटी की पहल महत्वपूर्ण है। भारत ऐसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ें, व्यापार को बढ़ावा दें और विकास के नए अवसर खोलें। हालांकि ऐसी पहलों में देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाना चाहिए।
4: सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न।

0: To imagine what's possible, this is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। श्री चौहान ने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: योजना के 6 लक्ष्यों के आधार पर 100 जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 में 22.54 से बढ़कर जुलाई 2026 में 38.85 हो गया, जो 16.31 अंकों के सुधार को दर्शाता है। यह योजना 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ राज्य की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मिलाकर लागू की जा रही है। वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की निगरानी के लिए 36 योजनाओं में कुल 121 संकेतक निर्धारित किए गए हैं। समीक्षा में निगरानी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। शिवांग मिश्रा के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: सरकार ने चीनी और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए हैं। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए चीनी के भंडारण की सीमा 4000 से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नई सीमा 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। अब कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं कांदा एक्सप्रेस मालगाड़ियों और ट्रकों के जरिए देश के प्रमुख शहरों में 2500 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की सुनियोजित आपूर्ति की जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपूर्ति और बढ़ने से दाम पूरी तरह स्थिर हो जाएंगे और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकी भी रद्द कर दी और राज्य को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
3: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। सीजेपी के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के 16 रक्षा उपक्रमों के प्रदर्शन और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए रहा। इसमें 1,29,000 करोड़ रुपए का योगदान रक्षा उपक्रमों का था। उन्होंने इस उपलब्धि को आत्मनिर्भर रक्षा औद्योगिक आधार के निर्माण की दिशा में देश की महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक बताया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT 6 दशकों से अधिक समय से विशेष रूप से अपनी पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम के माध्यम से भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में परिषद के 66वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्कूली शिक्षा में सुधारों के लिए एक ढांचा प्रदान किया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि

0: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता को नुकसान और प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट और साझा प्रयासों की जरूरत है। नई दिल्ली में भारत जर्मनी पर्यावरण मंच में उन्होंने कहा कि भारत के विकास के अनुभव ने यह साबित किया है कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों एक साथ चल सकते हैं।
1: क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर,
2: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने और अपने लिए जलवायु अनुकूल भविष्य बनाने के लिए आपसी सहयोग बेहद जरूरी है। भारत इस दिशा में जर्मनी के साथ अपनी साझेदारी को विशेष महत्व देता है। दोनों देशों के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग कई वर्षों से जारी है और समय के साथ पर्यावरणीय शासन के नए क्षेत्रों तक इसका विस्तार हुआ है।
1: एरियाज ऑफ एनवायरमेंटल गवर्नेंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में मध्यम जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में व्यापक बारिश होने की संभावना है। वस्तु और सेवा कर के संग्रह पिछले महीने बढ़कर 1,99,853 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये अगस्त 2025 के 1,74,116 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 15% अधिक है। केंद्र सरकार ने ईंधन निर्यात करों की अपनी ताजा पाक्षिक समीक्षा के अंतर्गत पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार पेट्रोल पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 1.5 रूपए प्रति लीटर और डीजल पर बढ़ाकर 25 रूपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क घटाकर 19 रूपए प्रति लीटर किया गया है। अधिसूचित ये संशोधित दरें आज से लागू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता के डम्बन्ना में अर्जुन वाहिनी नामक एक विशेष आपदा मोचन दस्ते का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तर्ज पर गठित इस बल का उद्देश्य राज्य की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को और अधिक मजबूत बनाना है। महाराष्ट्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2029 तक राज्य को मादक पदार्थ मुक्त बनाने के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी है। मुंबई में मंत्रिमंडल की बैठक में मादक पदार्थों के खिलाफ सभी विभागों के समन्वय से कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया। सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल 30 सितंबर कर दी है। अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। भारतीय जनसंचार संस्थान ने भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को पहली बार स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इन अधिकारियों को लोक संचार और शासन में एमए की डिग्री दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि जनसंचार शासन का एक अभिन्न अंग है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 T20 मैच की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर और उपकप्तान तिलक वर्मा होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में मौका मिला है। श्रृंखला का पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा 15 और तीसरा 17 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों से आतंकवाद के पूरे तंत्र के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। संगठन का शिखर सम्मेलन आतंकवाद रोधी उपायों, जलवायु कार्रवाई और डिजिटल सहयोग से जुड़े 13 समझौतों के साथ संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्र सरकार से आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को प्रस्तावित मार्च वापस लिया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और

0: Chhattisgarh, East MP and Uttarakhand tomorrow. And in men's cricket, 15-member Indian squad announced for 3-match T20 international series against Afghanistan. That's all in the news at 9. Good night.
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रगीत। चित्रगीत कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के साथ में एच ईरानी की आवाज़। फिल्म का नाम है बारूद। हसरत जयपुरी ने बोलो को लिखा है और संगीत है खयाम का।

दिलीप से बोलो क्या होता है।

0: मुन्ना, बोलो तेज से क्या होता है?
1: तीतर।
2: दादी।

चलिए अब सुनते हैं कोहिनूर फिल्म का गीत, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की युगल आवाज़ों में। शकील बदायूनी ने गीत को लिखा है और संगीत है नौशाद का।

कार्यक्रम में अब बारी है अगले गीत की। इस बार भी हम आपको सुनवा रहे हैं शकील बदायूनी का लिखा हुआ गीत और संगीतकार हैं नौशाद। आवाज़ है लता मंगेशकर, शमशाद बेगम और साथियों की। फिल्म का नाम है मुगले आजम।

0: जाली नोट फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में राजा मेहंदी अली खां के बोल थे और ओपी नैयर का संगीत। इसी के साथ चित्रगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। 9:30 होने को है। अगला कार्यक्रम भोपाल केंद्र से।
1: Money Talk.

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है उर्दू प्रोग्राम कहकशां।

दोस्तों, अभी आप गुलूकार जगजीत सिंह से गजल समाज फरमा रहे थे और कलाम था कैफी आजमी का। दोस्तों, बहैसियत मजमूही हम ये कह सकते हैं कि कैफी आजमी की गजलें हकीकी तजुर्बे से माखूज हैं, जिनमें असली हकीकतों की गहरी नश्तरियत, पुख्ता तख्लीकी शऊर और नज़मिया के असरात मौजूद हैं। उनकी शायरी मुशायरे लूटने वाली शायरी नहीं है, बल्कि माशरे के फरसूदा रिवायात और मुल्क और दुनिया के जालिमाना सियासी निजाम के खिलाफ एक ऐलान जंग है। डॉक्टर कमर रईस कहते हैं कि कैफी का ताल्लुक इंसानियत की उस तरक्की पसंद जमात से है जिसने इंसान को ज़ईफ़ुल एतिकादी, तवहुम परस्ती और तासुबात से निजात दिलाने के काम को अपनी जिंदगी का नस्बुलैन बनाया। वहीं शमीम हनफी कहते हैं कि जब भी मैं कैफी आजमी के कलाम का मवाजना उनके दूसरे मासरीन से करता हूँ तो हमेशा इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि वो उर्दू शायरी में तरक्की पसंद तहरीक की अहम तरीन आवाजों में से फैज और मखदूम के बाद तीसरी बड़ी आवाज हैं। दोस्तों, अपनी शायरी का लोहा पूरी दुनिया से मनवाने के बाद उर्दू अदब का ये दरख्शां सितारा 10 मई 2002 को मुंबई में इस दारे फानी को अलविदा कह गया। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। अब हमारा प्रोग्राम यहीं खत्म होता है। आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा, अपने खतूत के जरिए हमें ज़रूर मुत्तला करें। हमारा पता नोट कीजिए, उर्दू प्रोग्राम कहकशां मार्फत स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी, शामला हिल्स, भोपाल, पिन 462002। अब आपके दोस्त वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। आदाब।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम कहकशां। ये आकाशवाणी का मध्य प्रदेश केंद्र है।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
4: क्या?
3: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
4: वो कैसे?
3: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: और सुनेंगे कैसे?
3: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
5: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
6: श्रोताओं, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। रात्रि के ठीक 10 बज रहे हैं और आइए अब सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम मन भावन।

श्रोताओं, इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं एजेंट विनोद फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह ने। गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने। इस गीत के लिए पत्र भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं पंजौनिया जालौन यूपी से सत्येंद्र कुमार चांसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चांसोलिया, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, शोएब खान, मुस्तवा खान, आफिया खान और रऊफ भाई के साथ शहीद भाई, गांधीबाग आकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर और मोहम्मद उमर डावर। ये पत्र आया है शाजापुर से। श्रोताओं के नाम हैं एमएम राजावत, राज, मधु राजावत, राशि, रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, ऋतिक, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और उनका समस्त राजावत परिवार। लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर, बिहारी कॉलोनी से वलीउल्ला फकीर, डब्लूउल्ला फकीर, परवीन आसमा फकीर, बुलंदशहर से बद्रू अली अंसारी, फर्जू अली अंसारी और इनके साथी। ये पत्र आया है खंडवा से। राजेश कुमार धनजय, राहुल कुमार धनजय, विशाल कुमार धनजय, शीला धनजय, गायत्री धनजय, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर एजेंट विनोद फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, मन भावन कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं देवता फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल आवाजें हैं। गीत को अपनी कलम से लिखा है गुलजार ने और ये खूबसूरत संगीत है आरडी बर्मन का। पत्र भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानू, उबैद रजिया, जुनैद अलीना और मुआज आयत। ये पत्र आया है गुमाश्ता नगर स्कीम नंबर 71 इंदौर से। श्रोताओं के नाम हैं अनिल कवचाले, नेहा फरसे, सीमा, सबीहा, पूजा नेनावा और सुषमा के साथ हैं स्मिता। ये पत्र है यवतमाल से। श्रोताओं के नाम हैं जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर, वंदना धूले, अर्पिता और समस्त सिंगड़कर परिवार। कोल्हापुर से अतुल, गौतमी, धम्मदिना, अरुण काले और ए डी कांबले। कोल्हापुर से ही तुषार कुरणे, पसी कांबले, एकता कांबले, मेघना करणे, उत्कर्षा कांबले और अरुण और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये पत्र आया है पुणे महाराष्ट्र से। श्रोताओं के नाम हैं महेश हजारे, मिंताशु हजारे और आदित्य हजारे। मंदसौर से भगत राम चौहान और मयंक और प्रीति चौहान। ये पत्र है पालदना का इंदौर से। श्रोताओं के नाम हैं हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी।

श्रोताओं, मन भावन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। कार्यक्रम में अगला पत्र हमने जो शामिल किया है उनके नाम आपको बता देते हैं, और नाम बताने से पहले वो फरमाइश आपको बता देते हैं जो हमने गीत के माध्यम से पूरी की है। तो आपकी फरमाइश पर जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वो गीत है जहर फिल्म से, श्रेया घोषाल की आवाज़ है। सईद कादरी ने गीत को अपनी कलम से लिखा है और ये संगीत है अनु मलिक का। फरमाइश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी और कोमल यादव। जयराम प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। राजपुर से घीसु दिलवारे। कवर कॉलोनी बड़वाहा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। ये पत्र आया है उत्तराखंड से, श्रोताओं के नाम है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रेहान और माहिरा नूर। बुरहानपुर से भैया तड़वी, रीना, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परु, मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर और तैमूर बारेकर। भोकरी महाराष्ट्र से अरशद तड़वी, आरिश, अरसलान और यूनुस। ये पत्र आया है नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से, अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर और मोहम्मद उमर डावर। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत हमने शामिल किया है कुर्बानी फिल्म से। नाजिया हुसैन की आवाज़ है और इस गीत को लिखा है इंदिवर ने। पत्र भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबेल पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। ये पत्र आया है छत्रपति शाहू नगर हिंगोली से रामचंद्र इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टिक्कू इंगोले, रमाबाई, सुरेंद्र इंगोले, मयूरी, सुरभि, मंजूषा, गौतम इंगोले। महाराष्ट्र से पार्वती सखाराम ठोके, दीपाली राजू ठोके, रोहित सोनू मोनू ठोके, श्री माटेश्वर श्रोता संघ नागेश्वर नगर माटेगांव पुणे से शेषराव बोबड़े, सोना जी, सीताराम वैष्णवी, सुवर्णा, वेणुताई, शुभम बोबड़े, माधवराव, देवराव धर्माजी, संदीप बोबड़े और मारुतराव भूसारे और इनके साथी। साथ ही इसमें निज़ामाबाद से ही एक पत्र शामिल किया गया है। इस पत्र में ही इनका नाम लिखा है। इनके नाम है शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया और लक्ष्मी और उत्तम कामले। ये पत्र आया है छावड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गंवाड़कर, श्रीमती सरिता गंवाड़कर, प्रिंस एकांश गंवाड़कर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गंवाड़कर, प्रणीता गंवाड़कर और अर्जुन गंवाड़कर, आकार हाइट्स नागपुर से वैशाली शैलेश गंवाड़कर, सुमित गंवाड़कर और कुमारी ध्वनि गंवाड़कर, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार, रामनगर रोड शांतिनगर इंदौर से कुमारी देविका चौधरी, कविता संजय, वाणी मीणा वाणी और ब्रोनो खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी, लाबरा भैरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमीला बामनिया, नंदिनी, मुस्कान, नीलम, सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कृणाल, केतन और समस्त बामनिया परिवार। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर कुर्बानी फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत हमने शामिल किया है कुछ कुछ होता है फिल्म से। इस गीत के लिए गीत को लिखा है समीर ने और संगीत है जतिन ललित का। आवाज़ें उदित नारायण और अलका याग्निक की हैं। फरमाइश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं अमरावती महाराष्ट्र से चांदू जी हातोले, मुंबई कल्याण से संजय हातोले। ये पत्र आया है पुणे से पंकज वाड़ोदे, आर्या, प्रियंका, बीटी वाड़ोदे और चंद्रप्रभा वाड़ोदे। जलगांव सोमनाथ जिला जालना से डॉक्टर नामदेव भूतेकर, अभिषेक कुमार, गणेश भूतेकर, कार्तिक भूतेकर, अश्विनी। जलगांव से वैभव, गौरव लोखंडे, भाव सिंहपुर से मेघराज, युवराज कोलते और रिधोरा देवी, रुद्र कोलकर और इनके साथी। ये पत्र आया है आलोट से। श्रोताओं के नाम हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति और अतुल। के साथ है प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। जिला खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भगवत वर्मा, अभिषेक, सीमा वर्मा, अमित वर्मा, समर राज आर्यन, बेबी आरोही, इशिका वर्मा और अंजलि श्वेता वर्मा। और एक पत्र और है देवास से मनु ठाकुर, कृष्णा वैद्य, नेत्रा रावणकर, योगेंद्र और जाकिर हुसैन। के साथ में है नजमी।

से रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आपको सुनवा रहे हैं पंडित गोस्वामी गोकुलोत्सव जी महाराज का गाया राग यमन कल्याण। इनके साथ तबले पर संगति की है यूसुफ खान ने।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे थे पंडित गोस्वामी गोकुलोत्सव जी महाराज का गाया राग यमन कल्याण। इनके साथ तबले पर संगति की यूसुफ खान ने।

0: ये धरती ये नदिया ये रैना
1: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी देर में हिंदी में समाचार और उसके पश्चात 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
4: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक मदद, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनागाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। श्री मोदी ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों पर चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन के

0: घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
1: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। घोषणा पत्र में युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें भारत की पहल पर आयोजित एससीओ युवा वैज्ञानिक मंच का भी उल्लेख है। सदस्य देशों ने इस वर्ष भारत में होने वाले एससीओ सभ्यता संवाद मंच का स्वागत किया और एससीओ युवा लेखक सम्मेलन में भारत की पहल का उल्लेख किया। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: प्रधानमंत्री किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान की 4 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि उनकी किर्गिस्तान यात्रा बेहद सार्थक और ठोस परिणामों वाली रही। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन से अलग हुई विभिन्न बैठकें भारत के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से इस क्षेत्र के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में योजना के तहत चिन्हित 100 जिलों में कार्यान्वयन में तेजी लाने, विभिन्न योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसानों के लिए जिला स्तर पर प्रदर्शन में सुधार पर जोर दिया गया। योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं में सुधार करना तथा कृषि को कृषि ऋण और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सचिवों के सम्मेलन में खाद्यान्न खरीद वितरण और भंडारण की समीक्षा की। आगामी खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए धान की खरीद का अनुमान 708 लाख मीट्रिक टन से अधिक तय किया गया। करीब 19 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज की खरीद का भी अनुमान है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देशभर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी हैं और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। सरकार ने शैक्षणिक सत्र वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर इस साल की 30 सितंबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार मेधावी छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। तारीख बढ़ाए जाने के बाद अब संस्थान स्तर पर प्रथम स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर और जिला स्तर पर द्वितीय स्तर के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi has called upon member countries of Shanghai Cooperation Organization, SCO, to dismantle the entire ecosystem of terrorist financing, recruitment, radicalization and safe havens. Addressing the 26th SCO summit in Bishkek today, the Prime Minister said there can be no place for double standards on terrorism. Secretary West, in the Ministry of External Affairs, C.B. George, in a media briefing said the Prime Minister expressed concern over the ongoing conflicts in different parts of the world.
3: Prime Minister reiterated that India's position, conflicts and war